फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। नेपाल में कल आए भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और एक दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण हिमखंड फट जाने से ये आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन

0: लिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं के 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस चुनौती के सामने नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 9779851316807 और 9779701705000। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने लापता लोगों की खोज और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पीपल्स आर्म्ड पुलिस की शिगाजे टुकड़ी के कुल 145 अधिकारियों और सैनिकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया अभियानों में सहायता के लिए प्रभावित सीमा बंदरगाह पर भेजा गया है। नेपाल की यात्रा पर गए कोलकाता के 32 लोग अचानक आई बाढ़ में लापता हो गए हैं। वे मानसरोवर यात्रा के लिए एक ट्रैवल एजेंसी द्वारा आयोजित समूह में गए थे। इस समूह को कल नेपाल तिब्बत सीमा पार करनी थी, लेकिन अचानक आई बाढ़ से उनसे संपर्क टूट गया और अभी तक किसी का कोई पता नहीं चला है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
1: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी DGP इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। सरकार ने आगामी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। वीर चोट्रानी और विल्विन सेंथिल कुमार PSA बुडापेस्ट क्वाश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती।

Shintan. जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत।

इस झरोखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे 6:35 पर श्री रामचरित मानस का भाग 293। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला ताल प्रवाह का भाग 11। कलाकार तबला वादक पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की। कार्यक्रम का समय सुबह और शाम 6:45।

भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7 बजे और 7:30 पर सुनिए युगल गीतों का कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। समाचार प्रभात आप सुनेंगे सुबह 8 बजे और त्रिवेणी इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:15 और दिन में 2 बजे। आलेख और स्वर सोनाली पाठक का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। चित्रलोक कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा नए गीतों का सुबह 8:30 पर। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक मुकेश पर। आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति मनीषा जैन की। कार्यक्रम का समय होगा सुबह 9:30। इसी कार्यक्रम को पुनः सुना जा सकता है रात्रि 9:30 पर। रंग तरंग कार्यक्रम होगा दिन में 11 बजे और 12 बजे सुनिए हिंदी में समाचार। 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम। सुरीला सफर, ये कार्यक्रम होगा दिन में 1 बजे। श्रोता हमसे फेसबुक कमेंट्स द्वारा जुड़ सकते हैं। दिन में 2:15 पर होंगे दोपहर समाचार। सदा बहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। दोपहर 3 बजे होगा सखी सहेली कार्यक्रम। हेलो फरमाइश, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज दिन में 4 बजे। संवादक ममता सिंह और प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। छायागीत कार्यक्रम का समय होगा शाम 5 बजे। 5:30 पर से लेकर शाम 6:30 तक सुनिए तराने नए पुराने कार्यक्रम और इस बीच शाम 6 बजे सुनिए हिंदी में समाचार। शाम 6:30 पर सुनिए आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। और संध्या रंजन, इस कार्यक्रम का समय होगा 6:35। जयमाला कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे और 7:45 पर। इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए इनसे मिलिए। गजल गायिका ऋतु जौहरी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग 2 आपको सुनवाएंगे, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। हवा महल कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 8 बजे। इसमें आज आप सुनेंगे नाटिका झूठी शान, लेखन सलीमा खुर्शीद, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर। रात्रि के चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 8:15। समाचार संध्या का समय होगा रात्रि 8:45 और 9 बजे होगा कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर होगा कार्यक्रम आज के फनकार, जैसा कि आपको पहले बताया। 10 बजे सुनिए छाया गीत कार्यक्रम। आलेख और स्वर संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 होगा कार्यक्रम ढलती जाए रात और रात 11 बजे रंग तरंग। ये थी जानकारी आज दिनभर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की और ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अब सुनिए रामचरितमानस का भाग 293।

विभीषण ने नीति की दुहाई देते हुए रावण को हर प्रकार से समझाने की चेष्टा की। माल्यवान ने भी, जो रावण के नाना और अत्यंत बुद्धिमान मंत्री थे, विभीषण की

नीतिवत्ता की अनुशंसा करते हुए रावण को सद्बुद्धि का उपदेश दिया, किंतु रावण ने उन दोनों को मूर्ख बताकर अपनी राजसभा से निकल जाने पर विवश कर दिया।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी।
1: नमस्कार, संगीत सरिता के श्रोताओं को मैं रामकृष्ण दास इस कड़ी में स्वागत करता हूं। इस ताल प्रवाह में बहुत सारे तालों के साथ साक्षात्कार हमारा हुआ है। मिश्रा जी, आपके गुरु जी पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज का एक बहुत प्रिय ताल रहा है, ताल धमार।
2: धमार धमार, वो बहुत बढ़िया उनका ताल के प्रति धमार रहा। और सितारा देवी के जो भाई चौबे महाराज जी थे
1: जी,
2: वो धमार में छूट नाचते थे। छूट नाच
1: वो क्या चीज है?
2: कोई बंदिश नहीं।
1: अच्छा,
2: एक होता है बंदिश, एक होता है छूट की, कहीं से उठेंगे और सम पे आएंगे। ये घंटों की बात है। तो
1: बात
2: आपने
1: है?
2: बड़ा सही सवाल किया मेरे गुरुजी का, किशन महाराज जी का।
1: तो क्या हमारे श्रोताओं को आप ताल धमार सुनाएंगे?
2: जरूर जरूर। मैं ताल धमार 14 मात्रे का ताल है ये। ताल प्रवाह में ये खास बात हमने रखा कि ताल हो गया तबले का, प्रवाह एक संगीत की जर्नी है हमारी। इसमें धमार ताल का क्या अंदाज है? पहले तो गुरुजी,
1: हाँ जी, एक बात मेरे दिमाग में आ रहा है, कहीं मैंने पढ़ा था, क्योंकि अधिकतर तालों का शुरुआत या तो धा या धिन से होता
2: जी,
1: है
2: जी।
1: इस ताल का शुरुआत कत से है।
2: हाँ,
1: या क से है। कहीं मैंने पढ़ा था कि धा को मार दिया, इसलिए इसका नाम बंगाली लोग धमार कहते हैं। ऐसी भी कुछ बात
2: नहीं,
1: है क्या?
2: धमार का मतलब ये एक अलग है कि वो बड़ा तही सही तरीके से वो मारता है। वो क धीच धीच धा ग दीन दीन ता क धी, वो जो आता है संपर ना, इसीलिए उसका नाम है कि दे मार दे मार दे मार करते करते धमार हो गया।
1: क्या कहने,
2: तो इसका जो चरण है सम पर आता है, क पे आता है। और इसी ताल का एक और अंदाज है आड़ा चौताल।
1: अच्छा,
2: हाँ जी, वो भी 14 मात्रे का है। उसका ठेका इस प्रकार है, धिन तिरिकट धीना तूना कत्ता तिरिकट धीना धी धीना धी धीना धिन तिरिकट धीना, ये आड़ा चौताल है।
1: आपने 14 का जिक्र किया, ताल झुमरा भी तो 14 पर है।
2: वो भी झुमरा है, लेकिन उसमें कभी सोलो नहीं बजा सकते हम, क्योंकि वो गायकी अंग का है ताल है, वो है ना फारूक भाई, वो गायकी का अंदाज है एक। लेकिन ये जो है धम्मार, तो मैं प्रस्तुत करता हूँ धम्मार। लेकिन मुझे कुछ एक अचानक कुछ दिमाग में आया कि एक बहुत सारी पिक्चर ऐसे हुआ करते थे दास बाबू की, जिसमें बहुत से हीरो
1: जी
2: खुद बोल को बोले हैं।
1: अच्छा,
2: हाँ जी, तो प्रस्तुत है पहले श्रोताओं धम्मार ताल। उसके चरण है क धी ट धी ट धा द दीन दीन तक तक तक दिन क धी ट।
1: और एक बात, धमार तो अधिकतर पखावज में ही बजाया जाता है,
2: है ना मेरे पास?
1: तो यानी आप बड़ा मुंह के तबले पे पखावज बजा रहे हैं।
2: हाँ जी,
1: क्या बात,
2: बड़ा मुंह का तबला और एक अंदाज उसका खुला बाज।
1: जी हाँ,
2: उसको बंद नहीं कर सकते, फिर नारी और पुरुष में अंतर क्या रह जाएगा?
1: जी हाँ,
2: नारी भी नारी की तरह चल रही, पुरुष भी पुरुष के, उसका नाम ही है कि पुरुष का अंग है वो धमार। हाँ जी भैया,

ये जो मैं क्षमा चाहता हूँ, खास मनीषा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए क्षमा इसलिए बोल रहा हूँ कि इस ताल को बजाने के लिए कम से कम एक डेढ़ दो घंटा मिले तो मजा आए, क्योंकि बादल का अंग है ये और इस समय बरसात का मौसम आने वाला है, तो देखिए कैसे उसका उमंग कैसे होता है।

0: अब ये कोई बंदिश नहीं है, इसको कहते हैं छूट।
1: अच्छा
0: हाँ जी, ये कोई बंदिश नहीं है। ये बंदिश हो गया, ये छूट हो गया, ये छूट है।

0: तो ये एक धम्मार का अंदाज है। अब ये कम से कम अगर मुझे ताल प्रवाह में फिर से बुलाएं तो इसका एक और अंदाज बताएं कि कितना ये धम्मार ऐसा ताल है कि खास पुरुष अंग हाथी कैसे चलती है, एक हाथी और एक उसी का अंदाज।
1: मिश्रा जी, हमने ये सुना है कि ब्रज में जब होली खेला जाता है तो उस समय भी लोग धमार गाते हैं।
0: वो अलग हो गया चीज,
1: पक्की होली।
0: हाँ, वो धमार तो गाते हैं लेकिन धमार बजाते नहीं हैं।
1: जी जी,
0: वो इसी के अभी मैंने पिछले एपिसोड में मैंने दिखा कि चाचर या दीपचंदी या रूपक,
1: जी जी,
0: कहीं अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका अंदाज वो अलग है। लेकिन धमार जो अगर सोलो बजाते हैं या नाचते हैं तो वो इसी अंग से होगा।
1: क्या बात।
0: लेकिन उसके लिए आपको अच्छे गुरु से शिक्षा प्राप्त लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, माता पिता और गुरु अच्छा सिखाते हैं लेकिन उस पर आपका भाग्य और आपका रियाज, आपका साधक, आपका साधना, ये सारा ये मिल के तब कहीं पंचतत्व में मिलता है। वो जैसे बोलते हैं कि अगर इसको खोली तो पंजा होता है, बंद करी तो मुट्ठी हो जाता है, तो इसमें ताकत होना चाहिए, इसकी एक अलग खुशबू है। तो मुझे धमार करते करते मैंने पहले ही कहा था आपसे कि एक बड़ा खूबसूरत
1: गीत
0: उसमें अशोक कुमार जी ने पठन किया है
1: जी।
0: वो बड़ा सुंदर, मुझे अचानक पता नहीं क्यों याद आया, उस फिल्म का नाम है खूबसूरत।
1: क्या कहने।
0: तो अशोक कुमार जी ने एक बड़ा खूबसूरत पठन किया है, उसे कहते हैं कवित्त पठन,
1: और खूबसूरत फिल्में,
0: खूबसूरत फिल्में, क्योंकि पुराने जमाने के जितने हीरो हीरोइन थे ना उनको क्लासिकल सीखना पड़ता था। तो एक खूबसूरत पिक्चर में अशोक कुमार जी का पठन है, नहीं रहता था नंदा नंदा ना छोम छा ना ना ना धा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा तक दिन ता तक दिन दिन दा दा दिन दिन दा। ये खास इसे अशोक कुमार जी ने पठन किए हैं। तक दिन दिन नी रहता था नंदा नंदा ना छोम छा ना ना ना ता छोम तक दिग धा दिग दिग थई लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गत त्रिभंग धा खेलत भुज मेलत लपक झपक राधा ललिता चंद्रावली दियो बोर रंग बोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।
1: वाह,
0: तीन ताल में है ये दास बाबू। तो देखिए पठन कैसा है कि वो कितना पढ़े होंगे, उसके लिए कितनी उन्होंने रियाज किया होगा।
1: बाकायदा बाकायदा, इसीलिए तो पुराने जमाने के जितने सारे फिल्म सॉन्ग्स हैं अभी भी मुझे,
0: जी हाँ,
1: हम सभी को अच्छे लगते हैं।

ताल प्रवाह इस श्रृंखला की ये थी 11वीं कड़ी। जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूख लतीफ खां और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया है, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में कल सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के बाद 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से ये आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इस मुश्किल घड़ी में नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 9779851316807 और 9779709107500। चीन के राष्ट्रपति शी

0: जिनपिंग ने लापता लोगों की खोज और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पीपल्स आर्म्ड पुलिस की शिकाजे टुकड़ी के कुल 145 अधिकारियों और सैनिकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया अभियानों में सहायता के लिए प्रभावित सीमा बंदरगाह पर भेजा गया है। वहीं विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपये देने की पेशकश की है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बारे में और जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता।
1: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी बाल्मीकर जाऊंगा।
0: उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दी है। प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं। महाराजागंज और कुशीनगर सीमावर्ती जिलों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तैयार रहने और गंडक तथा नारायणी नदियों में जलस्तर की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर में कल पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सरकार ने आगामी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर राज्य में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सौगात दी है। महिला यात्री आज से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और शहर की बसों में एक सह यात्री के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। वीर चोट्रानी और विल्विन सिंथल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ रेड बाय वीसी प्रमोद।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज प्रदेश के 24 स्थानों पर खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों और युवाओं से करेंगे संवाद। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत और 750 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर। भारत ने राहत सामग्री और दवाओं की 10 टन खेप भेजी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री में T-72 टैंकों के ओवरहाल की 600 करोड़ रुपए की परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भिंड के मालनपुर में गोदरेज की नई विनिर्माण इकाई का किया शुभारंभ। 450 करोड़ रुपए के निवेश से 600 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। और प्रदेश में मानसून सक्रिय, दतिया में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के 24 स्थानों पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:45 पर खिलाड़ियों, युवाओं और खेल प्रतिभाओं से संवाद करेंगे। भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों के शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले इन कार्यक्रमों में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। हरदा, बड़वानी और छतरपुर में केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रमों में विद्यार्थियों और खिलाड़ियों की सहभागिता साथ खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। कल मध्य नेपाल में आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और एक दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया है कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण हिमखंड फट जाने से आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेपाली समकक्ष बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने भी सहायता के लिए टोल फ्री आपातकालीन नंबर 1234, हॉटलाइन 1144 और पर्यटक पुलिस नंबर 9851289445 सहित इसी तरह के नंबर जारी किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी नेपाल में हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की है। ओंकारेश्वर में एकात्म धाम स्थित पंचायतन मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सुबह संतों और विशिष्ट अतिथियों के साथ 45 पवित्र शिलाओं का पूजन कर मंदिर निर्माण का शुभारंभ करेंगे। वैदिक अनुष्ठान के बीच हो रहे इस आयोजन में संत मंडल और विभिन्न पीठों के आचार्य शामिल हैं। पंचायतन मंदिर में भगवान शिव मुख्य देवता होंगे, जबकि भगवान विष्णु, सूर्य, गणेश और भगवती शक्ति के उपदेवालय होंगे। आयोजन के माध्यम से आदि शंकराचार्य के समन्वय और एकात्मता की परंपरा को आगे बढ़ाने का देंगे। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कल राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब विधि और विधायी विभाग इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजेगा। विधानसभा ने यह विधेयक 21 जुलाई को पारित किया था। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद विधेयक को राजपत्र में अधिसूचित कर इसके प्रावधान प्रदेश में प्रभावी किए जा सकेंगे। प्रस्तावित कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों के लिए समान कानूनी व्यवस्था का प्रावधान है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जबलपुर स्थित व्हीकल फैक्ट्री में T-72 टैंकों की ओवरहाल की करीब 600 करोड़ रुपए की परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू हो रही इस परियोजना में T-72 टैंकों के रखरखाव, मरम्मत और तकनीकी उन्नयन के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। इसे सेना के बख्तर बंद बेड़े की परिचालन क्षमता मजबूत होने की उम्मीद है। भिंड जिले के मालनपुर में कल गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की चौथी नवीन एकीकृत विनिर्माण इकाई का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुभारंभ किया। करीब 450 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश से स्थापित इस इकाई से 600 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश क्षमता मूर्त रूप ले रही है।

0: बीते समय जो जीआईएस के माध्यम से भोपाल में 30 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू हुए, एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है आमतौर पर जितने एमओयू होते हैं उसके 10% ही नीचे उतरते हैं, यहाँ 30% से ज्यादा निवेश धरातल पे उतरा। 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे राज्य के अंदर अलग अलग प्रकार से मूर्त रूप ले रहा है। कई तो अपने उत्पादन प्रारंभ करके अपनी पूरी क्षमता से रोजगार देते हुए देश और दुनिया के सामने अपने उत्पाद को पहुंचा रहे।
1: रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए प्रदेश में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इंदौर में गुजरात से आई करीब 350 किलोग्राम मिठाई जब्त की गई है। खाद्य सुरक्षा टीम ने एक दुकान से मिठाई के 4 नमूने लिए। वहीं जबलपुर के पाटन में प्रतिबंधित एनालॉग मिल्क केक के करीब 40 किलोग्राम स्टॉक को जब्त किया गया और 5 मिठाई तथा खोआ दुकानों से 7 नमूने लिए गए। सभी नमूने जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। प्रदेश में अब तक औसतन 25.5 इंच बारिश हो चुकी है। हालांकि बारिश अभी सामान्य से 11% कम है। मौसम विभाग ने आज दतिया में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजगढ़, ग्वालियर, भिंड, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जल भराव प्रभावित गायत्री नगर का जायजा लिया और 9 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कराया। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में परिवहन विभाग द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए आगरमालवा खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कल टीम ने 4 प्रतिष्ठित मिष्ठान दुकानों से नमूने लेकर जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा है। सतना जिले में जल जनित और संक्रामक रोगों के संभावित फैलाव को देखते हुए कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। झाबुआ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत राणापुर विकासखंड में आज आयोजित होने वाला जन विश्वास शिविर अब 29 अगस्त को होगा। वहीं मुरैना के बामोर में आज प्रस्तावित जन विश्वास कैंप अब 29 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। आमजन को बेहतर आधार सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंदसौर नीमच डाकघर संभाग द्वारा 29 अगस्त को सेवा केंद्रों पर विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

बावरे नैन फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में केदार शर्मा के बोल धुन रोशन की। इसके पहले जो गीत आपने सुना उसके गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी।

0: अभी आपने सुना राजहट फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में, हसरत जयपुरी की रचना शंकर जयकिशन का संगीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: अभी आप

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। ये कार्यक्रम होगा थोड़ी ही देर में, कीजिए इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मेरी सूरत तेरी आंखें इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है सुमन कल्याणपुर और मुकेश ने, शैलेंद्र के बोल हैं और सचिन देव बर्मन का संगीत।

उमर कैद इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गुलशन बावरा ने इसे लिखा है और धुन बनाई है सोनिक ओमी ने।

0: सारे आमंत्रित कलाकार हैं।
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं आरंभ फिल्म का गीत, आवाजें मुकेश और आरती मुखर्जी की। शकील अहमद ने इसे लिखा है और आनंदा शंकर का संगीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के, ये आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और इस समय इस कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। दिल ही तो है इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की। बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और तर्ज बनाई है रोशन ने।

आज हिंदी सिनेमा के सदाबहार गायक मुकेश जी की पुण्यतिथि है। उनकी आवाज में एक ऐसी सादगी, ऐसी भावुकता थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। उनके गाए गीत आज भी उतने ही ताजा और अपने से लगते हैं। आज हम उन्हीं के अमर गीतों को याद कर रहे हैं और आइए इसी के साथ सुनते हैं आस का पंछी, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत।

दुनिया ना माने इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, मदन मोहन का संगीत। और साथियों बता दें आपको कि आज आप सुन रहे थे मुकेश की पुण्यतिथि पर उन्हीं के गाए कुछ हमेशा सुने जाने वाले पसंद किए जाने वाले नगमे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हिंदी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779709107500। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 00861852408495। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपात वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने नेपाल में भयावह बाढ़ और गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 150,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
3: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको

0: मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ, जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं।
2: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
3: यह संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन की अनुकूल संभावना को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया 15 मई से शुरू हुई और बफर के लिए लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से रवाना हो चुकी है। आनंद और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति जताई है। एक रिपोर्ट।
5: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा, जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत आने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। श्रीलंका के पासेंदु सूर्या

0: अकारा ने 92 रन बनाए। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद प्रियंका। नेपाल में जल प्रलय से मची तबाही को आज जनसत्ता और हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी, ग्लेशियर से 2000 फीट का टुकड़ा गिरने से झील बनी, टूटते ही सैलाब। अमर उजाला की सुर्खी है, दो नए सैन्य संपर्क बनाएंगे भारत और चीन। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की भारत यात्रा से पहले विशेष प्रतिनिधियों के बीच दो हॉटलाइन पर बनी सहमति, 8 बिंदुओं से सुलझाएंगे सीमा विवाद। दहेज मामलों में अब तारीख पर तारीख नहीं। नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज के मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। सरकार की सख्ती के बाद गिरने लगे चीनी के भाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, सप्ताह भर में चीनी के मूल्य में 12 से 15 रुपए की कमी, कुछ दिनों में और गिरावट का अनुमान। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच सूची में सबसे ज्यादा 19 स्टार्टअप के साथ भारत शीर्ष पर। स्वदेशी पावर चिप से लेकर सीधे कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचाने के इनोवेशन कर रही ये कंपनियां। राजस्थान पत्रिका ने ध्वनि प्रदूषण शीर्षक से लिखा है, ट्रैफिक की कर्कश आवाज तले दबी पक्षियों की मीठी चहचहाट, इंसानों को अब पूरा नहीं मिल पा रहा तनाव मिटाने वाला नेचुरल टॉनिक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए $18 अरब तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: against Sri Lanka on the final day of the second test at Colombo today. India declared their first innings at 503 for 9 and bowled out Sri Lanka for 290, then enforced the follow-on. At the end of day 4, Sri Lanka reached 229 for 6 in their second innings, holding a slender lead of just 16 runs with 4 wickets remaining. India leads the two-match series 1-0 following their 165-run victory in the first test at goal. Indian bowlers highlighted by spinners Manav Sutar and Saransh Jain alongside pacer Prasidh Krishna have dominated the attack on a helpful Colombo pitch. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mushtaba.
1: Thank you, Pramod. All newspapers have headlined the devastating floods in Nepal after a wall of ice, mud and rock collapsed into a Himalayan river at the Nepal-China border near Tibet. The Statesman headlines, devastating flash floods in Nepal, death toll at least 95, over 100 Indians missing. Tribune headlines, 100 dead in Nepal deluge, 133 Indians missing. Times of India reports, 160 killed in deadly Nepal deluge, at least 133 Indians among 844 missing. Another major story covered on the front page of most dailies is the Trump administration pausing all visa appointments worldwide. Hindustan Times says, U.S. pauses immigration visa interviews amid crackdown, while the Asian Age headlines, U.S. pauses visa appointments worldwide. Another story covered in newspapers is Maharashtra Public Service Commission cancelling the recruitment process for Drug Inspector Group B post following an inquiry into alleged malpractices in the screening exam conducted earlier this year. And finally, a story in Times of India says that from Tokyo to London, heat waves send men to work in shorts. Japan's capital led the way, followed by London, as extreme temperatures swept across Europe. And with that, it's back to you, Pramod.
0: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Massive flash flood claims nearly 160 lives in Nepal, over 750 people, including 133 Indians missing. High alert issued in Bihar and Uttar Pradesh following Nepal flood. India sends first tranche of relief materials to Nepal. Prime Minister Narendra Modi to address Khelo India dialogue today through video conferencing. Centre begins targeted release of onions from buffer stocks to ensure adequate availability and check seasonal price rise. US halts all visa appointments globally amid President Donald Trump's immigration crackdown. Meta to pay up to $18 billion to settle claims that its platforms harm children. And in men's cricket, Team India on verge of Test Series win against Sri Lanka in Colombo. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज के साथ डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
3: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि आचार्य शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 9 अगस्त। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण चौहान और दिल्ली से नरेंद्र देव पांडे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
4: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
5: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
4: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
5: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायुसेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
4: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अव

भारतीय स्वाधीनता संघर्ष की कहानी केवल बड़े बड़े आंदोलनों की कहानी नहीं है, ये उन अनगिनत कदमों की भी कहानी है जो गांव की पगडंडियों से उठे, जिन्होंने अत्याचार के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। अंग्रेजी

सत्ता की आंखों में आंखें डाल वो चलते रहे, आगे बढ़ते रहे और अपने प्राण न्योछावर कर दिए, क्योंकि उनका एकमात्र स्वप्न था स्वाधीन भारत। एक ऐसे ही महान देशभक्त थे गुलाब सिंह लोधी। वो जानते थे कि अंग्रेजी सत्ता के सामने खड़ा होना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी जाना था कि डर कर जीने से बेहतर है देश के लिए निर्भय होकर मर जाना। उनका जीवन असाधारण साहस का प्रतीक है, जो बताता है कि स्वाधीनता की मशाल यूं ही नहीं जली, ये मशाल एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंची। किसी ने लोगों को जगाया, किसी ने अपने कदमों से रास्ता बनाया और किसी ने अपने रक्त से उसकी लौ को जलाए रखा। वीर गुलाब सिंह लोधी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के चंडिका खेड़ा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता ठाकुर राम रतन सिंह लोधी एक किसान थे। वो धर्मनिष्ठ तथा अत्यंत स्वाभिमानी थे तथा कड़ी मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। उन्होंने अपने पुत्र के भीतर निडरता, सत्यनिष्ठा और राष्ट्र प्रेम के संस्कार डाले। जिस उन्नाव की धरती में उनकी परवरिश हुई वो भूमि बैसवाड़ा के गौरवशाली इतिहास और 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमर नायक राजा राव रामबख्श सिंह की शौर्य गाथा से स्पंदित रहती थी। ऐसे वातावरण में पलने के कारण बालक गुलाब सिंह लोधी के मन में देश प्रेम के भाव प्रस्फुटित हो चुके थे।

औपनिवेशिक भारत के अभावग्रस्त ग्रामीण परिवेश में गुलाब सिंह लोधी का बचपन बीत रहा था। उस दौर के ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं का घोर अभाव था। ब्रिटिश राज की नीतियां ग्रामीण शिक्षा के प्रति पूरी तरह उदासीन थीं। गुलाब सिंह लोधी ने अपने गांव के निकट स्थित प्राथमिक विद्यालय में अपनी आरंभिक शिक्षा ग्रहण की। हिंदी भाषा और स्थानीय बोलियों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था उन्होंने, लेकिन वो औपचारिक उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। हालांकि औपचारिक डिग्री न होने के बावजूद उनके भीतर गजब की बौद्धिक तीक्ष्णता और सामाजिक राजनीतिक समझ थी। अंग्रेजों के अत्याचार और किसानों पर मंडराते आर्थिक संकट को वो बहुत गहराई से देख और समझ रहे थे। इसके साथ ही तत्कालीन समाचार पत्र पत्रिकाओं और लोक साहित्य के माध्यम से देश की राजनीतिक स्थिति और ब्रिटिश नीतियों के दुष्प्रभावों पर भी उनकी दृष्टि थी। समय आगे बढ़ा और गुलाब सिंह लोधी पिता के साथ खेत में काम करने लगे। खेती किसानी के दौरान उन्होंने बहुत करीब से देखा कि किस तरह ब्रिटिश हुकूमत के मातहत जमींदार और लगान वसूल करने वाले कारिंदे निर्धन किसानों का निर्दयतापूर्वक शोषण किया करते थे। इस प्रत्यक्ष अनुभव ने उनके भीतर ब्रिटिश राज के प्रति तीव्र असंतोष और विद्रोह की भावना को जन्म दिया। 1920 का दशक भारत के स्वाधीनता इतिहास में अत्यंत उथल पुथल भरा दौर था। एक तरफ महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन देशव्यापी लहर पैदा कर रहा था, तो दूसरी तरफ क्रांतिकारी धारा के युवा अपने रक्त से आजादी की इबारत लिख रहे थे। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट हुए ऐतिहासिक काकोरी कांड ने देश भर के साथ साथ पूरे अवध क्षेत्र के युवाओं में देशभक्ति की भावना जगा दी थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद और ठाकुर रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों की चर्चा देश भर में थी। वीर गुलाब सिंह लोधी के मन मस्तिष्क पर भी इस घटना ने अमिट छाप छोड़ी। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव गांव-गांव तक पहुंच रहा था। लोग विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर रहे थे। चरखा और खादी स्वावलंबन का प्रतीक बन चुका था। वीर गुलाब सिंह लोधी समझ चुके थे कि इसी मार्ग पर चलते हुए गरीबों और किसानों का उत्थान संभव है, अंग्रेजी राज से मुक्ति संभव है।

इसी बीच साल आया सन 1935। भारत का स्वाधीनता संघर्ष लगातार जारी था और ब्रिटिश हुकूमत ने जन आंदोलनों को दबाने के लिए कठोर नियम लागू कर रखे थे। उस समय तक गुलाम भारत के मन में अपने राष्ट्र ध्वज की आकांक्षा आकार ले चुकी थी। ब्रिटिश राज के विरोध स्वरूप झंडा सत्याग्रह शुरू हो चुका था और अलग अलग अवसरों पर लोग राष्ट्र ध्वज फहराकर ब्रिटिश प्रशासन का विरोध कर रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत ने सार्वजनिक स्थानों पर भारतीय झंडे को फहराने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी थी। झंडा फहराना राजद्रोह माना जाता था और ऐसा करने वालों को असहनीय यातनाएं और सजा दी जाती थी। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने लखनऊ के मध्य स्थित अमीनाबाद पार्क में झंडा फहराकर झंडा सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। 23 अगस्त 1935 का दिन तय हुआ। अंग्रेज सरकार को पहले ही सूचना मिल चुकी थी कि क्रांतिकारी अमीनाबाद पार्क में झंडा फहराने का प्रयास करेंगे, इसलिए सैकड़ों सशस्त्र पुलिस के सिपाही, पुलिस अधिकारी और घुड़सवार दस्तों ने पूरे पार्क को चारों ओर से घेर लिया। पार्क के सभी प्रवेश द्वार सील कर दिए गए। किसी भी नागरिक को पार्क के भीतर तो क्या, आसपास भी भटकने की इजाजत नहीं थी। पार्क के बाहर भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा था, लेकिन पुलिस के सख्त पहरे के कारण कोई भी भीतर नहीं जा पा रहा था। जब पार्क के बाहर जमा सत्याग्रही पुलिस के कड़े पहरे को देखकर असहाय महसूस कर रहे थे, तब वीर गुलाब सिंह लोधी ने हार नहीं मानी। वो पुलिस की नजरों से बचते हुए चुपचाप झाड़ियों और पेड़ों का सहारा लेते हुए आगे बढ़ने लगे। इस तरह पुलिस को चकमा देते हुए वो पार्क के भीतर दाखिल होने में सफल हो गए। पार्क के बीचों बीच एक विशाल और घना पेड़ था। वीर गुलाब सिंह लोधी बिजली की गति से उस पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने झंडे को बड़े जतन से छुपा रखा था। उनके पास बैलों को हांकने वाला एक डंडा भी था, जिसे पैना कहा जाता है। पुलिस बाहर भीड़ को रोकने में व्यस्त थी, जबकि गुलाब सिंह लोधी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पहुंच चुके थे। पेड़ के शीर्ष पर पहुंचकर उन्होंने झंडा निकाला और पेड़ की शाखा पर झंडा फहरा दिया। हवा में लहराते झंडे को देखकर उन्होंने जोर से नारा लगाया, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, वंदे मातरम। पार्क के बाहर खड़े सत्याग्रहियों ने जब उनकी आवाज सुनी और हवा में लहराता झंडा देखा तो गगनभेदी जयकारों से आसमान गूंज उठा। ब्रिटिश अधिकारी बौखला गए। उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। वीर गुलाब सिंह लोधी की बांह, सीने और पेट में कई गोलियां लगीं। वो झंडे को संभाले हुए पेड़ पर खड़े थे और अंततः मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। 23 अगस्त सन 1935 को मातृभूमि के लिए संघर्ष करते हुए भारत माता की गोद में ही वो

दान हो गए। आज वो पेड़ सत्याग्रह वृक्ष के नाम से जाना जाता है और अमीनाबाद पार्क का नाम झंडे वाला पार्क हो गया है, जो आज भी वीर गुलाब सिंह लोधी के बलिदान की गाथा सुनाता है। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और आइए अब आपको सुनवाते हैं रेडी इस फिल्म का गीत नीरज श्रीधर और अमृता काक की आवाजों में। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा है और प्रीतम का संगीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, इन दिनों नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है। नेत्रदान केवल आंखों का दान नहीं बल्कि किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी देने का संकल्प है। हमारे जाने के बाद हमारी आंखें किसी ऐसे व्यक्ति की दुनिया को रोशन कर सकती हैं जिसने शायद कभी रंगों की खूबसूरती देखी ही ना हो। जीवन समाप्त होने के बाद भी किसी के जीवन में उजाला छोड़ जाना, इससे सुंदर दान और क्या हो सकता है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप चाहें अपना पंजीकरण इसके लिए करवाएं। बहुत नॉमिनल इसकी जो ये होती है प्रोसेस होती है, वो बहुत ही आसान प्रक्रिया होती है, आप कर सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी नेत्रदान किसी व्यक्ति ने किया हुआ है तो उसकी मृत्यु के तुरंत बाद आपको डॉक्टर को सूचित करना है कि इस व्यक्ति ने नेत्रदान किया है, ताकि समय रहते उनके नेत्रों को लिया जा सके। यदि इस चीज में देरी हो जाती है यदि, तो फिर वो आंखें काम की नहीं रह जाती। इसलिए वो आप जरूरी है कि आप जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और यदि उसने नेत्रदान किया हुआ है तो वो तुरंत डॉक्टर को जो घर वाले हैं वो सूचित करें कि इस व्यक्ति ने नेत्रदान किया हुआ है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं यमला पगला दीवाना, इस फिल्म का गीत सोनू निगम और निंदी कौर की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: अरे आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला।

0: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
1: खिलाड़ी फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं श्रीराम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा है, हिमेश रेशमिया का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। फिल्म का नाम है बोल बच्चन।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से और आइए अब आपको सुनवाते हैं अय्या इस फिल्म का गीत। इसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है अमित त्रिवेदी का।

शाल मलिक होलगड़े और मोनाली ठाकुर की आवाजों में अभी आपने सुना अय्या फिल्म का गीत और इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम हम संपन्न करेंगे। आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम में आप सुनेंगे मुकेश को, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति मनीषा जैन की। इसके अलावा आज दोपहर 4 होगा हेलो फरमाइश कार्यक्रम, आप सुनेंगे, संवादक होंगी ममता सिंह। तो इन कार्यक्रमों को जरूर सुनिएगा, भूलिएगा नहीं इनका समय। इसी के साथ चित्रलोक कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चे के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको एक दिलचस्प घटना बताते हैं। एक लड़का था जिसकी बहन की शादी हो रही थी और अभिनेता मोतीलाल चूंकि उसके रिश्तेदार थे इसलिए वो इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। चूंकि माहौल शादी के जश्न का था तो उस लड़के से कहा गया कि तुम गाना गाओ क्योंकि परिवार में सब जानते थे कि इसे गाने का शौक है। उस लड़के ने गाना गाया और सब लोग मुग्ध होकर

देखते रहे। मोतीलाल जी को लगा कि इस लड़के में प्रतिभा है। उन्होंने उसे मुंबई बुला लिया और बस यहां से फिल्म संगीत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया, क्योंकि ये नौजवान था मुकेश चंद्र।

0: सितारे रहेंगे।
1: हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास को खंगालें तो जो सबसे रोशन सितारे हमें नजर आते हैं पुरुष गायकों में, वो हैं मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार। जाहिर है कि इन तीन मुख्य सितारों को अलग कर दें तो फिल्म संगीत के न जाने कितने अनमोल गाने फिल्म संगीत के इतिहास से हट जाएंगे। मुकेश चंद्र माथुर के अपने फैन रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मुकेश की गायकी में ऐसी सादगी, ऐसी सरलता है कि यूं लगता है जैसे वो हमारे लिए गा रहे हैं और हम उनके साथ गा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आपके परिवार में अंत्याक्षरी हो रही हो, कोई पिकनिक हो, कोई अन्य उत्सव हो, गाने का माहौल हो, तो कोई ना कोई मुकेश का फैन आपको जरूर मिल जाएगा। यूं लगेगा जैसे मुकेश उसकी आवाज में गा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुकेश जी की जीवन यात्रा।
2: मैंने

0: सपने।
1: मुकेश चंद्र माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। पिता लाला जोरावर चंद इंजीनियर थे और माँ थी चांद रानी। दरअसल पुरानी दिल्ली में पैदा हुए इस लड़के के जहन में संगीत की महक बहुत पहले से थी। बहुत बचपन से इस लड़के ने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब सबसे बड़े गायक थे कुंदन लाल सहगल और सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। जाहिर है कि यंग मुकेश भी कुंदन लाल सहगल के फैन थे। दसवीं पास की उस जमाने में इतनी पढ़ाई बहुत मानी जाती थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग में काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन यही दिन थे जब उनकी बहन की शादी हुई और वही घटना हुई जो हमने आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाई थी, और इस तरह से मुकेश का मुंबई जाने का रास्ता खुल गया। हुआ यूं कि रंजीत मूवी टोन की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि एक नए गायक की तलाश जारी है। और फिर क्या हुआ कि चंदूलाल शाह के जारी किए गए इस विज्ञापन को देखकर मुकेश मोतीलाल जी के पास मुंबई आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की तालीम लेनी भी शुरू कर दी और उन्होंने बड़ी शिद्दत से ये सपना देखा कि वो गायक अभिनेता बनेंगे, और ऐसा हुआ भी। सन 1941 आया, मुकेश ने अपनी पहली फिल्म साइन की निर्दोष। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया और गाया भी। यानी ये वो पहला गाना है जो मुकेश जी ने गाया, पर इस गाने में मुकेश जी ने प्लेबैक नहीं किया, यानी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए गाया। ये गाना था दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या।

पहला प्लेबैक गाना कौन सा था ये भी आपको बता देते हैं। सन 1945 में फिल्म पहली नजर बन रही थी। संगीतकार अनिल बिस्वास से मोतीलाल ने ये कहा कि आप मेरे लिए एक युवा गायक से प्लेबैक करवाएं। मुकेश की आवाज जब अनिल बिस्वास ने सुनी तो उन्हें ये आवाज जम गई और फिर मुकेश ने गाया अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग पहली नजर फिल्म में।

जब कुंदन लाल सहगल तक इस गाने की ख्याति पहुंची और उन्होंने इस गाने का रिकॉर्ड सुना तो वह चकित रह गए। उन्होंने तपाक से ये सवाल पूछा, ये गाना मैंने कब गाया? इसके बाद उन्होंने मुकेश को अपने घर बुलवाया और कहा कि तुम गाने गाते जाओ। मुकेश एक के बाद एक कई गाने गाते चले गए और कुंदन लाल सहगल उस जमाने के सुपरस्टार, उस जमाने के लाजवाब गायक और अभिनेता मुकेश को मुग्ध भाव से सुनते चले गए। उन्हें लगा कि यही है मेरा उत्तराधिकारी और उन्होंने अपना रियाज वाला हारमोनियम मुकेश को भेंट कर दिया। ये कुंदन लाल सहगल का मुकेश के लिए आशीर्वाद था। सन 1941 में निर्दोष में अभिनय करने के बाद सन 1943 में मुकेश ने एक और फिल्म में अभिनय किया जिसका नाम था आदाब अर्ज। सन 1953 में उन्होंने फिल्म माशूका में अभिनय किया जहां उनकी हीरोइन थी सुरैया और सन 1951 में मल्हार फिल्म में अभिनय किया। संगीतकार रोशन की ये पहली

ये वो दौर था जब मुकेश कुंदन लाल सहगल की छाया में थे, उनके प्रभाव में थे और उनके जैसा गाया करते थे। सन 1948 में नौशाद ने दिलीप कुमार की फिल्म मेला के लिए मुकेश को गाने का मौका दिया और नौशाद के जरिए कुंदन लाल सहगल की छाया से बाहर आया उस जमाने का युवा पार्श्व गायक मुकेश। और फिर बस मुकेश की अपनी शैली तैयार हो गई। सन 1949 तक मुकेश का स्वर कुछ ऐसा हो चुका था।

सन 1948-49 का दौर भारत में फिल्म संगीत के बदल जाने का दौर था। कैसे, आपको बताते हैं। लगातार नई प्रतिभाएं आती चली जा रही थीं और इन नई प्रतिभाओं में शामिल थे युवा संगीतकार शंकर जयकिशन। शंकर सिंह रघुवंशी

और जयकिशन पांचाल किस तरह से मिले ये तो एक इतिहास है। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बरसात में संगीत देने का मौका दिया और इस युवा संगीतकार जोड़ी ने कई युवा कलाकारों से गाने गवाए जिनमें से एक मुकेश भी थे। फिल्म बरसात में मुकेश ने दो गाने गाए थे, एक गाना था ये।

0: घर है।
1: और इसके बाद राज कपूर, शंकर जयकिशन और मुकेश की इस तरह से टोली बनी कि एक के बाद एक इनकी फिल्में आती चली गईं और इन तमाम फिल्मों में मुकेश के गाने आते चले गए। यहां तक कि मुकेश का आखिरी गीत भी राज कपूर की ही फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। ये कहानी बाद में, पहले आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। जरा सोचिए कि मुकेश ने किस संगीतकार के लिए सबसे ज्यादा गाया होगा। आपने सही सोचा है, शंकर जयकिशन के लिए मुकेश ने कुल 133 फिल्मों में पार्श्व गायन किया, जबकि कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 फिल्मों में। जाहिर है कि कल्याण जी आनंद जी भी मुकेश के कम फैन नहीं थे।

चलिए फिर से पीछे चलते हैं, समय के चक्र को घुमाते हैं और पहुंच जाते हैं सन 1948 में। आप सोच रहे होंगे कि यहां हम क्यों आए हैं। दरअसल यहां हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि बरसात वो पहली फिल्म नहीं थी जिसमें मुकेश ने राज कपूर के प्रोडक्शन के लिए गाया था। राम गांगुली के निर्देशन में आग में वो ये गाना गा चुके थे।

अब राज कपूर के साथ मुकेश ने किन किन फिल्मों के लिए गाया, एक के बाद एक लड़ी में फिल्में और गाने पिरोते हुए आज के फनकार कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए जरा अपने पैंट को थोड़ा सा ऊपर मोड़ लीजिए, सिर पर एक टोपी पहन लीजिए और सन 1951 में चलकर उछलते हुए मेरे साथ गाइए।

सन 1964 में राज कपूर ने अपनी बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई, जो राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी, फिल्म संगम। इस फिल्म में मुकेश ने ये मार्मिक गाना गाया था।

सन 1966 तक हम आ पहुंचे हैं और यहां हमारे हाथों में है फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम। हमें याद शैलेंद्र की आ रही है जिन्होंने इस पुस्तक पर तीसरी कसम फिल्म बनाई और इस फिल्म में मुकेश ने बड़े मन से गाया।

और फिर सन 1978 मुकेश को अमेरिका की यात्रा पर जाना था और जाने से पहले जो आखिरी गीत उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए रिकॉर्ड करवाया वो सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए था।

इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद मुकेश ने एक लंबी उड़ान ली अमेरिका के लिए, और वहां से इससे भी लंबी उड़ान, वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। ये बातें हुई राज कपूर और मुकेश के साथ वाले गानों की, लेकिन ऐसा नहीं था कि राज कपूर के लिए सिर्फ उनके प्रोडक्शन में मुकेश ने गाया हो। जरा 1950 में केदार शर्मा की बनाई फिल्म बावरे नैन का ये गाना सुनिए और याद कीजिए नीली आंखों वाले राज कपूर को।

0: केवल राज कपूर की बातें?
1: अरे नहीं नहीं, ये नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। दिलीप कुमार के लिए जो प्लेबैक मुकेश ने किया वो तो लाजवाब था। फिल्म यहूदी का ये गाना सुनिए, शैलेंद्र के बोल हैं।

सन 1962 में चलते हैं, जब मनोज कुमार मुकेश की आवाज के जरिए पर्दे पर होंठ हिलाते हुए कह रहे हैं,

लेकिन ऐसा नहीं है कि दिलीप कुमार या मनोज कुमार के लिए ही मुकेश ने प्लेबैक किया हो। याद कीजिए काका राजेश खन्ना को फिल्म मर्यादा में।

जाहिर है कि फिल्मी दुनिया के न जाने कितने नायकों ने पर्दे पर होंठ हिलाए, लेकिन आवाज तो मुकेश की थी, यानी उन्होंने मुकेश के गीत गुनगुनाए। मुकेश को भले ही एक दर्द भरी आवाज कहा जाता हो और रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड के बुक स्टॉल्स पर जो गानों की किताबें मिलती हैं उनके शीर्षक हों मुकेश के दर्द भरे नगमे, लेकिन मुकेश केवल दर्द भरे नगमों के गायक नहीं थे। जब भीगा भीगा मौसम आता है तो भला कौन सा ऐसा मनमौजी व्यक्ति हो जो ये गाना ना गुनगुनाए।

यानी हम ये कहना चाहते हैं कि मुकेश ने तरह तरह के गाने गाए। वो केवल एक दर्द भरी आवाज नहीं थे, वो एक जिंदा दिल आवाज थे। मुकेश एक बेमिसाल शख्सियत जिन्होंने हर समय लोगों का भला किया। 27 अगस्त 1976, डेट्रॉइट मिशिगन, एक कॉन्सर्ट चल रहा है और मुकेश गाना गा रहे हैं। पर्दे के पीछे जाते हैं, दिल का दौरा पड़ता है और वो इस अनजान दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। कॉन्सर्ट जारी रहता है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक मुकेश पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है डिंडौरी जिले की चिट्ठी आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया वाचन स्वर दीपा सिंह। डिंडौरी जिले में इस समय रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाजारों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कल रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। पर्व के पहले जिले के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। जगह जगह राखी और रुमाल की दुकानें सजी हुई हैं, जहां बड़ी संख्या में बहनें राखियों की खरीदारी कर रही हैं। इसके साथ ही कपड़े और मिठाई की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। रक्षाबंधन के अगले दिन कजरिया पर्व भी मनाया जाएगा। घरों में कजरिया बोकर उनकी सेवा की जा रही है। वह ईद मिलादुन्नबी को लेकर भी जिला मुख्यालय में उत्साह का माहौल रहा। नगर की सड़कों को सजाया गया। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने मुख्य मार्ग पर जुलूस निकाला। इसी तरह जिले में अलग अलग पर्वों को लेकर लोगों में उत्साह और उमंग का माहौल बना हुआ है। जिले में इस साल बारिश अपेक्षाकृत कम हुई है। जून से शुरू होने वाली बारिश देर से शुरू हुई और जुलाई तक पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण फसलों की बुआई प्रभावित हुई। धान और मक्का की फसल की बुआई काफी देर से हुई। किसानों का मानना है कि इस बार फसल कम हो सकती है, क्योंकि समय पर बारिश नहीं होने के कारण बुआई में देरी हुई है और देर से बुआई होने पर उपज कम होने की आशंका रहती है। हालांकि अगस्त माह में करीब 15 दिन लगातार हुई बारिश से किसानों को कुछ राहत मिली है। अगस्त में हुई बारिश के कारण जिले की नदियां भी उफान पर रही और नर्मदा सहित अन्य नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जिले के विकास से जुड़े कार्यों की समीक्षा के लिए सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और मूल्यांकन समिति यानी दिशा की बैठक डिंडौरी में आयोजित की गई। बैठक में राघोपुर क्षेत्र की योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन पर विशेष रूप से चर्चा की गई। नर्मदा नदी को निर्मल और अविरल बनाए रखने के लिए भी जिले में जन भागीदारी से कार्य करने पर जोर दिया जा रहा है। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने नर्मदा तटों पर स्वच्छता श्रमदान करने का आह्वान किया है। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण, छोटी जल संरचनाओं के पुनर्जीवन, भूरी बंधान और सोकपेट निर्माण जैसे कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जिले के सभी 7 विकास खंडों में पोषण आहार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए साझा चूल्हा समूहों के माध्यम से टेक होम राशन तैयार और वितरित किया जा रहा है। जिले में कुल 905 साझा चूल्हा समूहों के माध्यम से टेक होम राशन तैयार किया जा रहा है। इनमें से 661 समूहों ने इसका वितरण भी शुरू कर दिया है। इस व्यवस्था से लगभग 35,000 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें 6 माह से 3 साल तक के बच्चे और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे इस पोषण युक्त टेक होम राशन में निर्धारित रेसिपी के अनुसार गेहूं और चावल के साथ दलिया, चना दाल, तिल और सोया बड़ी जैसी पोषण युक्त सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। डिंडौरी जिले में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का भी प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत कृषि, मिलेट उत्पादन, प्राकृतिक और जैविक खेती, कृषि मशीनीकरण, पशुपालन, सिंचाई और जल संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में विभागीय योजनाओं का समन्वित रूप से संचालन किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप डिंडौरी जिले देश के 100 चयनित जिलों में जुलाई माह के मध्य प्रथम रैंक हासिल की है। यह उपलब्धि जिले में 11 विभागों द्वारा संचालित 36 योजनाओं के बेहतर समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है। इसी क्रम में डिंडौरी जिले में जनविश्वास अभियान के तहत भी ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाए जा

रहे हैं। प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग गांव में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में ग्रामीणजनों की समस्याओं को सुना जा रहा है और उनके त्वरित निराकरण का प्रयास भी किया जा रहा है। विभिन्न विभागों द्वारा भी अपने अपने शिविर लगाकर ग्रामीणों को शासन की योजनाओं सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं के समाधान के लिए सुविधा मिल रही है। कुल मिलाकर डिंडौरी जिले में इस समय एक ओर जहां रक्षाबंधन, कचलिया और ईद मिलादुन्नबी जैसे पर्वों को लेकर उत्साह है, वहीं दूसरी ओर बारिश, खेती, जल संरक्षण, पोषण, ग्रामीण विकास से जुड़े कार्य भी लगातार जारी हैं। कम बारिश के बीच किसानों को अगस्त की वर्षा से कुछ राहत मिली है, जबकि प्रशासन ने नदी नालों के जलस्तर को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे डिंडौरी जिले की चिट्ठी। आलेख था लक्ष्मी नारायण अवधिया का, वाचन स्वर था दीपा सिंह का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था।
1: डिफेंसिव होना पड़ेगा, वो दिखा मुझे। पुरानी दिल्ली का कल्चर में थोड़े बड़ा हुआ तो मैंने वो मेरा एक्सपोजर बढ़ा, जहां जिसे हम मीर गालिब का कल्चर कहते हैं
0: जी।
1: या लखनऊ से निकल के दिल्ली पहुंचने वाला खुसरो का कल्चर कहते हैं, वो कल्चर से भी मैं वाकिफ हुआ। तो मेरा बचपन ये दो स्रोतों में बहते हुए निकला।
2: फिर नेपाल भी कुछ वक्त
1: फिर नेपाल फिर मैं जब क्लास 5 में था तो पापा का तबादला नेपाल हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस था
0: जी।
1: वो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनका काम ही था इकोनॉमिक एनफोर्समेंट के जरिए काम करना। तो नेपाल जो है वो गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता था, तो पापा का वहाँ तबादला हुआ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको काम भी करना था। तो मैं वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के स्कूल में पढ़ता था, जो कि सेंट्रल स्कूल कहते हैं। छोटा सा स्कूल था, एक क्लास में सिर्फ 18 बच्चे थे। तो संगत बहुत अच्छी हुई, क्योंकि बड़े स्कूल में बहुत सारे बच्चों के बीच में आप खो जाते हैं, यहाँ बहुत कम बच्चे थे। तो एक जो है अपनापन बन गया, टीचर्स का अटेंशन वो ज्यादा दे पाते थे हर बच्चे को, और यहाँ से मेरा नाटक का सिलसिला बहुत अच्छा शुरू हुआ। क्योंकि नाटक मैंने उससे पहले भी किया, मतलब मैंने लोअर केजी से ही शुरू किया था, जब मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा जो अंदर का जो एक शर्मिला जॉय है वो कहीं छूट जाता है पीछे, जब मैं कुछ कपड़े पहन लेता हूँ, मुंह में कुछ रंग लगा लेता हूँ और स्टेज पे जाता हूँ। ये मुझे लोअर केजी से ही मुझे
2: एक ये स्कूल का प्ले भी मुझे कुछ सुना है मैंने,
1: जी,
2: इस बारे में कुछ बताएं।
1: तो उस समय बात है, मैं कॉन्वेंट स्कूल में था कलकत्ते में, दमदम में, हार्वर्ड मेमोरियल करके। तो वहां पे ऑब्वियसली क्रिसमस के आसपास नेटिविटी प्लेस होते थे, तो मुझे जिहोवा का किरदार दिया गया, मतलब जीसस क्राइस्ट के पिताजी का, कंबल पहनाया गया, दाढ़ी लगाई गई और सर पे साफा बांधा गया, लाठी दे दी गई। तो मुझे जहां तक याद है, मतलब मेमोरीज ही है, कि मैं जब वो सब कर रहा था तो टीचर्स मेरे मम्मी को कह रहे थे कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, बाकी बच्चों को बताना पड़ता है, ये तो अपने आप ही बहुत चीजें कर जाता है। तो मुझे वो याद है वो वाक्या, कि मैं वैसे मैं बहुत शर्मिला था, क्लास में अगर मुझे कुछ प्राइज भी मिलता था और मेरा नाम लेते थे तो मैं खड़ा नहीं होता था, इस डर से, शर्म से, कि मुझे अपनी शक्ल दिखानी होगी सबको। इतना शर्मिला लड़का कभी नाटक कर सकता है? लेकिन मजे की बात यह है कि शायद जिनके अंदर झिझक हो वो वेट कर रहे हैं कि किसी मीडियम के जरिए वो अपने आप को खोल पाए। तो नाटक मेरे लिए था वो एक्सपोजर जो है। और लेकिन हाँ, स्टेज पे जाके मैंने अपने मम्मी को सामने देखा तो शर्मा के मैंने अपनी जीभ बाहर करके मैं खड़ा हो गया। वो शुरुआत थी मेरी। लेकिन नेपाल में चल के खास करके हमारे क्लास प्लेस भी होते थे, जो कि इंटर हाउस प्लेस होते हैं, क्लास के अंदर के प्रोग्राम्स होते थे और एनुअल प्रोग्राम होता था। और इन दिनों मेरा जो है साहित्य के साथ बहुत अच्छा संबंध हो गया था। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत छोटपन में मेरे हाथों में बच्चों के ही सही लेकिन साहित्य दिया था, बड़ों के साहित्य को, मतलब जो लिटरेचर कहते हैं उसको भी ट्रांसलेटेड वर्क्स मुझे पकड़ाए थे, चार्ल्स डिकेंस हो या हमारे बंगाली में बहुत राइटर्स हैं रहे हैं, बिमल मित्रा, बिमल कौर, आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, इनके लिटरेचर हो, अंग्रेजी लिटरेचर हो, फ्रेंच लिटरेचर हो, ये सारे उन्होंने ट्रांसलेटेड मुझे दिया था बंगाली में। हाँ, मैं वो पढ़ता रहता था, बच्चों का शेक्सपियर मैंने बचपन से पढ़ना शुरू किया। तो इससे मेरे अंदर का जो मेरी कल्पना शक्ति एकदम उजागर हो गई। मैं ये सब किरदारों को आसपास देखता था, मैं उनके साथ एडवेंचर पे जाता था, मैं पूरी दुनिया घूम लेता था साहित्य के जरिए। अगर मैं किसी वाइकिंग के ऊपर कोई किताब पढ़ रहा हूँ तो मैं वाइकिंग के साथ उनके जहाज पे पूरी दुनिया घूम रहा हूँ, एडवेंचर कर रहा हूँ। तो ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए किताब। मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट तो था,
2: बिल्कुल,
1: तो किताबें दोस्त बन गई। और फिर नाटक, ये लिटरेचर से नाटक की तरफ जिसे कहते हैं, मैंने खुद अपने हाउस प्लेस के लिए नाटक लिखे जो मैंने पढ़े थे किताबों में। तो अरेबियन नाइट्स में समझ लो कोई किस्सा पढ़ा, उसी में से मैंने कोई नाटक का रूप दिया बच्चों का, और उसको डायरेक्ट भी

0: तो इस तरह से मेरा नाटक का सिलसिला स्कूल टाइम में आप कह सकते हैं कि प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल में जाके बहुत एक्टिव हो गया।
1: वहीं से एक दिशा मिल गई कि इस तरफ ही जाना है।
0: और एनुअल डे में नॉर्मली सीनियर स्टूडेंट्स को मौका मिलता था, तो मेरे अंदर एक जिद थी कि मैं भी एनुअल डे में परफॉर्म करूंगा। तो मैं खुद ब खुद नाटक बनाने लग गया। मैंने कुछ नाटक उठाया, वन एक्ट प्ले, और एक दो दोस्तों को पकड़ा, मैंने डायरेक्ट किया, खुद ही परफॉर्म किया, और जाके मैंने वो दिखा दिया। हमारे जो कल्चरल कोऑर्डिनेटर होते थे उनको जाके दिखाया, वो इतने प्रभावित हो गए, बोले कि हाँ इस साल हम सेकेंडरी स्कूल का भी एक नाटक एनुअल डे में रखेंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ सेकेंडरी के स्टूडेंट्स का नाटक जो मैंने डायरेक्ट किया, मैं एक्ट कर रहा था, वो रखा गया। वो इतना अच्छा लगा उन लोगों को एनुअल डे के प्रोग्राम में भी कि प्रिंसिपल ने कहा कि इसको हम अपने प्रेयर के ग्राउंड में भी इसको खेलेंगे। तो प्रेयर ग्राउंड में सब स्टूडेंट के सामने मैंने उसको खेला, तो ऐसा शुरू हो गया। फिर मुझे याद है कि हम लोग घर घर जाके अपने SUPW के मोमबत्ती वगैरह जो बनाते थे वो बेचते थे। तो बेचने जाते थे तो कुछ लोग मेरे फादर की कलीग थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, बोले कि भाई मैंने तुम्हारा नाटक देखा एनुअल डे में, हाँ मैं पागल हो गया, तुम एक काम करो पापा को मत बताना, जब बड़े होंगे तो सीधा मुंबई चले जाना, बॉम्बे कहते चले जाना। मैंने कहा अंकल ये क्या कह रहे हो, मुझे तो पता नहीं ये सब क्या है। कहते नहीं मैं तुमको बता रहा हूँ, याद रखना बड़े होंगे तो बॉम्बे चले जाना। मैंने कहा अच्छा, कहते हाँ। तो मेरे सर पे ये जो है बीज बो दिया
1: गया था।
0: तब मैं क्लास 8 में था शायद, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी है कुछ, मतलब मेरे अंदर कुछ है जो मुझे काठमांडू से दिल्ली नहीं, कलकत्ता नहीं, बॉम्बे
1: ले जाना चाहता है।
0: तो ये एक और सिलसिला था।
1: बिल्कुल।
0: फिर मैं दिल्ली वापस आया। दिल्ली में अब मैं सीनियर स्कूल में था, सीनियर स्कूल में भी मैं नाटक खेला, वहां पे भी मेरे इंग्लिश टीचर जो थे उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी खास जो टैलेंट है इसको तुम नजरअंदाज ना करना।
1: तो नाटक जो है आपका पहला प्रेम कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविजन फिल्म्स उसके आगे प्रायोरिटी आपकी जो रहती है वो शायद नाटक की रहती है।
0: ये मेरा जीवन भर का अगर कोई प्रेमिका या प्रेम है तो वो नाटक है। बाकी सब प्रेमिकाएं तो छूट जाती है, रह जाती है, टूट जाता है दिल, लेकिन इसने ना दिल मेरा तोड़ा है ना ही मेरा पीछा छोड़ा है, तो ये संबंध तो अभी तक चल रहा है।
1: चलिए यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना आप सुनना चाहें बताएं।
0: शुरुआत अगर करें तो एक थोड़े खुशहाल गाने से करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जो मेरे एक ऑप्टिमिज्म का गाना, मेरे फिलॉसफी को दर्शाता है, वो देवानंद का मैं बड़ा फैन होता था, तो उनका एक गाना है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, उसको अगर आप सुना दें।
1: सुनवाते हैं गाना हमारे श्रोताओं को आपकी पसंद का।

0: गया।
1: बात चली है नाटकों की, तो यूनिवर्सिटी में ही आपने जन नाट्य मंच से अब जुड़े और उसके बाद थिएटर का जो सफर है थोड़ा सा और प्रोफेशनल हो गया
2: जी।
1: नाम आता है बहुत बड़े दिग्गजों का जिसमें इब्राहिम अलकाजी साहब का नाम आता है
2: जी।
1: और भी कई नाम आते हैं
2: जी, जी।
1: तो उनके साथ जब आप जुड़े तो कैसा अनुभव, कुछ अलग अनुभव है वो
2: कमाल,
1: उसके बारे में कुछ बताएं, अलग अलग मेथड्स कैसे हैं, अलग अलग तरीके कैसे हैं सबके?
2: सबसे पहली बात तो ये है कि गुरुओं का बड़ा योगदान होता है समाज को बनाने में। एक गुरु आपके अंदर बीज बोता है, फिर उसमें पानी देता है, फिर फसल उगता है, फिर आप जाके जो आप सीखते हैं उस गुरु से उसको आप शेयर करते हैं, है ना?
1: बिल्कुल।
2: जब वो शेयर करते हैं वो समाज में और आगे निकलता है, कुछ लोग और प्रभावित होते हैं और उस पथ पे चल पड़ते हैं। तो अगर आपके गुरु ने आपके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज डाले हैं, आपको सही मायने में एक अच्छे कल्चरल दिशा दिखाई है, तो आप भी उसी पथ पे चलेंगे और लोगों को दिशा दिखाएंगे और उस दिशा पे बाकी लोग भी चल पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं समाज बहुत स्वस्थ हो जाता है। तो मेरे जिंदगी में जो गुरु आए, सफदर हाशमी हो, जिन्होंने मुझे जीवन दर्शन दिया कि दुनिया को कैसे देखना चाहिए, समाज को कैसे देखना चाहिए, किस नजरिए से देखना चाहिए, तो सबको समान तरीके से समझना और तोलने का जो गुण है उनसे मैंने सीखा। किसी इंसान और इंसान में कभी फर्क नहीं करना, चाहे वो कोई भी इंसान हो, वो चाहे उसकी चमड़ी अलग हो, दमड़ी अलग हो, धर्म अलग हो, उसका इनकम अलग हो, कुछ भी हो, कभी भी किसी इंसान में फर्क नहीं करना, सबको एक ही नजरिए से देखना, उसके बाद अपने आप को प्रस्तुत करना, उसके बाद उनसे जुड़ना, समानता के नजर से जुड़ना किसी के साथ भी, ये मैंने उनसे सीखा
1: जी।
2: तो वो बहुत काम आया मेरे, कि मेरे अंदर से जो विभाजनकारी जो एक पर्सनालिटी बन जाती है लोगों के अंदर, कभी वो घर से वैल्यू लेके निकलते हैं, कभी चारों ओर के इन्फ्लुएंसेस से लोग, हर कोई थोड़े विभाजनकारी बन जाता है, मेरी भाषा, हाँ, मेरी जात, मेरा धर्म,
1: मेरा कल्चर,
2: मेरा शहर
1: जी,
2: मेरा कल्चर, मेरा खान पान, मेरी आदतें, मेरी तरह के लोग क्यों नहीं, दूसरे तरह के लोग क्यों, वो लोग और हम लोग, ये फर्क उसी से आता है, मेरा देश सबसे महान, उसका देश सब नीचे गिनेंगे, ये जो ऊंच नीच विभाजन, ये सारी चीजें, ये इन्फ्लुएंसेस होती हैं, बहुत सारी चीजें घर से निकलती हैं, बहुत सारी चीजें हमारे चारों ओर से आती हैं, मीडिया से भी आती हैं। अगर आपको बहुत पहले ये नजरिया आपको मिल जाए, ये दुनिया को देखने का दर्शन आपको मिल जाए कि आपको कोई फर्क नहीं करना है, जब आप किसी के सामने अपने आप को प्रस्तुत करो, किसी से बात करो, किसी से जुड़ो, तो पहले समानता से जुड़ो
1: जी,
2: उसके बाद फिर आप तोलो कि हाँ इसमें ये कमी है, कैसे मैं इस कमी को दूर करूं और इसे ऊपर उठाऊं। तो हमारी जिम्मेदारी है किसी को ऊपर उठाना, किसी को नीचे गिराना नहीं। ये जो दर्शन ये मैंने सफदर से पाया, और अलकाजी साहब ने मुझे दुनिया में खूबसूरती को खूबसूरत तरीके से देखना सिखाया कि आप कोई भी चीज को कैसे खूबसूरत बना सकते हो, उसके अंदर की खूबसूरती को कैसे निकाल सकते हो, निखार सकते हो, यह अलकाजी साहब से मैंने सीखा। चाहे वो साहित्य हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे थिएटर हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे कुछ भी हो, जिसको हम एस्थेटिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, सौंदर्य दर्शन आप कह लीजिए, आपके चारों ओर सौंदरता है, पेड़ पौधे सबसे ज्यादा सौंदरता का प्रतीक है, आपके अंदर का अंदरूनी मन सौंदरता का प्रतीक है, साहित्य सौंदरता का प्रतीक है, कविता, पेंटिंग, थिएटर, ये सब सौंदरता का प्रतीक है, इनको उजागर करना है हमको, इनको समाज के सामने लेके जाना है, प्रकृति और कला, और एक साइंटिफिक नजरिए से, मतलब एक वैज्ञानिक सोच के साथ, आप किसी को भटकाएंगे नहीं, वैज्ञानिक सोच में क्या होता है, भटकाते नहीं है, आप सही रास्ता दिखाते हैं। तो ये वैज्ञानिक सोच और ये कलात्मक सोच सफदर और अलकाजी साहब के चलते मेरे अंदर बैलेंस बन गया था।
1: बिल्कुल।
2: और
1: कहते हैं ना, थिएटर का मतलब जो पहला सबक सिखाया जाता है, सबको साथ में लेकर चलना
2: जी,
1: सिर्फ अपना नहीं

0: पूछना, एक टीम वर्क और सब कैसे संभलें।
1: ये तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुश्किल ये होता है कि जब एक्टर होता है ना थिएटर में, तो वो ग्रुप में समा जाता है, ग्रुप थिएटर में वो फिलॉसफी लेके चलता है कि सबको साथ लेके जाना है, लेकिन खुद जब वो खड़ा होता है तो एक्टर वो सिर्फ अपने आप को देखता है और तब उसे सिर्फ अपनी पहुंच, अपना रुतबा है ना
0: जी,
1: अपना माइलेज, अपनी रोशनी, ये चाहिए उसको। तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर वो थिएटर का जो फलसफा है वो भूल जाता है वो,
0: बिल्कुल,
1: कि सबको साथ लेके चलना है, किसी को नीचे नहीं गिराना है बल्कि हाथ देना है, उठाना है। अगर दूसरों को उठाओगे तो आप खुद भी उठोगे। थिएटर में हम ये सीखते हैं कि अगर आपका बगल वाला एक्टर कोई सीन खराब करता है तो आपका सीन भी खराब हो जाता है, क्योंकि आप उसी के साथ काम कर रहे हो। तो वो अच्छा करेगा तो आपका सीन अच्छा जाएगा, तो आप अच्छा काम करोगे। तो इसीलिए एक दूसरे को आप कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते रहते हो थिएटर में, लेकिन दूसरे मीडियम में जाके वो बाजारू हो जाता है। तो बाजार में क्या है कि हर कोई जो है अकेला दिखना चाहता है,
0: बिल्कुल,
1: अकेले खड़ा होना चाहता है,
0: मैं
1: तो
0: सबसे अलग।
1: हाँ, तो ये बाजार आपको सिखाता है कि आपकी अलग ब्रांडिंग है, आप ब्रांड हो, आप सब मिलके ब्रांड नहीं हो, आप अकेले ब्रांड हो। तो यहां जाके फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है।
0: यहां पर सुनते हैं आपकी पसंद का दूसरा गाना।
1: अब मैं थोड़ा जिसे गंभीर गाने की तरफ लेके जाता हूँ। आज का जो दौर चल रहा है, युवाओं के मन में जो सवाल चल रहे हैं, उससे जुड़ा एक गाना है, फिल्म प्यासा में, गुरुदत्त की फिल्म है, साहिर ने लिखी थी और एसडी बर्मन ने कमाल का जो है इसे सुर दिया था, वो है जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है।
0: सुनते हैं गाना।

0: अभी थिएटर की जैसे हमने बात की
1: जी,
0: 80s 90s से आप जुड़े हैं,
1: हाँ,
0: नुक्कड़ नाटक भी किए हैं, थिएटर अभी भी कर रहे हैं,
1: जी, जी,
0: लेकिन अभी कुछ वक्त से, कुछ सालों से एक जो चेंज, एक परिवर्तन देखा है वो है कि मेगा प्लेज करके थिएटर आ गया है,
1: जी, जी,
0: उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही साउंड इफेक्ट, एक लार्जर देन लाइफ अगर हम टर्म यूज करें
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: वो यूज कर सकते हैं, तो कितना फर्क आया तब में और आज में, या हर किसी के अपना अपना एक जगह है, अपना स्थान है,
1: हर
0: सब
1: किसी का
0: पैरेलल
1: स्थान
0: चल
1: है,
0: रहे हैं?
1: क्योंकि ये तो पश्चिमी देश से आया है। होता यह है कि पश्चिम देश में अगर आप देखें, खास करके इंग्लैंड और यूएस में अगर आप देखें, तो इंग्लैंड में जो थिएटर डिस्ट्रिक्ट है उसको वेस्ट एंड कहते हैं,
0: जी
1: और यूएस में न्यूयॉर्क थिएटर कैपिटल है और वहां पे ब्रॉडवे कहते हैं।
0: जी
1: जब आप वेस्ट एंड या ब्रॉडवे कहते हैं तो आप बड़े नाटक की बात करते हैं, म्यूजिकल्स की बात करते हैं, जहां बड़ा होता है। जब उससे हटके बात होती है, जो जिसमें थोड़ा सा अपनापन होता है, पर्सनल एलिमेंट होता है, उसको हम ऑफ ब्रॉडवे कहते हैं।
0: अच्छा,
1: और जब वहां से और हटके बहुत एक्सपेरिमेंटल काम होता है, रिस्की काम होता है, चीजों को परखने का काम होता है, उसको हम ऑफ ऑफ ब्रॉडवे बोलते हैं। वही वेस्ट एंड में भी है, वेस्ट एंड है, ऑफ वेस्ट एंड है, ऑफ ऑफ वेस्ट एंड है। तो वेस्ट एंड ऑफ ब्रॉडवे में बड़ा काम होता है, वहां पर बड़े स्टार्स आते हैं जिनको फिल्मों में भी देखते हैं। वहां पे म्यूजिकल में चकाचौंध टेक्निकलिटीज आपको दिखती हैं, सीन्स ऐसे बदलते हैं आपको पता भी नहीं चलता, इस तरह के सेट्स आते हैं, इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं, आप जो है उड़ जाते हैं, एकदम होशो हवास उड़ जाता है आपका, और आप उसके लिए बहुत डॉलर्स और पाउंड्स खर्च करते हैं, ठीक है, उससे पूरी थिएटर इंडस्ट्री चलती है।
0: जी
1: तो उसका कुछ एक हिस्सा ऑफ ब्रॉडवे पे, ऑफ वेस्ट एंड के पास भी आता है, और कुछ हिस्सा ऑफ ऑफ वेस्ट एंड में भी आता है। तो बात करने का जरिया होता है, जैसे नुक्कड़ नाटक में आप सड़क पे बात करते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं ये बात मुझे सड़क पे ही मैं कर सकता हूं, ये हॉल में करूंगा तो कुछ चुनिंदा लोग आएंगे जो टिकट खरीद के देखेंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे। तो सफदर कहता था कि अगर वो नहीं आते तो हमें उनके पास जाना चाहिए, तो आप वहां जाके ये करते हैं।
0: जी
1: फिर एक्सपेरिमेंटल हमारे यहाँ पे भी थिएटर होता है, जैसे दिल्ली में ताशीराम सेंटर बेसमेंट, यहाँ पे भी है, पृथ्वी है, एनसीपीए है। तो एक्सपेरिमेंटल स्पेस में कम दर्शक होते हैं, लेकिन वो दर्शक बड़े ही रोचक दर्शक होते हैं, वो सोच और समझ के साथ आते हैं कोई बात को सुनने। तो आप जब वहां पे मंटो का नाटक करते हैं, मतलब मंटो की बात को रखते हैं, प्रेमचंद की बात को रखते हैं, अंधा योग करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो बड़े रोचकता के साथ उसको देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं। फिर आप बड़े हॉल में जाते हैं, यहाँ पे जमशेद भाभा ऑडिटोरियम है या एनएमएससीसी में बड़ा वाला हॉल है, तो वहां पे जो लोग आते हैं वो वित्तवान लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट चाहिए, वो वेस्ट की तरह चाहिए उनका एंटरटेनमेंट, तो वहां पे चकाचौंध दिखता है। अगर उस चकाचौंध के अंदर कुछ अच्छी बात भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिले तो कम से कम वो इस बात के लिए खुश है कि मैंने जो पैसा खर्च किया है उसके बदले में मुझे एक एक्सपीरियंस मिला है जो बहुत ही एंटरटेनिंग है, और मेरे सारे सेंसेस को इन्होंने एंटरटेन किया है। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं,
0: अपनी अपनी जगह,
1: अपनी अपनी जगह है। आप बड़े चीज के जरिए बहुत अच्छी बात कह सकते हैं, बहुत बड़ी बात कह सकते हैं, जैसे ला मिजराबल करके एक बहुत फेमस म्यूजिकल होता है वेस्ट एंड ब्रॉडवे में, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर है, लेकिन म्यूजिकल है, उसमें कमाल कमाल के गाने हैं, क्रांति के बारे में है, तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। लायन किंग बहुत बहुत फेमस म्यूजिकल है जो वहां पे चलता रहता है, तो लायन किंग में भी तो आप बात क्या कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं, आप फलसफा दे रहे हैं ट्रेडिशन के बारे में, एथिक्स के बारे में, है ना। तो आप बड़ी चीजों के जरिए भी अच्छी बातें कह सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप संस्कृति की बात करते हो तो संस्कृति सिर्फ मनोरंजन पे निर्भरशील नहीं होता, मनोरंजन एसेंशियल होता है, मनोरंजन के बिना संस्कृति नहीं है, मनोरंजन तो होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ मनोरंजन नहीं होता है, उसके अंदर से कोई बात निकल के आती है जो आपके सोच और समझ को या तो बदलती है या उसको और उजागर करती है, तो आपके अंदर एक नई चेतना भर देती है, चाहे छोटे तौर पर हो लेकिन भर देती है, कि आप हॉल से बाहर आए तो थोड़ा सा सोचे और कहीं आपका नजरिए में थोड़ा सा फर्क आए, आप थोड़ा सा साफ देखने लगे, आप चीजों को थोड़े संयम के साथ, संतुलन के साथ देखने लगे, ये अच्छी संस्कृति की जो है सीख है।
0: जी जी म्यूजिकल ड्रामा की बात चलिए तो उसमें भी अपने ताज एक्सप्रेस करके कुछ म्यूजिकल ड्रामा से आप रिलेटेड हैं।
1: जी, जी जी जी अभी भी चल रहा है ना, अभी 23-24 को पृथ्वी में शो है लेडी संगीत करके।
0: अच्छा,
1: वो भी म्यूजिकल ही है।
0: अच्छा,
1: हाँ, वो उसमें कहने को तो लेडी संगीत है तो लोग लेडी संगीत सुनने आते हैं, बहुत शुभा मुद्गल का म्यूजिक है उसमें, बहुत बढ़िया म्यूजिक आता है, फोक और क्लासिकल म्यूजिक आता है उसके अंदर, लेकिन उसके जरिए हम बात करते हैं जेंडर इश्यूज के ऊपर।
0: अच्छा,
1: हाँ, नारी, नारी की जगह, शादी, समाज में शादी की क्या जगह है, उस पर बात करते हैं, और हमारे अपने अंदर के अवचेतन मन के बारे में, हमारे अंदर जो नारित्व छुपा हुआ है उसको भी हम उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बढ़िया नाटक है, लेकिन म्यूजिकल है। और ताज एक्सप्रेस जो है उसे आप कहते हैं बॉलीवुड म्यूजिकल, जैसे बॉलीवुड म्यूजिकल होता है ना कि एक लव स्टोरी होती है उसके अंदर आइटम्स की तरह एक एक गाना आता रहता है और वो जैसे वो स्टोरी आगे जाती है लड़का लड़की भाग जाते हैं और गाने आते हैं, फिर पुलिस आ जाती है और गाने आएंगे, फिर अंडरवर्ल्ड या विलेन आएगा तो और गाने आएंगे, फिर वो बिछड़ेंगे फिर मिलेंगे, कैसे गाने आएंगे, जो बॉलीवुड में का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का वो म्यूजिकल था ताज एक्सप्रेस।
0: रेडियो ड्रामा से भी अब जुड़े हैं, बीबीसी के लिए आपने रेडियो ड्रामा किया, कितना अलग है वो और थिएटर पे करना?
1: देखिए ग्रामर अभिनय का तो एक ही रहता है, इमोशंस, करेक्ट, इमोशंस और आइडियाज को आपको प्रोजेक्ट करना है
0: जी।
1: लेकिन प्रोजेक्शन में आपका जो तकनीक है वो थोड़ा सा बदल जाता है। जब हम नुक्कड़ में करते हैं यानी कि सड़क पे करते हैं तो आवाज का प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, पूरे शरीर का इस्तेमाल ज्यादा होता है। आप लोग जब देख रहे हैं उस चकाचौंध रोशनी में, इतनी भीड़ में, इतने शोर शराब के बीच में, तो आपका शरीर का खेल कमाल होना चाहिए और आवाज कमाल होनी चाहिए। जब आप एक हॉल के अंदर करते हैं जैसे प्रोसिनियम थिएटर करते हैं तो थोड़ा कंसंट्रेशन होता है स्टेज के ऊपर, स्टेज लाइट होता है, ऑडियंस अंधेरे में होती है तो आप साफ दिखते हैं, तो शरीर का बहुत ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आवाज का एक प्रोजेक्शन होता है लेकिन नुक्कड़ की तरह नहीं, वो कम हो जाता है तो उसके अंदर गांभीर्य आ जाता है। जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है। तो बहुत बड़े बड़े अभिनेता सिनेमा में रहे हैं जो बहुत कम बोलते हैं। दिलीप कुमार को अगर आप फिल्मों में देखें तो उनकी आंखें बोलती थी। अमिताभ बच्चन डायलॉग के लिए जाने जाते हैं लेकिन उनकी आंखें बोलती थी,
0: बिल्कुल
1: है ना। तो आंखों से आप पकड़े जाएंगे। ओम पुरी ने आक्रोश में किरदार किया था जिसमें पूरे फिल्म में उनका कोई एक लाइन नहीं है, एक लाइन नहीं है। वो जेल में पड़े हुए सड़ रहे हैं, उनपे अपने बीवी को मारने का इल्जाम है जबकि वो निर्दोष है एक्चुअली। तो लॉयर उससे जब भी मिलने आता है वो एक बात नहीं करते लेकिन आंखों से उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनकी आंखें बता देती है। अब तो सिनेमा में ही है और रेडियो में पूरा ही वाचन, सब कुछ ही ऑडियो है, सिर्फ आवाज से आपको समझना पड़ेगा कि ये आदमी कहाँ है, किस परिप्रेक्ष्य में है, किस मूड में है, कहां से आया है, कहां जा रहा है, जो बातें कर रहा है उसके पीछे क्या अवचेतन मन में क्या चल रहा है, सब टेक्स्ट सब कुछ उसकी आवाज से निकलनी चाहिए। तो आवाज पे ही पूरा काम करना पड़ता है, फिर सारे इमोशंस को आवाज के जरिए, पिच के जरिए, और आपको एक अंदाजा देना पड़ता है आवाज के जरिए कि आप किस स्पेस में हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस स्पेस में हैं। तो वो सब जो है, किरदार का क्लास क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो सब आवाज से होता है। तो सोचिए जब आप आंख बंद करके भी आप सुनेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। तो ये रेडियो प्ले की खासियत है।
0: बिल्कुल, यहाँ पर आपकी पसंद का गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं।
1: जी, एक बढ़िया गाना है जिसमें क्रांतिकारी सोच भी है लेकिन थोड़ा ऑप्टिमिज्म भी है। एक फिल्म थी राज कपूर की, ये सुबह कभी तो आएगी, वो जो है दोस्तोवस्की की फेमस कहानी क्राइम एंड पनिशमेंट पे बेस्ड थी। उसमें एक ही गाने को दो तरह से गाया गया था। ये सुबह कभी तो आएगी पहले दुखद तरीके से गाया गया था, जब वो सोचते हैं कि ये सुबह शायद कभी नहीं आएगी, फिर अंत में जब वो लड़की रोती है तो वो गाते हैं कि ये सुबह हम ही से आएगी। तो ये जो ये सुबह कभी तो आएगी, ये सुबह हम ही से आएगी, ये गाना जो है मुझे बेहद पसंद है।
0: बिल्कुल, और गीतों के साथ जो आप डिटेलिंग दे रहे हैं वो सुनने में और मजा आ रहा है।

0: बात करते हैं फिल्मों की, हिंदी फिल्मों की, तो लेट 90s में आपकी शुरुआत हुई हिंदी फिल्म से, 1084 की माँ, जो कि काफी पॉपुलर रही,
1: चर्चित रही
0: कह सकते हैं बिल्कुल, और पहचान मिली एक.
1: जी जी,
0: इससे जुड़ना कैसे हुआ?
1: मैं आपको सच बताऊं तो ये बड़ा अजीबोगरीब जिसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन है. मैं 80 के दौर में जब स्कूल में रहते हुए मैं भारतीय पैरेलल सिनेमा की तरफ, सीरियस सिनेमा की तरफ मेरा झुकाव हो गया था. अमिताभ बच्चन के दौर से निकलकर मैं इस दौर में जा रहा था जहां फिल्मों में नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पंकज कपूर, शवाना जी, स्मिता पाटिल, दीप्ति जी, इन लोगों का दौर चल रहा था अभिनय के क्षेत्र में. और डायरेक्शन में श्याम बेनेगल, सैयद मिर्जा, कुंदन शाह, केतन मेहता, ये सब जो है धूम मचा रहे थे. मैं वैसे भी थोड़ा बहुत आदर्शवादी था तो गोविंद निलानी मेरे मन में बैठ गए. उसके बाद मैंने उनकी आगे फिल्म देखी अर्धसत्या, जो करप्शन फुल पुलिस व्यवस्था के ऊपर थी. फिर उनकी फिल्म आई आघात, जो ट्रेड यूनियन के ऊपर थी. उसके बाद उनकी फिल्म आई तमस, जो पार्टीशन के ऊपर थी. एक के बाद एक और मेरे होश हवास उड़ गए. मुझे अगर कभी मैं सिनेमा में मौका मिला तो मैं ऐसे डायरेक्टर या इनके साथ ही करना चाहूंगा कम से कम एक काम या शुरुआती काम जो भी है. तो फिर जब मैं थिएटर में पढ़ाई कर रहा था, थिएटर सीख रहा था अलगाई साहब से, तो उस समय बॉम्बे आने का एक बार मुझे मौका मिला था. तो मैंने बड़े मुश्किल से पता लगाया कि गोविंद निलानी जो है महबूब स्टूडियो में मुंबई में शूटिंग कर रहे हैं. तो मैं वहां पहुंच गया और मैं उनसे मिला और वो मुझसे मिले भी. तो उनको जब पता चला मैं अलकाई साहब का स्टूडेंट हूं तो बड़े खुश हुए. पूछा मेरे नाटकों के बारे में. और मैंने जो नाटक किया था विरासत करके, नाटक है वराचिड़ी बिंदे, ये एल कुंचर की नाटक, वो उस पे वो एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे दूरदर्शन के लिए.
0: अच्छा
1: जी, टीवी फिल्म. तो बोले कि मैं तुमको मैं इतला करूंगा अगर जब मैं ये बनाऊंगा. तो मैं अपने फोटो वोटो देखे, बड़े खुश होकर मैं सीना चौड़ा करके वापस आ गया दिल्ली और मेरे नाटक के सेक्शन में घुस गया. फिर बातें भूल गया मैं, दो तीन साल गुजर गए. फिर जब फाइनली मेरा बॉम्बे आना हुआ और मैंने वहां नाटक करना शुरू किया, तो मेरे जो पहले नाटक का शो था वहां पे, इफ विशेस फॉर हॉर्सेस करके एक नाटक, तो उसका शो देखने गोविंद निलानी आए हुए थे, ये मुझे पता नहीं था.
0: अच्छा.
1: मैं उसके बाद चंडीगढ़ चला गया वर्कशॉप लेने. मैं हर गर्मी की छुट्टी में चंडीगढ़ में बच्चों का वर्कशॉप लेता था. तो मैं ये सारी चीजें करता था, मतलब टेलीविजन भी करता था, थिएटर भी करता था, वर्कशॉप भी लेता था, ये सब मेरे चलता रहता था. पंजाब यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट में फोन आया गोविंद निलानी के ऑफिस से.
0: अच्छा.
1: पता नहीं उन्होंने कैसे पता लगाया कि मैं चंडीगढ़ में हूँ, और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट में फोन किया कि भैया जॉय सेन गुप्ता चंडीगढ़ में, जरा पता करो, उनको बताओ कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात करनी है. तो मैं मुंबई लौट आया, उनके वहां गया. उन्होंने कहा भाई मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जो महाश्वेता देवी की जो छोटी नॉवेल है, नॉवेला 1084 की माँ के ऊपर है, उसके प्रोटैगनिस्ट के लिए तुमको मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि मैंने तुम उनका नाटक देखा, मुझे पसंद आया तुम्हारी पर्सनालिटी. मुझे एक दो और लोगों ने कहा कि भैया इस लड़के पे नजर रखो. तो मैंने नजर रखा और तुम्हें याद किया. अब तुम ऑडिशन दो और देखते हैं कैसा आता है. तो एक बड़ा मुश्किल ऑडिशन लिया मैंने उनसे, तीन तरह के ऑडिशन, जिसमें कॉमेडी भी था, सीरियस भी था और इन्फॉर्मेटिव भी था. ऐसे तीन तरह के ऑडिशन के बाद मुझे चुना और ऐसे फिल्म में चुना जो उस दौर को दर्शाती है जिस दौर में मैं पैदा हुआ. उस दौर में महाश्वेता देवी ने लिखा था उस एक स्टूडेंट के बारे में जो मारा जाता है, मरने के बाद वो सिर्फ एक नंबर बन जाता है, लाशों का नंबर होता है, लाशों का नाम नहीं होता. उसकी माँ जब अपने बेटे को ढूंढने जाती है तो उसे लाश का नंबर बताया जाता है. वो कहती है सिर्फ नंबर कैसे हो गया, ये तो मेरा बेटा है व्रती. फिर उस नंबर के पीछे की सच्चाई को ढूंढने उसकी माँ निकलती है कि वो कौन सा पक्ष है इस मेरे बेटे का जो मैं नहीं जानती थी. मेरा बेटा तो घर पे एक मध्यम वर्ग का अच्छा लड़का था, कॉलेज जाता था, पढ़ाई करता था, मेरे को हंसाता था, ये उसे पसंद था, वो था, ये चीज तो मुझे पता ही नहीं था कि पुलिस ने उसे क्यों गोली मारी. तो वो समझने के लिए निकलती है और फिर अपने बेटे के इतिहास के जरिए खुद उसके अंदर एक क्रांतिकारी भाव आ जाता है. तो माँ का भी एक ग्रोथ होता है इस फिल्म में, इसीलिए वो 1084 जो नंबर है उसकी माँ. इसमें मुझे मौका मिला काम करने का. तो मेरा जो पर्सनालिटी है नुक्कड़ नाटक, ठीक है, मेरा जो जीवन दर्शन, दुनिया को देखने का नजरिया, जिस दौर में पैदा हुआ, वो सब कुछ इस फिल्म में मिला. तो एक तरह से आप कह सकते
0: हैं कि जिया आपने उसे, उस माहौल को.
1: बताइए एक पूरा कैसे एक कोइंसिडेंस है, लेकिन ये सारी चीजें एक जगह आ गई. महाश्वेता देवी, गोविंद निलानी, मैं, मेरे को एक्ट्रेस नंदिता दास जो जननाट्य मंच में मेरे साथ काम करते थे, हम लोग साथ नुक्कड़ नाटक करते
0: और
1: थे,
0: जया बाली जी और अनुपम खेर के साथ.
1: जी जी जी जी जी. तो अनुपम खेर जो महेश भट्ट स्कूल ऑफ सिनेमा से आए थे, जया जी जिनकी शुरुआत सतीत्रे से हुई, और फिर ऋषिकेश मुखर्जी स्कूल ऑफ एक्टिंग से आए, तो ये सारे जो है एक जगह हम लोग आ गए.
0: चलिए यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना आप सुनना चाहें बताएं.
1: लगान का गाना है चले चलो बड़े चलो, वो आप जरूर सुनाइए क्योंकि उसके अंदर एक जोश है, होश है, वो सुना दीजिए।
0: सुनते हैं गाना।

0: मैनिफेस्टेशन दरअसल सच होता है
1: ऐसा ही लगा मुझे।
0: दिल से चाहो तो ऐसा ही लगा। और भी आगे भी हम बात करेंगे, आगे भी बहुत सारी चीजों में मैनिफेस्टेशन हुआ है आपका।
1: जी, जी, जी।
0: तो अभी फिल्मों में आप आ चुके थे, उसके बाद भी आप टीवी पर भी काम कर रहे थे।
1: जी, जी।
0: तो कभी ऐसा नहीं लगा कि अब थिएटर कर लिया, फिल्मों में आ गया, अब टीवी छोटे पर्दे पे मैं क्यों करूं, ऐसा कभी भावना नहीं आई?
1: टीवी पे काम मैंने सिनेमा से पहले शुरू किया था।
0: अच्छा।
1: मैं थिएटर से टीवी में मुझे मौका मिला था।
0: अच्छा।
1: मैं टीवी में एंकरिंग कर रहा था, होस्टिंग कर रहा था, एक्टिंग भी कर रहा था और मैं ठीक ठाक पैसे कमा रहा था। तो एक मध्यम वर्ग का वो एक्टर जिसका बाप एक सरकारी मुलाजिम था, जिसकी ना कोई सेविंग्स थी ना कोई प्रॉपर्टी थी, और जिसने अपने बच्चे के बारे में ये सपना देखा था आईएएस ऑफिसर बनेगा, है ना, तो जिसमें जिंदगी में सिक्योरिटी भी होगी, औहदा भी होगा,
0: बिल्कुल,
1: और थोड़े बहुत पैसा भी होगा, उसने तय किया कि मेरे पीछे कुछ होना हो मैं आर्टिस्ट ही बनाऊंगा।
0: अच्छा।
1: और एक्टर नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ एक्टर नहीं था, मैं एक सीरियस आर्टिस्ट था। मैं थिएटर से जुड़ा हुआ था, थिएटर को लेकर मेरे कुछ एम्बिशंस थे।
0: जी।
1: मैं मुंबई में जाके स्टार बनूंगा ऐसा मेरा कोई आदर्श नहीं था। मैं उसको बुरा नहीं कहता, लेकिन मेरा आदर्श नहीं था वो,
0: बस एक कलाकार, एक आर्टिस्ट।
1: बिल्कुल, वो मेरा एक एक्सटेंशन था। मैं जो कर रहा था उसी का एक एक्सटेंशन है कि मैं एक मीडियम में काम कर रहा हूं, अब मैं दो मीडियम में करूंगा, तीन मीडियम में करूंगा। तो जब टेलीविजन में आया तो वो टेलीविजन का मैं कहूंगा बहुत अच्छा दौर था।
0: अच्छा।
1: आप सोचिए कि उस लेट 90s में मैंने उस समय टेलीविजन में अनुराग बासु के साथ काम किया, मैंने श्रीराम राघवन के साथ काम किया, ठीक है, उसी दौर में कश्यप भी टेलीविजन में कर रहा था, इम्तियाज अली भी टेलीविजन में थे, रवि राय भी टेलीविजन में थे। तो एक बहुत बढ़िया दौर था, अच्छी राइटिंग का, अच्छे डायरेक्शन का, अच्छे कैरेक्टर्स का, टेलीविजन का। तो मैं बड़ा खुश था टेलीविजन से। डेली सोप नहीं बन रहे थे, वीकली सोप बन रहे थे, टेली फिल्म्स बन रही थी। मैं जो आगे चल के जो फिल्म डायरेक्टर्स बने वही सब टेलीविजन में थे, आगे चल के जो फिल्म में अच्छे सिनेमाटोग्राफर बने वो सब टेलीविजन में थे। तो हम लोग कैरेक्टर बिल्ड करते थे टेलीविजन में। और सोचिए, मैं जब टेलीविजन में काम कर रहा था, महीने के महीने कमा रहा था, तो एक तरह से आप सिक्योर भी हो गए, है ना। तो बहुत अच्छा था मेरे लिए, तो बहुत बढ़िया दौर था। फिर सिनेमा बना, और सिनेमा जिस तरह के सिनेमा से मैं आया, वो सिनेमा उस दौर के लिए अटपटा था, क्योंकि वो दौर जो था ना, एक तरफ तो एक्शन का दौर था, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, ये लोग एक्शन के मास्टर्स थे।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: दूसरी तरफ रोमांटिक फिल्म का दौर था, आमिर, शाहरुख और सलमान, ये लोग रोमांटिक फिल्म ही कर रहे थे।
0: बिल्कुल।
1: तो ये दो स्रोत चल रहा था। सीरियस सिनेमा उस समय ना के बराबर था।
0: बिल्कुल।
1: सीरियस सिनेमा का दौर मिड 80s में खत्म हो गया था। उसके बाद कोई सीरियस सिनेमा बन ही नहीं रहा था। अगर इक्का दुक्का बन भी रहा था तो वो कोई देखने के लिए कुछ नहीं था। तो इस समय या तो आप खिलाड़ियों का खिलाड़ी करेंगे, या ऐलान करेंगे, या परदेसी परदेसी उसमें जाएंगे
0: जी।
1: या आप कहीं नहीं, मुझे देखकर या मुझे जिस तरह से लोगों ने इंडस्ट्री की कुछ लोगों ने नापा तोला कि अरे ये यहां या वहां फिट नहीं होता है
0: जी।
1: ये मेरे लिए एक बात कहने लगे कि ये 80s का या 70s का अमोल पालेकर है, समझ रहे, वो जो चिच्चोर और छोटी सी बात और बातों बातों में और वो रजनीगंधा या सीरियस सिनेमा जो है उस तरह का, एक बॉय नेक्स्ट डोर, एक अच्छा सुशील पढ़ा लिखा लड़का जो ट्रेनिंग लेके आया है, तो उसको हम कहाँ फिट करेंगे।

0: लगा वो था। और सच बताऊं तो गलती मेरी भी ये थी कि मेरे अंदर वो एम्बिशन नहीं थी, वो ड्राइव नहीं था कि मैं अपने आप को प्रूव करूं कि मैं यहां बिलोंग करता हूं, तो मैंने भी नहीं किया
1: इस तरह के रोल में
0: जी जी जी जी मैंने वो कोशिश ही नहीं की।
1: पर एक आर्टिस्ट के तौर पे ये अच्छी बात भी है कि आप अलग अलग वेरिएशन लेकर आते हैं, अलग अलग किरदार गढ़ते हैं, किसी एक तरफ टाइपकास्ट नहीं हुए हैं।
0: वो बन गया, वो हो गया कि लोगों ने, जैसे मैंने कहा ना कि थिएटर से टेलीविजन हो गया, मैंने कोशिश नहीं की, वो हो गया। एंकरिंग होस्टिंग में बन गया, वो कर रहा था मैं उस समय, पैसे कमा रहा था, पता नहीं कहां से मैंने अपने आप के अंदर एक एंकर होस्ट पा लिया छोटे समय के लिए। फिर मैं उससे भी निकल गया क्योंकि उसमें ब्रांडिंग हो गई थी मेरे दिमाग में कि ये एंकर होस्टिंग कर रहा है, मैं उससे निकल गया। एक्टिंग में क्या था कि चूंकि मैं टीवी में वैरायटीज रोल कर रहा था और सिनेमा में वैरायटीज नहीं होते थे उन दिनों ना, स्टॉक कैरेक्टर्स होते थे, हीरो का फादर, हीरो की मदर, हीरोइन की फ्रेंड, कॉमेडियन, विलेन मतलब एक ही तरह का विलेन, कॉमेडियन मतलब वो आते ही लोग हंसेंगे। आप समझ रहे हो, वो किरदार जो कैरेक्टराइजेशन कहते हैं वो नहीं था। वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगा लगान के बाद, दिल चाहता है के बाद, सत्या के बाद थोड़ा बदलने लगा। उसको आने में फिर भी 3-4 साल थे जब मैं आया भद्दा चौरसी की माँ के 1999 में, तब यही चल रहा था दौर। फिर टेलीविजन बदल गया, डेली सोप आ गया, सास बहू हो गया, मैंने टेलीविजन भी छोड़ दिया, मैंने टेलीविजन छोड़ दिया, मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता, ना मैं उसमें फिट होता हूँ, ना मैं कर सकता हूँ, और ना मेरा जो वैल्यूज है, प्रिंसिपल्स है, उसके साथ जाता है। तो भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, तो मैंने थिएटर एक्टिविटी और बढ़ा दी, मैं ग्लोबली थिएटर करने लगा
1: जी।
0: मैं जो नाटक कर रहा था वो बाहर ट्रैवल करने लगा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया में जगह जगह मैं ट्रैवल करने लगा। बीबीसी में से रेडियो प्लेस का मेरा दौर शुरू हुआ और यहाँ कुछ बंगाली फिल्मों से मुझे बुलावा आने लगा। तो यहाँ हिंदी फिल्में, कुछ सीरियस फिल्में चल रही थी, वहाँ बंगाली फिल्म से जो साहित्य बेस्ड फिल्में थी, लिटरेचर बेस्ड, फिर कुछ फिल्म मेकर्स थे जो ढूंढ रहे थे कि कुछ एक ऑल्टरनेटिव पर्सनैलिटी मिले, जो इस तरह के कैरेक्टर्स जो हों साहित्य में हैं, जो पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, थिंकिंग, वो पोर्ट्रे करे, तो मुझे बुलावा आया, तो मैं गया क्योंकि बंगाली फिल्म से मैं काम करने का मेरा शौक पुराना था। वही फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ और मुझे अच्छी फिल्में मिलने लगी, तो वो मैं करने लगा। तो अब बंगाली फिल्म, हिंदी फिल्म, बीबीसी रेडियो, खूब सारा थिएटर और एड फिल्म्स मिलने लगे, तो वो करने लगा। तो कमाई मेरी पहले से कम हो गई क्योंकि मैं टीवी छोड़ दिया, लेकिन उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैं नुक्कड़ नाटक से आया था। मैं जानता था कि आप किसी भी परिस्थिति में आप जो कर रहे हो और कह रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप कितना कमा रहे हो। तो इस परिस्थिति से मैं जूझना मेरे लिए बड़ा आसान था क्योंकि मैं क्रिएटिवली सेटिस्फाइड था, पहली बात तो ये, एज एन आर्टिस्ट मैं सेटिस्फाइड था और जितना मिल रहा था बहुतों से ज्यादा था,
1: बिल्कुल,
0: तो मुझे कोई शिकायत नहीं थी।
1: और अभी ओटीटी आ गया है, उसमें तो वैसे भी जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत जगह है, बहुत किरदारों की जगह है, जो कहीं फिल्मों में लिमिटेड था।
0: बिल्कुल नहीं, नहीं, ओटीटी में एक अच्छी बात ये हुई कि ओटीटी में ना बहुत कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं
1: जी,
0: और एक कैरेक्टर को अगर 3 सीन भी मिलता है ना, वो 3 बहुत कमाल के सीन्स लिखे जाते हैं, वो ऐसे नहीं होते कि उनको आए और चले गए, वो सीन का कोई मायने होता है। तो भले वो 8 एपिसोड का कोई सीरीज है ओटीटी में, उसमें एक एपिसोड में वो आ रहा है, जैसे मैंने किया है आर्या सीजन 1 में, मैंने एक एपिसोड में काम किया सुष्मिता के साथ, लेकिन वो किरदार एक डेफिनेट किरदार था जो उस एपिसोड में आता है और उस एपिसोड को इम्पैक्ट करता है और चला जाता है
1: जी।
0: तो उसको बिल्ड करने में मजा आया, उसकी वर्कशॉपिंग हुई, मैंने सुष्मिता सेन के साथ 2 दिन वर्कशॉपिंग की एक रिश्ता बनाने के लिए, उस पर काम किया, उसकी आवाज पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे, उस स्वभाव पे, ये सब कुछ ओटीटी में एक क्राफ्ट को लेके जो एक सीरियसनेस आ गया था, अभी कितने दिन बरकरार रहेगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये एक सीरियसनेस ये आ गया था ओटीटी में जो मुझे अच्छा लगा। ये मेरे थिएटर के प्रशिक्षण के साथ बहुत अच्छा जुड़ता है, जहां आपको स्क्रिप्ट पहले मिलता है, जहां आपको बैकग्राउंड पहले दिया जाता है, जहां आपका रिसर्च होता है, जहां वर्कशॉपिंग होती है, फिर प्रिपेयर्ड होकर आप सेट पे जाते हैं।
1: बिल्कुल, यहां सुनते आपकी पसंद का एक और गाना
0: जी। मेरे पसंद के गाने, अब हम अमिताभ बच्चन के दौर में आ जाते हैं, बारिश का मौसम है, तो रिमझिम गिरे सावन जो है वो मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, वो आप सुना दीजिए, लोग भुट्टा खाते हुए सुनते हैं उसको।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: आते हैं डबिंग इंडस्ट्री की तरफ.
1: जी
0: तो कैप्टन अमेरिका की बात ना की जाए तो ये इंटरव्यू पूरा नहीं होगा, क्योंकि
1: जी
0: वॉइसिंग में आपने ऐसे तो बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज की डबिंग की है,
1: जी
0: लेकिन साथ साथ ये कुछ किरदार हैं
1: जी
0: जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं,
1: जी
0: पसंद किए गए हैं.
1: जी जी
0: तो इससे कैसे जुड़ना हुआ और इसकी चुनौतियाँ अपने लिहाज से कैसी है?
1: देखिए, मैं दिल्ली में ना, जब मैं थिएटर की पोजीशन ले रहा था तो कमाने के लिए मैं वॉइसिंग करता था.
0: जी
1: मैं बड़े इंटरेस्टिंग वॉइसिंग करता था. मैं मलयालम सीरीज जो होते थे टीवी के लिए, दूरदर्शन, उसको हिंदी में डब करता था. पपेट फिल्म्स में वॉइसिंग देता था, पपेट्स की वॉइसिंग. हाँ, तोते की वॉइस, सियार का वॉइस, ये सब मैं करता था वहाँ पे. कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह की भी बैकग्राउंड वॉइसिंग करता था, तो
0: जी
1: बड़ा मज़ा आता था. मुंबई में आया तो थोड़ी ऐड की वॉइसिंग की, लेकिन पूरी तरह से नहीं, उतना ही हुआ. फिर छूट गया क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हो गया. बाद में 2010 के आसपास फिर से मुझे वॉइसिंग के लिए, पता नहीं, साउंड एंड विजन से बुलावा आया कि आप करना चाहेंगे. मैंने कहा ठीक है, तो मैंने करना शुरू किया. और हॉलीवुड फिल्मों में मुझे वॉइसिंग का मौका मिलने लगा. कुछ बड़ी बड़ी फिल्में मैंने हॉलीवुड की 2012, 18, बी मूवी करके की. और फिर वॉर्नर ब्रदर्स से फिर टेस्टिंग का वो आया. जब ये सारी कुछ हॉलीवुड की बड़ी फिल्में करने के बाद टेस्टिंग का मौका आया. और पता नहीं कैप्टन अमेरिका के लिए मुझे क्यों चुना गया, आई डोंट नो दैट, क्योंकि उसकी जो आवाज़ है
0: जी
1: उसका टेक्सचर मेरे से थोड़ा अलग है.
0: अच्छा
1: लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक लीडरशिप का सवाल था कि आवाज़ में एक लीडरशिप आनी चाहिए
0: जी
1: और संवेदनशीलता भी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर. क्योंकि स्टीव रॉजर्स जो है बड़ा संवेदनशील लीडर था.
0: जी
1: वो बड़ा ही रूखा लीडर नहीं था कि ऐसे करो वैसे करो, ऐसा नहीं था वो, कि वो अपनी बात को बड़े सहज तरीके से रखता था. तो वो लाने की बात थी. तो उन्होंने मुझे चुना, तो फिर मैंने कहा करते हैं. फिर 11 साल तक वो करता रहा. मैं वो एवेंजर्स में भी और कैप्टन अमेरिका की सीरीज में भी वो चलता रहा फिर.
0: बिल्कुल, जो लोग काफी पसंद कर रहे हैं.
1: जी जी
0: बिल्कुल. तो अभी थिएटर, टेलीविजन, फिल्म्स, वॉइस इंडस्ट्री, डबिंग
1: जी
0: इंडस्ट्री,
1: जी
0: अब और क्या आगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं?
1: वर्टिकल्स हो रहे बहुत,
0: अच्छा
1: ठीक है,
0: अच्छा
1: तो वो भी अभी करने को मौका मिल गया है.
0: जी
1: वो वर्टिकल्स जो है वो

0: स्टूडियो में आने का।
1: ये थी अभिनेता जॉय सेन गुप्ता से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम को लेकर मैं हूं आज आपके साथ आपकी साथी नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करते हैं अर्थ इस फिल्म के गीत के साथ जिसे गाया है जगजीत सिंह ने, कैफी आजमी की रचना है और कुलदीप सिंह का संगीत।

0: I Love Falguni. इस एल्बम का गीत आपने सुना फाल्गुनी पाठक की आवाज में. महबूब की रचना थी, ललित का संगीत.
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है.
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती.
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने. उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया.
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक.
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी. तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है.
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे.
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है.
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
0: आइए अब आपको सुनवाते हैं कैलाश खैर की आवाज में उन्हीं का लिखा और उन्हीं का संगीत बद्ध किया ये गीत. संगीत निर्देशन में साथ दिया है परेश और नरेश ने. लीजिए सुनिए ये गीत.

आइए अब आपको सुनवाते हैं लकी अली का गाया गीत, जिसका संगीत बनाया है लकी अली ने। असलम ने इसे लिखा है और एल्बम का नाम है सुनो।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: जय वालिया का गाया और लिखा गीत सुनिए, ललित का संगीत है, एल्बम का नाम आंखों में तेरा ही चेहरा।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने क्यों ना
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं फाल्गुनी पाठक का गाया ये गीत। एल्बम का नाम है मेरी चुनर उड़ उड़ जाए। गीत संगीत ललित सेन का।

मिलिन इंगले का संगीतबद्ध किया ये गीत आपको सुनवाएंगे, आवाज भी मिलिन इंगले की। एल्बम का नाम है ये है प्रेम और शब्द रचना श्याम अनुरागी की।

0: प्यारे
1: आमंत्रित कलाकार हैं
2: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं
2: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर
3: अब के सावन इस एल्बम से सुनिए गीत शुभा मुद्गल की आवाज में प्रसून जोशी ने इसे लिखा है शांतनु मोइत्रा का संगीत

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया युवाओं को जोड़ने का अभियान है। उन्होंने कहा कि सरकार स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अंतर्गत मेरा युवा भारत ने आयोजित किया। देश भर में इस कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के दो दो कॉलेजों के युवाओं ने भाग लिया। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हिंदी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। भारत ने कल नेपाल के लोगों की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी थी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 77,273 पर और निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 24,100

0: 58 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। स्वीकार कीजिए नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, हिंदी सिनेमा को सादगी, संवेदनशीलता और रिश्तों की खूबसूरत कहानियां देने वाले फिल्मकार थे ऋषिकेश मुखर्जी। निर्देशक, लेखक और संपादक के रूप में उन्होंने ऐसी फिल्में रची जो आज भी दिल के बेहद करीब हैं। उनकी फिल्मों के गीत भी उतने ही मधुर और यादगार रहे। आज उनकी पुण्यतिथि पर सुनते हैं उनकी फिल्मों से जुड़े कुछ सदाबहार नगमे। गोलमाल फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

ये गीत था फिल्म चुपके चुपके से, आवाज लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी ने इसे रचा और सचिन देव बर्मन का संगीत। और आइए अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं फिल्म अनाड़ी से, लता मंगेशकर की आवाज में, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: प्यारे।
1: आमंत्रित कलाकार हैं
2: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
3: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
2: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
1: सुबह और शाम
2: 6:45 पर
1: सिर्फ विविध भारती पर।
4: आशीर्वाद फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं जिसे लिखा है गुलजार ने वसंत देसाई का संगीत।

0: मंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं अभिमान फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है और तर्ज बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

खूबसूरत इस फिल्म का गीत अब आपको सुना रहे हैं आशा भोसले और अशोक कुमार की आवाजों में। गुलजार की शब्द रचना है और धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

प्रतिष्ठा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी

आइए अब आपको सुनवाते हैं नमक हराम फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी की रचना है और संगीत है राहुल देव बर्मन का। साथियों, आज हम आपको सुनवा रहे थे ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों की कुछ गीत। उनकी फिल्मों की तरह उनके गीत भी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों और भावनाओं को खूबसूरती से बयां करते हैं। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

कार्यक्रम सुरीला सफर सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। संगीत के इस सुरीले सफर में आप है हमारे हम सफर। तो चलिए एक बार फिर से आपको बता दें कि क्या है आज की इबारत। प्यार मोहब्बत के इशारों को आवारा बादल पागल सौदाई को दुनिया में कौन समझा है। एक लड़की गाती है गुनगुन कि तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है। जिसे देखकर परवाने होते हैं कुर्बान, वो आ तो गई पर बड़ी छोटी है मुलाकात। और ये बेईमान भौरा देखो कैसे मुस्काए और रोज डाली पर क्या लिख जाए कि प्यार अभी ना हुआ तो कभी नहीं। कोई लड़की रात सपने में मिली थी कि इश्क में बर्बादी का सोग मनाना फिजूल है। तो प्यार की ठंडी आग में जलते बुझते कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। सुरीला सफर के हमारे बहुत सारे साथी हम सफर बहुत सारे संदेश मैसेज कमेंट्स पहले ही लिख चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं कुछ संदेश कुछ संदेश।

शाम ढलते ही तन्हाई के साए में कोई पुरानी धुन दिल को महका जाती है, जैसे दूर किसी वादिय पुरनूर से पायल की झनकार आ रही हो। जब तक दिलदार का दीदार ना हो, ये रंगीन शाम भी अधूरी सी लगती है। और चाहत के इस सफर में हम आहट पर यही गुमान, मतलब हर आहट पर यही गुमान होता है कि वो आ रही है। इस उम्मीद पर परवाने भी लौ पर अपनी जान निसार कर देते हैं। मुलाकात का पल चाहे कितना भी मुख्तसर हो, उसकी यादें उम्र भर का सरमाया बन जाती हैं। उस नादान की अदाओं पर फिदा होकर ये दिल बार बार बहक जाता है और इकरारे मोहब्बत का ये सिलसिला कभी थमने का नाम नहीं लेता। तो आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ में कार्यक्रम की, जिसमें आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की। फिल्म का नाम है मधुमती और आप हमें बता दीजिए कि इस गीत के गीतकार और संगीतकार कौन है।

जवाब तो हमें मिल गया है कि इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत था सलील चौधरी का। आवाज की दुनिया के हमारे दोस्त आज हमारी ही तरह इबारत लिखकर भेज रहे हैं, यानी कि क्या बात है भाई। गीतों का ये सुरीला सफर शायराना आशिकाना होता जा रहा है, यानी कि तुम भी चलो हम भी चले और चलती रहे जिंदगी। वैसे ये गीत आज की लिस्ट में नहीं है दोस्तों। अपने विचार, अपनी बातें, अपने पैगाम, अपने संदेश, अपने कमेंट्स आपने भेज दिए हैं जो हम तक पहुंच गए हैं और लगातार आप भेज रहे हैं, तो इन सारी बातों को, संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में आगे बढ़ते जाएंगे। एक मैसेज मिला है कि देखा जाए तो इजहार से शुरू हुआ प्यार का सफर इंतजार की गलियों से गुजरता है, विरह के आंसू से धुलकर ये और गहरा हो जाता है और अंत में मिलन के आनंद से आनंद में डूबकर अमर हो जाता है। यही मोहब्बत का मुकम्मल चक्र है। जुबान से तो कह ना पाए कभी हम, मगर आज आंखों से सब बयां कर बैठे हैं। तुम आओगे कभी ये सोचकर ऐ सनम, सांसें भी सीने में कुछ ठहर सी गई हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई। अगला कमेंट है कि यादें भी कितने खूबसूरत होती हैं, बीते हुए लम्हों को फिर से जीने का बहाना देती हैं। कुछ लोग दूर होकर भी दिल के पास रहते हैं, उनकी यादें हर खामोश शाम को खास बना देती हैं। शुरुआत में प्यार मोहब्बत में गुमसुम से एहसास के साथ एक झिझक सी रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि प्यार का इजहार नकार दिया जाए, लेकिन आवारा बादल सा दिल बेखबर और नादान भौरे की तरह गली गली मंडराते हुए किसी तरह पागल सौदाई की तरह इजहार कर बैठता है और पुकार बैठता है प्यार को। फिर शुरुआत होती है मुलाकातों की, जहां छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती हैं।

दोस्तों सुरीला सफर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और फिल्म में जो होती हैं उसमें डबल रोल ही नहीं जीवन में भी दो मुंह वाले दो चेहरे वाले लोग भी होते हैं तो इस बारे में भी अपने विचार भेज दीजिए। आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में साहिर का लिखा गीत। फिल्म का नाम है हम दोनों और इस गीत के संगीतकार का नाम बताइए और अभिनेता तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं वो भी बता दीजिए ज़रा।

पहला है कि आज आपका पहला सफर है, पर घबराए ना, हम सब आपके साथ हैं और थोड़ा बहुत कुछ है भी तो हम श्रोता भी समझते हैं कि आज आपका पहला दिन है।

एक श्रोता मित्र हमें लिखती हैं कि आज तो हमारे भाई के घर रक्षाबंधन मनाने जा रही हूँ, तो कार्यक्रम में शामिल होना थोड़ा मुश्किल है, मगर इबारत से लगता है कि आज तो बहुत सुरेले और दिलकश गीत सुनने को मिलेंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

साथियों, सुरीला सफर का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार है शकील बदायूनी, संगीतकार है नौशाद, फिल्म का नाम है राम और शाम। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ जो दो नायिकाएं थी उनके नाम बता दीजिए, लिख भेजिए हमारे फेसबुक पेज पर।

हम दोनों इस फिल्म के गीत के संगीतकार थे जयदेव, और देवानंद सेना में ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे, ऐसा भी जवाब हमें मिल गया। दोस्तों आप हमें लगातार जवाब और मैसेज तो भेज रहे हैं और हमसे जुड़ते भी जा रहे हैं, तो अब तक तो आपको ये पता चल गया होगा कि आज के कार्यक्रम में ली गई फिल्मों में एक बात कॉमन है, और वो क्या बात है जरा बता दीजिए।

सीता और गीता इस फिल्म का गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत है राहुल देव बर्मन का। और ऐसी ही एक और फिल्म थी जिसकी नायिका श्रीदेवी थी, तो उस फिल्म का नाम लिख

एक श्रोता ने लिखा है कि उस फिल्म का नाम जिसमें श्रीदेवी थी उसका नाम है चालबाज। सीता और गीता की रीमेक थी वो फिल्म। एक चेहरा मगर दो किरदार, एक शक्ल मगर दो अंदाज, एक रिश्ता मगर दो अलग अलग रंग। प्रोग्राम इस तरह का है। अच्छा,

यानी कि आज के कार्यक्रम में ली गई फिल्मों में जो बात कॉमन है वो क्या है वो तो आपने बता दी। तो आइए अब सुनते हैं ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं अनजान, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है डॉन और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का नाम क्या है, नाम क्या है वो बता दे हमें। और हमें आपसे ये भी पूछना है, एक गीत जो हमने आपको बताया वो आपने अभी तक हमें नहीं बताया कि नदी बहती है झरझर, हवा कहती है सरसर, बात फैली है घर घर घर, गोरिया गाए गुनगुन। ये गीत अभी तक आपने हमें नहीं बताया कि ये किस गीत का अंतरा है।

कार्यक्रम सुरीला सफर। एक साथी मित्र ने हमें लिखा है कि हम अभी राखी की तैयारी में लगे हैं और समय निकालकर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं क्योंकि कल नहीं सुन पाएंगे, कल हम बाहर जाने वाले हैं। और ये अगला संदेशा है कि जिस फिल्म में डबल रोल होता है वहाँ एक पात्र सीधा और दूसरा जरूरत से ज्यादा चालाक क्यों होता है, सोचने वाली बात है। एक साथी ने लिखा है कि अक्सर मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ कि कभी तुम भी तो कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया, तो मैं तो हमेशा इजहार करता ही हूँ, हाय रे किस्मत शादी को इतने साल हो गए, पर धर्मपत्नी सिर्फ शर्माती हुई दीवाना कह देती है मुझे और गुनगुना देती है कि बालम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते बुझते मैं तो हार गई रे। एक मैसेज शिकायत वाला भी मिला है पर प्यार भरा है। पटर पटर बोलती हो बहुत, ऐसा मेरे लिए लिखा है। दोस्तों, अगर आप ये समझ ही गए हैं कि आज के सुरीला सफर में हमने ऐसी फिल्मों के गीतों को चुना है जिसमें नायक और नायिकाएं डबल रोल में थे, तो इसके अलावा भी और कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिसमें डबल ट्रिपल रोल किए गए थे, तो आपको याद हो तो उन फिल्मों के नाम लिखकर संदेश हमें भेज दीजिए।

साथियों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। सुन क्या रहे हैं आप, तो हमारे हम सफर हैं। ये एक जो मैसेज मिला है हमें, कमेंट्स मिला है कि नदियां बहती है झरझर, ये अंतरा है छुनमुन पायल या छुनमुन छुनमुन फिल्म विरासत के गीत का। और विजय अमी जी के अक्सर फिल्मों में उनका यही नाम होता था, और उन्होंने लिखा है कि ये फिल्म जो थी डॉन, उन्होंने झांसी की नंदनी टॉकीज में देखी थी। एक श्रोता मित्र लिखते हैं कि मुझे फिल्म मौसम की याद आ रही है, जिसमें शर्मिला टैगोर जी ने डबल भूमिका निभाई थी और नायिका और उनकी बेटी के बेटे के रूप में संजीव कुमार अभिनेता थे। और धर्मेंद्र जी ने डबल रोल किया था यकीन इस फिल्म में। तो अब अगला गीत सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति और अमित कुमार साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का, फिल्म का नाम है चालबाज। और इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ जो दो हीरो थे उनके नाम हमें लिख भेजिए। श्रीदेवी के डबल रोल के नाम भी आप बता सकते हैं।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि चालबाज फिल्म में श्रीदेवी के साथ हीरो थे रजनीकांत और सनी देओल, और किसी ने अनिल कपूर भी लिखा है जो कि गलत है। और ये अगला कमेंट

है कि मेरा साया में साधना का डबल रोल था और कहो ना प्यार है मैं ऋत्विक रोशन भी डबल रोल में थे। एक श्रोता लिखते हैं कि दो फूल और दिल तेरा दीवाना तथा हमजोली में महमूद जिगरी दोस्त जैसे को तैसा तथा प्यासा सावन जितेंद्र किशोर कुमार बॉम्बे का चोर अशोक कुमार मेरी सूरत तेरी आंखें और शाहरुख खान डॉन तथा पहेली में डबल रोल में थे। तो साथियों अब जो अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसमें ये बता दीजिए कि काजोल के साथ में इस फिल्म में विलन कौन थे।

मंगेशकर और कुमार सानू गीतकार थे, आनंद बख्शी संगीतकार थे, उत्तम सिंह, फिल्म का नाम था दुश्मन। और एक श्रोता मित्र ने जवाब लिखकर भेजा है कि काजोल के साथ में दुश्मन फिल्म में जो विलन की भूमिका निभाई थी वो आशुतोष राणा थे। बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं कि जैसे को तैसा, जिगरी दोस्त, बैराग, संजीव कुमार की नौ रोल वाली फिल्म महान में अमिताभ बच्चन का ट्रिपल रोल था, आंटी नंबर वन, चाची 420 और अंगूर, इज्जत में धर्मेंद्र का डबल रोल, दो कलियां में नीतू सिंह, सावन भादों में नवीन निश्चल, कस्मे वादे में अमिताभ बच्चन और गजब में धर्मेंद्र। तो भाई आपके जो कमेंट्स थे उसमें तो हमें एक बहुत लंबी लिस्ट मिल गई कि डबल रोल वाली फिल्में कौन सी थी।

डैनी का डबल रोल था फिल्म बुलंदी में और डबल रोल प्यार के इजहार पर आज आपने सुरीला सफर में शानदार कार्यक्रम पेश किया, ऐसा एक मैसेज भी हमें हमारे श्रोता से मिला है। एक कार्यक्रम में एक मैसेज और पढ़ लेते हैं कि ये जीवन ठहरने का नाम नहीं चलने का नाम है और प्यार मोहब्बत से जिंदगी चलती है, इससे सुंदर क्या हो सकता है। हम इस संसार में अपने आप अपने अपने हिस्से की यात्रा लेकर आते हैं, बादल आसमां और कलकल करती बहती नदी यादों का समंदर लेकर आती है। आज सुरीले सफर कार्यक्रम में जो गीतों की नदियां आपने बहाई, हमें वो सुनकर बहुत अच्छा लगा। कल भी हम इस कार्यक्रम को सुनेंगे और आज की प्यारी उद्घोषिका के साथ हमने कार्यक्रम सुना, हमें बहुत अच्छा लगा। तो एक श्रोता मित्र ने हमें ये मैसेज भेजा।

साथियों, सुरीला सफर के हमसफर बनकर आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी हमारे साथ तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेल सिर्फ पदक जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं और खेल प्रतिभाओं को जोड़ने का माध्यम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के हर जिले में खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की क्षमता है। उन्होंने 5 से 15 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की बात भी कही। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर प्रवास के दौरान डुमना एयरपोर्ट

0: से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहभागिता की। वहीं कटनी जिले में आयोजित कार्यक्रम में सांसद वीडी शर्मा ने इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया,
1: रोशन किया है रोशन खेलो इंडिया का संवाद के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री वर्चुअली आज सम्मिलित हुए हैं। सभी खिलाड़ियों को देश के खेलो इंडिया का अभियान और ये नए नौजवान बच्चों का टैलेंट का सच और 2036 में होने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऐसे खेल जिनमें भारत प्रतिनिधित्व नहीं करता उनमें खिलाड़ी हमारे डेवलप हों। हमने आज कटनी के अंदर हमारे उन खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया है जिन्होंने प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले टी सीरीज टैंक ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। ये कार्यक्रम व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में आयोजित किया गया जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और इस प्रोजेक्ट से जबलपुर की रक्षा क्षेत्र में भूमिका भी मजबूत होगी तथा महाकौशल क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
2: ये अपने आप में भारत की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल कॉन्शियसनेस, हमारी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी और डिफेंस सेक्टर में हमारे बढ़ते कॉन्फिडेंस की एक यह नई विशाल है। यह प्रोजेक्ट हमारे उन सैनिकों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी जो इन टैंक के सहारे दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि यह प्रोजेक्ट जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय लोग, हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे नौजवान, हमारे छोटे उद्यमी के जीवन में भी समृद्धि और रोजगार के नए दरवाजे भी खोलने वाला है।
0: ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम में पंचायतन मंदिर के निर्माण के लिए आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भूमि और शिला पूजन किया। मुख्यमंत्री ने सपत्नीक विधि विधान से मंदिर निर्माण की नींव रखी। इस पूजन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से विद्वान भी ओंकारेश्वर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगस से पहले ओंकारेश्वर में मंदिर के साथ कई विकास कार्य और घाटों का निर्माण पूरा किया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के स्नेह और अटूट विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह पर्व भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा और पारिवारिक समरसता का संदेश देता है। राज्यपाल ने लोगों से सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 29 अगस्त को बालाघाट जिले में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान में शामिल होंगे। रक्षाबंधन के अवकाश के कारण इस बार प्रदेश भर में शनिवार को यह अभियान आयोजित किया जाएगा। बालाघाट में मुख्यमंत्री जिला स्तरीय समाधान ऑनलाइन में चिन्हित शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे। इसके बाद बैठक और समीक्षा के अलावा मीडिया संवाद और उद्योग संवाद भी आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही आश्रमों, छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों और युवाओं से भी संवाद होगा। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और पूर्वी तथा उत्तरी हिस्से के 17 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार सागर, रीवा और शहडोल संभाग में अगले 24 घंटे के दौरान 2.5 से 4 इंच तक बारिश होने की संभावना है। वहीं कल प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दतिया जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने दतिया जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। शिवपुरी जिले की तहसील बदरवास स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में 4 सितंबर को एक दिवसीय श्री कृष्ण पर्व का आयोजन भव्य रूप से किया जाएगा और कटनी के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी एवं युवा शामिल हुए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: runs in second innings of the second and final test.
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत 300 भारतीय समेत सहित 1000 से ज्यादा लोग लापता भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत की कोई निश्चित

0: समय सीमा नहीं। और कोलंबो में दूसरे तथा अंतिम टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 151 रन की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी।
1: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
0: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है।
2: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना साबित करने का समान मंच मिले।
0: ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया था। देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के 2-2 कॉलेजों के युवाओं ने इसमें भाग लिया। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गुजरात में गांधीनगर के पालज स्थित IIT में आयोजित खेलो इंडिया संवाद से अलग मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल खेल अकादमियों की स्थापना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत को अपनी खेल परंपराओं को एक जीवंत खेल संस्कृति में विकसित करना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली के हिंदू कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद में हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक मजबूत खेल तंत्र विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
3: इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल्स बढ़ रहे हैं। पहले तो हम एक मुश्किल से 2 मेडल मिलते थे, अब तो हम हर कंपटीशन, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, अब तो मल्टीपल मेडल्स जीतते हैं इंडियन प्लेयर्स। ये तो बहुत फक्र की बात है।
0: कश्मीर के सभी 10 जिलों के हजारों छात्रों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल माध्यम से आयोजित खेलो इंडिया संवाद में भाग लिया। प्रतिभागियों ने युवा पीढ़ी को खेल अपनाने और खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित

0: वर्धित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। चंडीगढ़ के 51 शिक्षण संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों और राष्ट्रीय खेल सेवा स्वयं सेवकों ने आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पठानकोट स्थित आर्य महिला महाविद्यालय की छात्रा शिव्या ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश हमेशा युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित रूप से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद के सर्किट हाउस एनेक्सी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी का कारण भूकंप के झटकों से ग्लेशियर फट जाने को माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है +9779851316807 और +9779701075000। विश्व बैंक ने भी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। इसके अलावा नेपाल में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी है। डॉ जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव और काठमांडू और पेचिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पर्यटन संचालकों और परियोजना अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राहत सहायता प्रदान करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कहा है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 20 टीम तैनात की गई है, जिनमें से 9 बिहार में और 11 उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बल की एक टीम तैनात की गई है।
2: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक

0: हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
1: इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार और रविवार को ओडिशा के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी न करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि डीए अभी तक जारी नहीं होने के कारण 3 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है। उन्होंने ईरान की आर्थिक मुश्किलों का भी उल्लेख किया। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी आज ईरान पहुंचेंगे। वे ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। श्रीलंका ने चायकाल तक दूसरी पारी में 155 रन की बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को उनकी पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट करके फॉलो ऑन दिया है। दो मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 143 अंक गिरकर 77,330 जबकि निफ्टी 36 अंक की गिरावट के साथ 24,171 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1,000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए NDRF की टीमें तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और कोलंबो में दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 155 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का पहला गीत है मुकेश की आवाज में, गीतकार है शैलेंद्र, संगीतकार है शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है अनाड़ी।

होली आई रे। इस फिल्म का गीत सुनिए मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज में। गीत रचना है आनंद बख्शी की, संगीत रचना है दान सिंह के, फिल्म का नाम है माई लव।

आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है तीसरा कौन।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आप सुनेंगे मुकेश और वैजयंती माला की आवाजों में। गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है संगम।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार,
0: हेल्दी नमस्कार।
1: तो ठीक है, आपका नमस्कार है तो साथ में मेरा भी, यानी कि आरती श्रीवास्तव का भी, सभी सखियों को, सभी सखाओं को और दीपा जी को नमस्कार।
0: आरती, तुम्हें भी हमारा नमस्कार।
1: बिल्कुल,
0: और आप सब, हम सब सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें, ताकि आगे का जीवन हर दिन खुशियों से बीते, है ना।
1: बिल्कुल,
0: यही चाहत होती है। एक चीज हमारे सभी श्रोताओं और सखियों से पूछना चाहते हैं, हम हमेशा कहते हैं हेल्दी नमस्कार, तो बताइए अपने हेल्थ का, अपनी तबीयत का कौन कौन खूब अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिए हैं या करते हैं, या कोई थोड़ा सा एक पॉजिटिव अगर बदलाव आया है तो वो भी जरूर बताइएगा।
1: बिल्कुल, और साथ ही हम जो विषय लेके आए उसके बारे में बता देते हैं। आज हम बात करेंगे, आज जो है विश्व झील दिवस है,
0: यानी कि वर्ल्ड लेक डे। हाँ जी,
1: तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और हम चाहेंगे हमारे जो श्रोता हैं वो भी अपने सारे विचार हमारे साथ में साझा करें। और साथ ही हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंतर्गत सिंधु ताई सपकाल की।
0: हाँ,
1: बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व है जिनका।
0: बिल्कुल, इतनी ज्यादा उन्होंने परेशानियों को झेला है और बहुत कठिनाइयों से और कष्ट भरा जीवन उनका रहा है, तो एक बहुत अच्छी उनकी प्रेरणादायक कहानी, ताकि हम जो ये छोटी छोटी शिकायत करते हैं ना, तो कहीं उसको हम साइड में रखें कि छोटी छोटी सी बातों में हम नाराज हो जाते हैं या कभी चिढ़ भी जाते हैं, तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को भी सामना, उनका सामना करते हुए कैसे एक व्यक्ति, और उसमें भी विशेष तौर पर महिला जब आगे बढ़ती है तो सबका जो सर है ऊपर उठ जाता है।
1: बिल्कुल, और साथ ही हम बात करेंगे बढ़ती उम्र के साथ सुरक्षित भविष्य, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं।
0: जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आजकल जो हम देख रहे हैं कि बच्चे बाहर हैं, माता पिता वहाँ हैं जहाँ उन्होंने हमेशा नौकरी की है, या कोई उनका घर है गांव में या कोई होम टाउन है, वहीं रहना पसंद करते हैं। अब बच्चे तो चाहते हैं वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे मम्मी पापा आ जाएं। मम्मी पापा का ये कहना होता है कि नहीं, हमें तो बस भाई जहाँ रह रहे हैं वहीं अच्छा लग रहा है, आप लोग बस आते जाते रहिएगा।
1: क्योंकि ना होता भी है ना, जब जो बच्चे हैं वो अपने जो करियर है उसकी वजह से नहीं आना चाहते, और जो माता पिता वो इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि वो वहां पे हमेशा से रह रहे हैं, वहां पे उनका पूरा सब दोस्त है, सब जो जानने वाले लोग हैं, परिचित हैं, तो अपने अपने कारण है, इस वजह से वो अपनी अपनी जगह पे रहना चाहते हैं।
0: लेकिन ऐसे में कितना अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, कैसे सुरक्षित भी रहें और सतर्क भी रहें, थोड़ी बातचीत हम उस पे करेंगे।
1: बिल्कुल, हम चाहेंगे हमारे जो सखा हैं, जो सखियां हैं, वो भी अपने विचार हमारे साथ में साझा करें इस विषय के ऊपर।
0: बिल्कुल, क्या कोई ऐसे हैं हम में से, ये सखी सहेली परिवार में से, कि कोई अकेले रह रहे हैं या बच्चे उनके दूर हैं या वो नहीं जाना चाहते हैं या उनके बच्चे कहते हैं उनसे बार बार कि आप अब हमारे साथ ही रहिए, ऐसी कोई अगर घटना हो गई है या कोई अनुभव है उनका तो हमारे साथ अवश्य साझा करें।
1: बिल्कुल, और साथ ही हम बात करेंगे कुछ अच्छे अच्छे टिप्स की जो बारिश में सीलन की दुर्गंध को भगा सके, जो बहुत बड़ी समस्या आजकल।
0: ये बात तो है आरती, कपड़े आप कितने भी सुखा लो लेकिन वो एक अलग से गंध सी आने लग जाती है, और जो हम जहाँ पे रोज की चादर तकिए वगैरह के लिहाफ ये सब जो रखते हैं ना, उनमें से भी एक अजीब सी अलग सी गंध आने लग जाती है। तो हमें लगता है हम सब तो साफ सफाई से रखे हैं, नैपकिन्स वगैरह जो हम रखते हैं हमें लगता है धुल धुला के सब कुछ अच्छे से रखा हुआ है, फिर भी ये क्यों एक गंध आ रही है, तो इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे।
1: बिल्कुल, तो ये सारी बातें तो हम करेंगे लेकिन एक गीत सुनने के बाद।
0: चलो भैया, आरती ने कहा है पहले गीत सुनना चाहती है, तो चलिए सखियों की भी फरमाइश होगी जरूर।
1: जी,

0: भाई जब इतने सुरीली शुरुआत हो जाए ना आरती, तो एकदम लगता है एक घंटा हमारा तो बहुत ही सुरीला और सजीला सफर होगा।
1: बिल्कुल, और सुरीली बोलियां ही बोलनी चाहिए, क्योंकि कड़वी बोलियां बोलने से सिर्फ दुश्मनी होती है।
0: देखिए ऐसा नहीं है हमेशा की दुश्मनी होती। अब माँ बाप तो देखो माता पिता या अपने बड़े भाई बहन होते हैं ना,
1: कड़वाहट नहीं कहते उसे,
0: वो कड़वाहट नहीं कहते, लेकिन कभी कभी जब नहीं मानता ना छोटा, तो फिर उसको कड़वे बोल या कड़े शब्द बोलकर,
1: कड़े शब्द बोलने
0: है ना, बोलने पड़ते हैं जी। लेकिन हम यहाँ पे बात कड़े शब्दों की नहीं कर रहे, हम कड़ी कठिन परिस्थितियों में कैसे जिया जाता है वो जानते हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, सिंधुताई सपकाल की। तो देश ने हमारे समय समय पर ऐसी महान विभूतियों को जन्म दिया है आरती, जिन्होंने अपने संघर्ष और सेवा के से समाज को नई दिशा दी है ना। ऐसी एक महिला जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, नाम है उनका सिंधुताई सपकाल, जिन्हें प्यार और सम्मान से अनाथों की माई भी कहा जाता है। उनका जीवन संघर्ष, ममता, साहस और मानवता की अद्भुत कहानी है।
1: बिल्कुल, और हम उनकी बात करें तो उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पिंपरी मेघी गांव में, और उनका बचपन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बीता था। आर्थिक अभाव के कारण वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सकी, लेकिन परिस्थितियों ने उनके भीतर सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा को कभी भी समाप्त नहीं होने दिया। जीवन ने उन्हें कम उम्र में ही विवाह और पारिवारिक जो जिम्मेदारियां होती है उसके बंधन में उनको बांध दिया था
0: जी। और ये जो उनका वैवाहिक जीवन था ना, वो भी कोई सुखद नहीं था, कठिन परिस्थिति

0: और पारिवारिक संघर्षों के बीच जब वो गर्भवती हुई तब अत्यंत पीड़ा और अकेलेपन का वो सामना कर रही थी। उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया लेकिन इसके बाद उनके जीवन की कठिनाइयां और बढ़ गई थी।
1: जी
0: उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था। उस समय उनके पास न तो कोई रहने का ठिकाना था आरती, और न खाने के लिए पर्याप्त भोजन हुआ करता था, और न ही ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर वो भरोसा कर सके।
1: बिल्कुल, और आप खुद ही कल्पना करके देख सकते हैं कि एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर जीवन की कठिन राह पर अकेली निकल पड़े। कभी रेलवे स्टेशन पर उनका आसरा बना तो कभी मंदिर या किसी पेड़ की छांव पर। कई बार उन्हें भूखे रहना पड़ा, दूसरों के सामने हाथ फैलाने की स्थिति आई, लेकिन सिंधुताई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति बना लिया था।
0: जी हाँ, और यही संघर्ष आगे बढ़कर उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बना। जब
1: बिल्कुल
0: उन्होंने अपने जैसे बेसहारा और ऐसे बच्चे जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें देखा, तो उनके भीतर भी कि जो माँ की ममता होती है वो जाग उठी। उन्होंने सोचा कि जिस तरह उन्हें अपने जीवन में अकेलेपन और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, वैसे किसी बच्चों को इस तरह का सामना न करना पड़े। तो उन्होंने कभी उन्हें अकेला उन्हें ऐसा लगा कि कभी उन्हें अकेला छोड़ा जाना नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल
0: उन्होंने बेसहारा बच्चों को अपनाना शुरू किया और वे उनके लिए केवल आश्रय नहीं बनी बल्कि माँ बन गई।
1: बिल्कुल, और धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती गई। सिंधुताई ने अपने जीवन को उन बच्चों के नाम कर दिया जिन्हें समाज ने सहारे के बिना छोड़ दिया था। वो बच्चों को भोजन देती, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करती और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती थी। उनके लिए हर बच्चा उनका अपना बच्चा था।
0: और ये जो सफ़र था आरती, ये आसान नहीं था, क्योंकि पहले उन्होंने धन अर्जन किया, उसमें से कुछ उन्होंने बचाया, और फिर आगे चल के और कई जो समाज सेवी संगठन है उनसे भी उन्होंने मांगा कि मदद मांगी कि भाई मेरे साथ इतने सारे बच्चे हैं और मैं अकेली हूँ, तो मुझे ज़रूरत है धन की और अलग अलग सुविधाओं की। तो सब लोगों ने आगे बढ़ के उनका ये उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाया।
1: बिल्कुल
0: और उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि माँ होना केवल जन्म से नहीं बल्कि ममता और जिम्मेदारी निभाने से भी होता है।
1: बिल्कुल, और सिंधुताई सपकाल ने हजारों अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को माँ का प्यार दिया। वो बच्चों को शिक्षा दिलाने के साथ साथ उनके भविष्य को संवारने के लिए लगातार प्रयास करती रहीं। उनके आश्रम में पले बड़े अनेक बच्चे आगे बढ़कर आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और शिक्षक बने, और कुछ ने स्वयं समाज सेवा का रास्ता चुना। जैसे कि उनके साथ में अच्छा हुआ था, वैसे उन्होंने भी सोचा वो भी किसी के साथ में अच्छा करें।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने सेवा को कभी दया का विषय नहीं बनाया। वे बच्चों को कमजोर समझकर उन पर उपकार नहीं करती थी बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। और हमेशा उन्होंने कहा कि जीवन जीने का एक अवसर आप अपने लिए ढूंढिए।
1: बिल्कुल, उनके कार्यों को देश में विदेश में सम्मान मिला। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जिनमें पद्मश्री भी शामिल है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार उन बच्चों का प्यार था जो उन्हें माई कहकर पुकारते थे।
0: जी, और सिंधुताई सपकाल ने 4 जनवरी 2022 को इस संसार से सदा के लिए विदा ले ली। लेकिन उनकी ममता और सेवा की कहानी आज भी जीवित है।
1: बिल्कुल
0: उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन में साहस और दूसरे के लिए संवेदना हो तो एक व्यक्ति भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: और उन्होंने लाकर दिखाया वो
0: लाकर
1: परिवर्तन।
0: दिखाया। और देखिए, ये तो हम आज सिर्फ उनको याद कर रहे हैं, लेकिन जब असल में हुआ होगा तो कितना कठिन रहा होगा वो सारी परिस्थितियों को सामना करना।
1: बिल्कुल
0: बच्चे इतने सारे हैं, खाने के लिए भरपूर भोजन नहीं है, या कभी कभी हर रोज का दिन चलाने के लिए उतना धन नहीं
1: जी
0: है, तो बहुत कठिन होता है जब ऐसे दिन आते हैं। लेकिन माँ की शक्ति कुछ एक अनोखी और अलग ही होती है ना, वो
1: बिल्कुल
0: अद्भुत होती है, कुछ अपने बच्चों के लिए तो कर ही जाती है।
1: जी हाँ,
0: लेकिन हम क्या कर सकते हैं?
1: एक गीत सुने।

0: भाई ऐसा तो होता है, कोई एक व्यक्ति जीवन में ना जिसको देख के मन का संयम टूट जाता
1: हाँ
0: है
1: बिल्कुल,
0: कोई सखी भी हो सकती है
1: हाँ और क्या, ऐसे तो
0: पता है
1: हमारे
0: आरती एक हल्की सी शर्मिली सी मुस्कान दे रही है सारी
1: जैसे कि दीपा जी को देखकर
0: अच्छा
1: बिल्कुल, और हम अपने जो श्रोता हैं उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि उन्होंने एक हमारे श्रोता है वो जो लिखते हैं कि सिंधु ताई सपकाल को अनाथों की माँ कहा जाता था, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हजारों अनाथ

0: बच्चों के पालन पोषण और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया।
1: जी, और एक और ये संदेश आया है, ये इन्होंने कहा कि पद्मश्री प्राप्त सिंधुताई सपकाल को मैंने पूरा कार्य मैंने उनका सुना तो है, ये देखा भी है, वो बहुत ही मधुर वाणी की महिला और अनाथों के प्रति उनका जो दिल में वात्सल्य भाव था उनका, वो देखते ही बनता था। उनकी बेटी ममता सपकाल मेरी छात्रा रह चुकी हैं, जो अब उनकी माँ का काम आगे बढ़ा रही हैं। और एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि सिंधुताई ने खुद का दर्द भुलाकर उन लावारिस बच्चों को अपना उन जरूरतमंद बच्चों को अपना बना लिया और उनके लिए अलग अलग जगह से कभी पेट भरने के लिए जुगाड़ उन्हें लगानी पड़ती थी, कभी कहीं से मांगना पड़ता था, तो कभी उनको एक चीज बोलना पड़ती थी कि मेरे बच्चे भूखे हैं। तो उन्होंने अपने जीवन में 1400 से अधिक अनाथ बच्चों को गोद लिया और उनका भविष्य संवारा। उनके द्वारा संचालित संसाधन संस्था और अनाथालय में बच्चों को शिक्षा, आश्रय और संस्कार दिए जाते। उन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता है।
0: बिल्कुल, एक और संदेश है हमारा, तो हमारी श्रोता जो कहती हैं कि आज सिंधुताई को आपने याद किया, इसलिए वो धन्यवाद कह रही हैं। और सिंधुताई हमारे वर्धा ज़िले के पिंपरी मेघी गांव में जन्मी थी और वो अनचाही संतान थी, इसलिए उनका नाम चिंधी रखा था। चिंधी मतलब बिना काम का बारीक सा टूटा हुआ टुकड़ा। आईने, यानी अगर आपको आई का मतलब नहीं पता, वैसे तो हमें पता है आई का मतलब। और वो पति ने भी उनको निकाल दिया था, तो जब वो गर्भवती थी और आईने अपनी अपनी जच्ची खुद अपने हाथों से की थी और उस बच्ची का नाम ममता रखा था, जो आज उनकी संस्था जो अनाथ बच्चों के लिए आई ने खोली थी उसे संभालती है। आई ने बहुत संघर्ष किया जीवन में और जीवन के आखिरी वक्त उन्होंने अपने पति को भी अपने बच्चे की तरह संभाला था। आई महान थी।
1: बिल्कुल सही कहा, और हम उन्हें नमन करते हैं और उनके जैसा एक हर महिला अपने अंदर एक हिम्मत और की शक्ति बना के रखे, क्योंकि इस तरह से जो उतार चढ़ाव आते हैं अपने जीवन में, हर एक के जीवन में आते हैं, कहीं किसी को किस रूप में, कहीं किसी को किस रूप में, तो उनके उनका जीवन तो हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, डट कर उसका सामना,
0: हार नहीं मानना चाहिए।
1: जी बिल्कुल,
0: एक गीत सुन ले।
1: चलो एक गीत सुन लेते हैं।

0: बड़ा ही सुंदर प्यारा सा गीत है ये वाला, है ना। और अच्छा, आगे की बात बताने से पहले साथियों एक सवाल, सवाल ये कि क्या आप कुछ प्रसिद्ध झीलों के नाम बता सकते हैं, और पर्यटन के लिए आप कहाँ कहाँ कहीं पे घूमने गए थे, कोई प्रसिद्ध हमारे देश की झील। वैसे कुछ संदेश आए हैं जो विदेश में भी प्रसिद्ध झीलों के आसपास घूम कर आए हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। और अब हम बताते हैं कि आज है वर्ल्ड लेक डे, यानी कि विश्व झील दिवस।
1: और विश्व झील दिवस का उद्देश्य क्या है? तो दीपा, इसका उद्देश्य यह है कि दुनिया भर की झीलों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और झीलों के संरक्षण, संवर्धन और जीर्णोद्धार, साथ ही लगातार प्रबंधन के लिए उनका प्रबंधन चलता रहे, होता रहे, इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसको लोगों को प्रोत्साहित करना।
0: जी, तो 2024 में संयुक्त राष्ट्र ने झीलों के संरक्षण और लगातार विकास के महत्व पर चर्चा की और विश्व झील दिवस की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कई चर्चाओं में जोर दिया, और फिर बहुत सारे डिस्कशंस हुए। उसके बाद 27 अगस्त को विश्व झील दिवस के रूप में इसे नामित किया गया।
1: बिल्कुल, ये दिवस झीलों की कई भूमिकाओं को मान्यता देता है, जिनमें मनोरंजन और आर्थिक उपयोग से लेकर जलवायु विनियमन तक शामिल हैं। और साथ ही हमारे लिए ताजे पानी का स्रोत भी है।
0: और जो पेयजल की आपूर्ति करती है ये ताजे पानी का स्रोत, और कृषि और कई तरह के जो उद्योग है उसको सहारा देती हैं। फिर जो जैव विविधता है उसको बनाए रखने में भी झीलें बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं। मछलियों के लिए, वन्य जीवन की बात करें अगर हम, पौधों के लिए आवास प्रदान करती हैं झीलें, बाढ़ के पानी को अवशोषित करती हैं और कार्बन का भंडारण भी करती हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो कई सारी गतिविधियों के लिए भी और मानवीय गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण है झील। लाखों लोगों की आजीविका झीलों पर निर्भर है, जैसे मछली पकड़ना, कृषि है उस पर, या पर्यटन से संबंधित जो भी काम होते हैं। झील अतिरिक्त पानी को अवशोषित और संग्रहित कर सकती है, उसके आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है झीलों की वजह से। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि झीलों पर लगातार खतरा बढ़ रहा है। वो किस प्रकार का है कि लगातार बढ़ता प्रदूषण, पानी का अत्यधिक उपयोग, या फिर ठोस अपशिष्ट होते हैं ना, जो हम ऐसे डाल देते हैं, थैले वगैरह कचरा उठा के उसमें डाल दिया जाता है, या बढ़ता हुआ तापमान है, या वर्षा के बदलते पैटर्न्स जो आजकल होने लग गए हैं, उसकी वजह से जो झील का इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र, उस पर हमेशा मतलब एक सतत दबाव पड़ता जा रहा है।
1: बिल्कुल, और इसी को लेकर हमारे, जब ये आपने एक प्रश्न पूछा था दीपा कि आप कहाँ गए हैं घूमने, तो एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने एक लिखा है, संदेश लिखा है, तो कहते हैं कि मैं अभी हाल ही में जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट घूमने गई थी। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में कई खूबसूरत झीलें हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय नाम टीटीसी और श्लस्चुसी है। टीटीसी वो यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक झील है, जो अपने सुंदर नज़ारों और बोट राइड के लिए जानी जाती है। हम लोगों ने भी बोट राइड करके वहाँ के नज़ारों का लुत्फ उठाया, यानी अच्छे तरीके से उन्होंने झील में अच्छे से घूमा है।
0: बिल्कुल, और जो झील के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये भी देखने में आया है कि झीलों पर लगातार खतरा बढ़ रहा है, वो हमने अभी बात कर ही रहे थे। और ऐसे में ये आवश्यक हो जाता है कि झीलों के पारिस्थितिकी और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़े, उनके संरक्षण के लिए एक मिलजुल की कार्रवाई हो, जो कि उसका सब लोगों को प्रोत्साहन मिले, ताकि एक अवसर मिल सके कि हम झील के बारे में जहां चर्चाएं हो, जहां पर ये उससे जुड़ी जितनी भी परेशानियां हैं, या जो सामने जो कठिनाइयां आ रही हैं, झील का बनावट वैसी ही बने रहे, उसका इकोसिस्टम वैसा ही बना रहे, तो इस पर एक अवसर प्रदान हो सके सभी के लिए।
1: बिल्कुल, और इसी को लेकर एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि हर वर्ष 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने झीलों के संरक्षण और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 27 अगस्त को इस दिन के रूप में चुना था। और जो स्रोत हैं, झीलें जो होती हैं वो पृथ्वी पर उपलब्ध सतह के ताजे पानी का लगभग 90% हिस्सा प्रदान करती हैं। ये बाढ़ के पानी को सोखने और कार्बन को संग्रहित करने में मदद करती हैं। ये जलीय जीवों, पौधों और वन्य जीवों को आश्रय देती हैं।
0: जी, और झीलें वैसे देखा जाए तो दो भागों में भी

0: सकती हैं, एक होते हैं मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। तो अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से जो झील हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, तो लेक सुपीरियर है, और ये जो है ये लेक सुपीरियर है ये क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कहते हैं, और रूस की भी एक मीठे गहरे झील की है जगह लेक टिटिकाका। फिर उसके अलावा हमारे देश की झीलें हैं,
1: बिल्कुल, जैसे कि डल झील है जम्मू कश्मीर में, वुलर झील है जम्मू कश्मीर में, और पेंगोंग त्सो लद्दाख में है जो, और त्सो मोरिरी लद्दाख में ही है ये भी, और लोकटक झील मणिपुर में, और चिलिका झील उड़ीसा में, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। बहुत बहुत सारी झीलें हैं जो बहुत खूबसूरत भी हैं।
0: देखिए बात बात में हम एक अंतराल लेना तो भूल ही गए, तो चलिए ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ चुके कार्यक्रम है सखी सहेली। तो झील के बारे में बातें हो रही थी, एक संदेश आया है आरती, ये कहते हैं कि हमारे शहर अजमेर में पौराणिक और ऐतिहासिक अन्ना सागर लेक है जो कि मुगल काल के जमाने का बना हुआ है, दौलत बाग और बारादरी के किनारे में स्थित है और शाम के समय में क्वींस नेकलेस की तरह नजारा दिखता है जो कि मुंबई के मरीन ड्राइव के जैसा नजारा, जो मुंबई का प्रसिद्ध है ना क्वींस नेकलेस, जब आप मरीन ड्राइव की तरफ जाते हैं तो वहां पर ये नजारा देखने को मिलता है। तो इसी तरीके का नजारा आप अजमेर के इस झील सागर लेक में भी देख सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बताई जाना चाहिए देखने के लिए।
0: बिल्कुल, तो एक और जगह हमारे लिस्ट में जुड़ गई ना कि यहाँ पे भी हमें जाना है।
1: बिल्कुल, और हम बात करने जा रहे हैं
0: कि भाई जब बढ़ती उम्र होती जाती है तो जब असल में जब उम्र छोटी रहती है तो हमें लगता है सब कुछ तो हो जाएगा, सब कर लेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है, बच्चे अपने बड़े हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं बाहर, तब कहीं एहसास होता है कि इतना जल्दी जल्दी ये परिवेश बढ़ता चला जा रहा है, हर दिन से जीवन बदल रहा है, बच्चे काम के सिलसिले में या पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं, किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं या किसी दूसरे देश में, और फिर जो माता पिता हैं वो वहीं पीछे रह जाते हैं उस शहर में जहाँ उन्होंने ताउम्र काम किया हो या उनका मूल शहर या गांव वहीं हो।
1: बिल्कुल,
0: अब हो ये जाता है आरती कि बच्चे वापस नहीं आना चाहते और माँ बाप नए शहर नए परिवेश में अपने आप को ढालने में थोड़ा उन्हें दिक्कत आती है। वो कहते भाई हम जहाँ हैं जिधर हैं हम तो वहीं ठीक है, तुम हमसे आ करके मिल जाया करो।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना इतनी उम्र जहाँ हमने बिताई होती है ना, तो हम वहां से जाके दूसरी जगह जाना फिर वहां पे एडजस्ट करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना।
0: बिल्कुल,
1: जब हमने सारा समय अपनी सारी जिंदगी उस जगह पे एक जगह पे बिताई है, तो इसके बारे में तो हम आगे बात करते रहेंगे। गीत सुन ले।
0: चलिए सुनते हैं।

0: बहुत ही
1: भाई
0: सुंदर
1: देखो
0: गीत था ना।
1: बहुत प्यारा। और ये जब बात होती है ना कि क्या किया जाए, बच्चे कहीं और, माँ बाप कहीं और, ऐसे में लगता है कि रुक कर सोच लिया जाए कि जब हमारी उम्र बढ़ेगी तो कैसा होगा जीवन और हमें क्या करना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: तो देखिए उम्र भी कोई अचानक से तो आरती ऐसा नहीं है कि बढ़ती चली जाती है, तो धीरे धीरे चलकर आती है। तो अपने सुरक्षित भविष्य की योजना तभी से हमें बना लेनी चाहिए जब एक व्यक्ति एक्टिव या उसका जो है ना सक्रिय लाइफ हो, तभी वो सोच ले तो बेहतर है।
0: बिल्कुल। और बच्चों का सानिध्य मिले तो जीवन और भी खुशनुमा हो जाता है, लेकिन अगर वो दूर भी हैं तो भी अपना जीवन सम्मान, सुरक्षा और अपनी शर्तों पर जिया जाना चाहिए। और जिंदगी की दूसरी पारी का ये समय किसी का इंतजार करने का नहीं होता, बल्कि खुद के लिए जीने की सुदृढ़ तैयारी करने का होता है।
1: तो भाई क्या क्या तैयारी कर सकते हैं हम, जैसे कि हम स्वावलंबी बनना चाहिए, यानी सेवानिवृत्ति के बाद आमदनी का एक नियमित या सुनिश्चित जरिया होना बहुत जरूरी है, ताकि किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े।
0: बिल्कुल
1: उम्र बढ़ने के साथ देखियो ना, देखो ना, दवाइयों का, फिर स्वास्थ्य संबंधी या देखभाल करने की अचानक जरूरत, ये बढ़ जाती है। तो इसके लिए अपने कामकाजी जीवन के दौरान ही निवेश के पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। पेंशन योजना है या स्वास्थ्य बीमा या कोई ऐसा इमरजेंसी फंड, इस तरह का चीजें थोड़ी सी तैयार करके रखे, ताकि आपका जो दायरा है या जो पीछे आगे आने वाली जो जिंदगी है वो एक मजबूत रूप ले सके।
0: बिल्कुल। और इसके साथ ही सभी वित्तीय जानकारियां जैसे कि बैंक खातों के विवरण और निवेश से जुड़े दस्तावेज भी हमेशा व्यवस्थित रखें, ताकि आपात स्थिति में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
1: बिल्कुल।
0: और घर
1: अब
0: में बिल्कुल उम्र के
1: जी
0: अनुसार कुछ बदलाव भी करना चाहिए, इसे भी आराम और सुरक्षा दोनों के लिहाज से तैयार करें, जैसे कि फिसलने वाले जो चिकने फर्श होते हैं, कम रोशनी वाले कॉरिडोर या असुरक्षित और ढलान वाली सीढ़ियां बुढ़ापे में बड़े हादसों का कारण बन सकती हैं। इससे सुरक्षा के लिहाज से ये बदलाव स्वयं ही आप 40 से 50 की उम्र तक आप करवा सकते हैं, या आप
1: हाँ, जब
0: अपने
1: आप
0: हिसाब,
1: या
0: जब
1: आप
0: भी आपको
1: अपने
0: मन
1: हिसाब
0: करे।
1: से, जब
0: हाँ,
1: आपको
0: इसमें
1: मन
0: कोई
1: करे,
0: ऐसा
1: ऐसे कोई
0: नहीं है।
1: उम्र किस कोई सीमा नहीं है, आपको लगता है कि नहीं हम थोड़ा सा चेंजेस अपने घर में थोड़ा बदल लेते हैं तो ठीक है, या आपको ऐसा लगता है नहीं हमें नहीं करना है, हमारे बच्चे आएंगे उनके सामने ही हम सब करवाएंगे, तो ये तो अपने अपने ऊपर भी
0: और
1: निर्भर
0: अपने
1: करता
0: घर
1: है।
0: को किस तरह से सजाना ये आपके ऊपर निर्भर करता
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल।
0: इसमें उम्र का
1: और
0: कोई लेना देना
1: आपका, आपके
0: नहीं है।
1: स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, कैसा आपको लगता है कि कोई सपोर्ट की या कोई ऐसे सहारे की जरूरत है, तो उस तरह की कोई चीजें, कोई अटैचमेंट फिटिंग्स वैसे आप घर में लगवा सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: और यदि आप बिल्कुल ही अकेले रह रहे हैं तो

0: पड़ोसियों या कोई पुराने आपके मित्र का जो कोई ग्रुप है या कोई स्थानीय समुदाय है, एक ऐसा भरोसेमंद नेटवर्क तैयार करना बहुत जरूरी हो जाता है आरती, जो जरूरत पड़ने पर एक कॉल या आपके आवास पर आपकी मदद के लिए तुरंत हाजिर हो सके।
1: बिल्कुल, और संतानों से लगाव तो स्वाभाविक है कि भाई सभी को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, और उन पर हर जरूरत के लिए पूरी तरह से आश्रित होना ये ठीक बात नहीं है। और इसलिए अपने मन में ये भाव बिल्कुल भी ना आने दें कि ये तो बच्चों का फर्ज है कि आपको उन्हें संभालना है, और ना ही दूसरों को देकर आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि मेरे बच्चे मेरी सेवा क्यों नहीं करते।
0: बिल्कुल, अब हम ये स्वावलंबी बनना है। जी बिल्कुल, हाँ अभी हम ये शिकायत करने लग जाएं, अरे ये तो देखो बच्चों की ड्यूटी है ना, ये तो करना ही चाहिए, उन्हें फोन तो लगाना ही चाहिए, पूछना तो चाहिए, फला दिन तो उन्हें आना ही चाहिए, क्या वो एक दिन दो दिन के लिए नहीं आ सकते, तो इस तरह की बातें करना आज के जमाने में जहाँ की बच्चों को भी जहाँ वो रह रहे हैं हर दिन चुनौतियां उन्हें अपने काम में या जो भी जिस क्षेत्र में भी वो कार्यरत है वहां पे उन्हें देखना होता है, तो माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा किस स्थिति से गुजर रहा है, उन सब बातों को थोड़ा सा रख के और घर में आप विचार विमर्श एक कर लीजिए।
1: बिल्कुल, और साथ ही आप अपने आप को इतना ज्यादा बिजी रखिए कि आपको जरूरत ही ना पड़े किसी चीज की।
0: जी
1: अपने अपने फ्रेंड सर्कल को आप बढ़ाइए, लोगों से बातचीत करिए और समाज में घुलिए मिलिए, बहुत चीजें हैं करने वाली, आप जो नहीं कर पाए अभी तक अपने जीवन में उसको करिए, अपने शौक पूरे करिए और घूमिए फिरिए, बहुत सी चीजें आप जो कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों के साथ भविष्य की उम्मीदें क्या हैं, अपने निवास, प्राथमिकताओं और किसी भी संभावित मेडिकल इमरजेंसी के बारे में हमेशा साफ और स्पष्ट बातचीत आप करें। जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में पारदर्शी चर्चा करते हैं तो इससे रिश्तों में किसी भी प्रकार की गलतफहमी या खटास की कोई गुंजाइश नहीं बचती, बल्कि आपसी समझ, परिपक्वता और एक दूसरे के प्रति सम्मान और अधिक गहरा हो जाता है।
0: बिल्कुल, अब देखिए ना, अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं आरती, तो अकेलेपन को मानसिक कमजोरी बिल्कुल ना बनने देना चाहिए, और जैसे आपने कहा ना कि अपनी रुचि के हिसाब से और आपको जो कला पसंद है बस उन्हें अपना लीजिए और जिंदा दिली से हम जिए। और इसी से संबंधित ढेर सारे संदेश भी आए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ हमारी जिम्मेदारियां भले ही कम हो जाए लेकिन सुरक्षित भविष्य की चिंता हमेशा बनी रहती है। सुरक्षित भविष्य केवल आर्थिक बचत का नाम नहीं है, इसमें अच्छा स्वास्थ्य, जीवन शैली, अच्छे रिश्ते, मानसिक शांति, ये सब भी शामिल है। उम्र बढ़ने के साथ संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और अपनी पसंद की गतिविधियां, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, उसमें सक्रिय रहना जीवन को बेहतर बनाता है। भविष्य सुरक्षित करने का सही समय कल नहीं आज है।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है अपने आप को आप उस हिसाब से रखें कि अपने अपनी सारी जरूरतें आप खुद पूरा कर सकें। और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अकेलापन बढ़ती उम्र का सबसे बड़ा दुश्मन है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सामाजिक जुड़ाव जरूरी है, अपने परिवार, बच्चों और पुराने दोस्तों के साथ आप संवाद बनाए रखें, वरिष्ठ नागरिकों के क्लब हैं जैसे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों से आप जुड़ते रहिए ताकि मन आपका व्यस्त रहे, और नई तकनीक है उसको सीखना, जैसे कि मोबाइल में कुछ चीज़ें होती हैं उनको सीखना, और साथ ही किताबें पढ़ना या कोई अपनी पुरानी आपकी जो हॉबी है, आपका जो शौक है उसको आप पूरा कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें आपको मानसिक रूप से मजबूत रखती हैं।
0: बिल्कुल, और मानसिक एक शांति और खुशी के लिए क्या क्या
1: गीत संगीत

0: तो भाई हम बात कर रहे थे कि बढ़ती उम्र में क्या किया जाए और कैसे अपना ख्याल रखा जाए। एक संदेश आया है कि उम्र बढ़ने के साथ बीमारियां और चिकित्सा खर्च दोनों बढ़ जाते हैं। बिना स्वास्थ्य बीमा के बुढ़ापे में सारी बचत खत्म हो सकती है, इसलिए आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। कोई अच्छे सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। यह सरकारी योजनाएँ हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो मुफ्त इलाज की सुविधाएँ देती हैं, इनका लाभ उठाना चाहिए। नियमित जाँच करवाते रहिए, जैसे गंभीर बीमारी रूप ना ले ले, कोई गंभीर रूप ना ले ले, और इसके लिए नियमित हेल्थ चेकअप और सक्रिय जीवन शैली को अपनाना जरूरी है।
1: बिल्कुल, और इन्होंने इतनी अच्छी अपने संदेश लिख के भेजे और सबसे अपने विचार भी साझा किए और सुझाव भी दिए, तो उन पे अमल करना चाहिए। साथ ही जाओ अब हम बात कर लें कुछ टिप्स की उपयोगी।
0: बिल्कुल, देखो ये जो दिक्कत आती है इन दिनों में, खास तौर पे बारिश के दिनों में, कि सीलन की एक दुर्गंध सी आने लग जाती है घर में भी, हम कितना भी ख्याल रख लें। तो ऐसे में अगर हमें थोड़ा सा कुछ पता हो कि हम कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं, तो भाई अच्छी ही बात है कि
1: बिल्कुल,
0: घर में
1: क्योंकि
0: घुसते से अगर किसी को
1: हाँ
0: ऐसा लगे कि कुछ अलग सी गंध आ रही है, तो वो सामने वाले का चेहरा ही आपको दिखा देगा कि हाँ भाई कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो
1: बिल्कुल
0: ऐसा ना हो, उसी के उपाय के बारे में बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: तो ये
0: दूर
1: काम।
0: से ये दूर करने के लिए कुछ आसान उपाय हैं, जैसे कमरे की खिड़कियां और दरवाजे को कुछ समय खुला रखें ताकि हवा आती जाती रहे। दीवारों और फर्श को गीला ना रहने दें, नमी तुरंत सुखाएं। कमरे में पंखा चलाएं ताकि हवा का प्रवाह बनता रहे। और अलमारी, जूते या सामान को समय समय पर बाहर निकालकर हवादार जगह पर रखें। सीलन वाली जगह पर बेकिंग सोडा की छोटी कटोरी रख दें, यह गंध सोखने में मदद करता है। और दीवार पर फफूंद अगर आपको दिखाई दे रही है या दुर्गंध लगातार बनी है, तो आप एक प्रशिक्षित व्यक्ति की मदद लेकर सफाई उसकी करवा सकते हैं। ये संदेश हमारे एक सखी ने लिख भेजा है।
1: एक हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि कितना भी आप पेंट कराएं या कुछ भी कराएं उसमें, तो जो सीलन की महक है वो आती है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि मैं सुबह शाम उसे कभी नीम की पत्तियां हैं जैसे, है ना, उसको जलाती हैं, तो इससे जो धुआं होता है ना उससे सीलन की बदबू तो जाती है, साथ ही जो मच्छर वगैरह होते हैं ना वो भी सब
0: वो
1: हट
0: भी चले
1: जाते हैं।
0: जाते हैं।
1: तो
0: जी
1: कपूर भी जला सकते हैं आप, तो ये सब चीज़ें करने से क्या होता है ना कि सारी नमी जो है वो सूख जाती है, नमी हट जाती है और बदबू भी सारी चली जाती है, और एक अच्छा सा एक अरोमा सा आ जाता है,
0: बिल्कुल सही कहा।
1: बहुत
0: और
1: ज़रूरी है।
0: एक और संदेश में हमारी सखी बताती हैं कि बारिश में सीलन की बदबू से बचाव के लिए घर की खिड़कियां को खुला रहने दें ताकि नमी अंदर ना आ पाए। और हर जगह को साफ सुथरा रखें, जहां मच्छर वगैरह हैं या पानी है उन सब जगह की सफाई करते रहें। इससे घर में नमी भी नहीं आएगी और बदबू भी घर में जो ये आ जाती है सीलन की, वो भी नहीं बनेगी। तो ये इन दिनों में हमें बार बार और बहुत जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई करनी पड़ती है, ये बात तो सही है सखियों। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे अभी 2 दिन पहले ही तो कोई फला कोना हमने साफ किया था, और देखो फिर से वहां पर ऐसा लग रहा है कि

0: कुछ फफूंसी बन गई है
1: बिल्कुल
0: या कहीं पे कुछ थोड़ा सा भी अगर कचरा या कहीं पानी इकट्ठा रह गया है कोई टंकी वगैरह में घर की, तो वो भी देखते रहना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से मच्छर बहुत ज्यादा मात्रा में
1: बिल्कुल।
0: फैल जाते हैं घर में।
1: एक और हमारे जो श्रोता जी लिखते हैं कि इसको सीलन और दुर्गंध को हटाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि शाम के समय घर में कपूर जला सकते हैं, और इससे बहुत बड़ी एक अच्छी सी खुशबू भी फैलती है। और साथ ही आप लौंग और दालचीनी, और पानी में लौंग और दालचीनी उबालकर उस भाप को घर में फैलने दीजिए, इससे सीलन की बदबू तुरंत गायब हो जाएगी। एक छोटी सी कटोरी में आप नमक रख सकते हैं, है ना, और भर के कोनों में रख दें जहाँ पर सीलन ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें जो होती है ना, वो हवा में मौजूद जो भी अतिरिक्त नमी होती है या बदबू होती है उसको सोख लेते हैं। और पानी में थोड़े से गुलाब जल में ये आप डाल सकते भी कर भी कर उसे छिड़क सकते हैं घर में। तो ये सब चीज़ें आप जो बताएं ना, ये सब चीज़ें करके, खासकर जो कपूर होता है वो तो हमने किया भी हुआ है, कपूर को और लौंग को और दालचीनी को आप एक साथ रख के अगर जलाते हैं या इसका अरोमा सा फैलाते हैं घर में थोड़ा सा, तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, बहुत देर
0: बिल्कुल,
1: तक बनी रहती है वो
0: बहुत देर
1: खुशबू।
0: तक बनी रहती है और
1: हाँ
0: एक बड़ा सात्विक सा
1: हाँ
0: माहौल घर में हो जाता है ना।
1: बिल्कुल
0: और एक संदेश में और ये टिप बताई है हमारी सखी ने कि आप बेकिंग सोडा और नींबू, ये आप दोनों को लेकर के थोड़ा सा बेकिंग सोडा, कॉफी पाउडर और नींबू के छिलके एक कटोरी में मिलाकर रख दें, तो इससे भी जो नमी है वो सोख लेती है हवा से। और नींबू, और जब भी मौसम थोड़ा साफ हो तो खिड़कियां थोड़ी देर के लिए खुली रखें। और जैसे तुमने भी बताया कि कपूर और नारियल का तेल, ये लकड़ी के फर्नीचर पर कपूर और नारियल के तेल का मिश्रण लगाने से फफूंद या बदबू की समस्या दूर हो जाती है। कपड़ों की अगर बात करें तो कपड़ों को धोने के बाद अच्छी तरह निचोड़ लें और पंखे की हवा में पूरी तरह सूखने के बाद ही अलमारी में रखें। और अगर घर के बाहर जगह है तो सबसे पहले तो घर के बाहर ही ऐसी
1: बिल्कुल
0: जगह है कि जहां शेड वगैरह है और आप उसको रख सकते हैं, उस शेड में सुखा सकते हैं, तो पहले वहां अच्छे से सुखा लीजिए। और अलमारी में तो तभी रखिए जब बिल्कुल अच्छे से आपके कपड़े
1: हाँ,
0: सूख जाएं।
1: नहीं तो उसमें फफूंद आ जाएगी अगर
0: बिल्कुल,
1: थोड़े से भी गीले
0: काले
1: रहेंगे।
0: कलर के कपड़े होते हैं ना, तो कैसे उसमें फफूंद आ
1: हाँ
0: जाती है,
1: बिल्कुल
0: और वो दिखाई देती है असल में।
1: बिल्कुल, तो जो भी गीले कपड़े और गीले मत रखिए, उनको बस अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद ही आप उसको अंदर रखिए। साथ ही आप अगर कहीं पे भी, एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि दीवारों में अगर नमी दिखाई दे तो समय रहते उसकी मरम्मत करानी चाहिए। थोड़ी सी सावधानी से बारिश की नमी को घर की परेशानी बनने से रोका जा सकता है, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: जहाँ से भी टपक रहा है पानी या जहाँ पे सीलन आ रही, बहुत बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है या पानी उसमें उसकी वजह से वहाँ सीलन आ गई है, तो उस जगह को अच्छे से आप मरम्मत करवा लीजिए ताकि वो पानी वहाँ पे आना रुक जाएगा, तो सीलन भी की समस्या से भी निजात मिल जाएगी।
0: और एक हमारी सखी ने एसेंशियल ऑयल्स के बारे में बताया है कि आप चाहें तो गुलाब जल में लेवेंडर ऑयल या लेमन ग्रास ऑयल की कुछ बूंदें मिलाकर स्प्रे बॉटल में भरकर इसे घर में स्प्रे कर सकते हैं, अलग अलग जगह छिड़काव कर सकते हैं, तो इससे भी ताजगी बनी रहती है।
1: बिल्कुल,
0: और अब
1: एक
0: अच्छा
1: गीत
0: मूड
1: सुनते
0: बनने
1: हैं,
0: के लिए,
1: एक
0: अच्छा
1: गीत
0: मूड बनने
1: सुनते
0: के लिए
1: हैं। हाँ
0: गीत, चलिए।

0: भाई समय कहाँ चला जाता है, कुछ याद नहीं रहता जब हम अपनी सखियों के साथ बात करते हैं, है ना आरती?
1: लेकिन धीरे धीरे अब समय आ गया है सखियों से विदा लेने का।
0: बिल्कुल, आप सभी को दीपा माहेश्वरी
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

नमस्ते दोस्तों, विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1 हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों 28 तारीख को हम मना रहे हैं प्रेम विश्वास और स्नेह का पावन पर्व रक्षाबंधन। रक्षाबंधन केवल एक धागे का त्योहार नहीं बल्कि ये उस अनमोल रिश्ते का उत्सव है जिसमें भाई बहन का प्यार छिपा होता है, अपनापन और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव होता है। बहन की राखी में छिपी होती है शुभकामनाओं की मिठास और भाई के वचन में होता है जीवन।

0: काज है आपका?
1: जी मेरा लेट मशीन का काम है, मशीन चलाता हूँ।
0: अच्छा, ये लेट मशीन क्या है, मतलब इससे क्या कुछ बनता है, जरा बताइए डिटेल में।
1: जी मैम, DHL के जॉब होते हैं वो बनाते हैं हम लोग। रेलवे का काम होता है, DHL से आता है, तो हम लोग बनाते हैं वो जॉब।
0: अच्छा, तो
1: जैसे
0: कटाई
1: नट
0: वटाई
1: बोल्ट
0: करते
1: हुए।
0: होंगे, तराशते होंगे, कटाई वटाई करते होंगे, उसको शेप में देते होंगे, है ना? बढ़िया। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, मुझे संगम फिल्म का गाना सुनना था, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर।
0: कि तुम नाराज ना होना। तो ये
1: जी
0: गाना किसी खास के लिए सुनवाना चाह रहे हैं या आप खुद सुनना चाह रहे हैं, पसंद है आपकी?
1: जी खुद सुनना चाह रहा हूँ।
0: लिखा कभी किसी को प्रेम पत्र आपने?
1: नहीं,
0: नहीं
1: मैंने
0: लिखा।
1: ये गाना बहुत पसंद आता मुझे, इसलिए।
0: अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। अब सुनवा रहे हैं आपको संगम फिल्म का ये गाना, जिसकी फरमाइश आपने की।

0: हेलो फरमाइश
1: जी मैम, नमस्ते
0: नमस्ते जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैम, मैं अलंकार मार्केट देवास मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, आपका नियमित श्रोता फार्मासिस्ट मुस्तफा हुसैन बोहरा
0: जी। मुस्तफा हुसैन जी, बताइए क्या हाल है?
1: मैम, बहुत अच्छा, आपके आशीर्वाद से। मैम, आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत बढ़िया, और आप सबकी आवाजें सुनकर एकदम दुरुस्त हो जाती हूँ। तो मुस्तफा जी, बताइए क्या काम काज है आपका?
1: देवास में अलंकार मार्केट में मेडिकल स्टोर है, हसन जी मेडिकल स्टोर के नाम से। मेरे पापा जो है प्रोपरेटर है और मैं फार्मासिस्ट हूँ।
0: अच्छा, बढ़िया। तो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, तो कभी ऐसी दवाओं की कोई समस्या होती है कि कोई ग्राहक आकर आपसे कोई शिकायत करे किसी तरह की, ऐसा कभी कोई मौका आया है, या कभी अर्जेंट कोई दवा की जरूरत पड़ी हो तो आप?
1: मैम, वैसे तो ये सैयदना साहब की बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि अभी इससे कोई बहुत कम ग्राहक आते हैं कि जिसको दवाई का शायद नहीं हुआ या शिकायत की हो।

0: आजकल जब भी दवाई देते हैं तो ऊपर वाले का नाम सैयदना साहब का नाम लेके देते हैं कि आप उनको ठीक कर दीजिए ताकि उसको दोबारा दवाई लेने की जरूरत ना पड़े।
1: अरे वाह क्या बात है। लेकिन आजकल कुछ डुप्लीकेट दवाइयों का चलन आ गया है, तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे?
0: जो क्या तो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि क्या है कि आजकल R&D में इतने ड्रग डेवलप, इतने फॉर्मुलेशन डेवलप हो गए हैं कि एक नाम की अलग अलग बहुत सारी 10 तरह की दवाई आती है।
1: आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जब दवा खरीदें तो किस बात का ध्यान रखें?
0: मैं आपसे और तमाम श्रोताओं से तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी कोई दवाई आप खरीदें उसका बाकायदा लेवल पढ़ के ताकि कौन सा फॉर्मुलेशन आपका है, आपको वो उससे असर करेगा कि नहीं, और उसकी एक्सपायरी डेट जल्दी तो नहीं है, उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, कब वो बनी थी, उसकी जो फॉर्मुलेशन मिले हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे पैरासिटामोल, तो उससे पैरासिटामोल बराबर मिलीग्राम मिला हुआ है, कम ज्यादा तो नहीं है, अगर ज्यादा है तो हमने को रिएक्शन तो नहीं करेगा, कम मात्रा वाला दवाई रिएक्शन ही करेगी, तो आप कम क्वांटिटी वाले ही मेडिसिन अब दीजिए।
1: जी जी, जैसे कि कोई मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं, मरीज आता है बोलता है कि हाँ हमें सर्दी जुकाम खांसी है, कोई दवा है क्या, कोई और सामान लेने आया और ऐसे पूछ लिया, तो जो MR होते हैं मेडिकल स्टोर वाले वो दे देते हैं, कहते हैं अरे हाँ ये दवा खा लो, तो ये भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर का फर्ज मेडिकल स्टोर वालों को नहीं अदा करना चाहिए, है ना?
0: जी हाँ, हालांकि कई मेडिकल स्टोर्स पे ऐसा होता है कि जैसे कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखी हो, मेडिकल वाले अपने कमीशन के चक्कर में कुछ और दे देते हैं, तो आपसे तमाम श्रोताओं से तो इतना ही कहूंगा कि भारत के श्रोताओं में जन जो मेडिकल कराते हैं तो कृपया आप ऐसा ना करें कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी है वही की वही दवाई दे, तो वो उस पेशेंट के लिए ज्यादा कम्फर्टेबल रहेगा और हमारे लिए भी ज्यादा कम्फर्टेबल रहेगा जो हम दुकान संचालक।
1: जी जी, मुस्तफा जी हमें बताइए कि ये जो जेनेरिक मेडिसिन और एथिकल मेडिसिन है इसका क्या भेद है, जरा क्लियर कीजिए हमारे श्रोताओं को।
0: फर्क तो इतना रहता है मैम कि जेनेरिक मेडिसिन जो रहती है वो बहुत सारे लोगों को मिल जाती है, और उनकी कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं होती है, ना ही उनके लिए कोई MR वगैरह मिलते हैं। एथिकल का तो क्या है कि हर मेडिकल हर स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है, उनकी मार्केटिंग बाकायदा हो जाती है, उनके MR वगैरह आके मिल जाते हैं।
1: जी तो बताइए कौन सा गाना आपकी पसंद का हम पेश करें?
0: मैम एक्चुअल मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, कई फिल्म उनकी देखी है, उनकी फिल्म आई थी BV No. 1, उसका गाना सुनना है, हाय हाय मिर्ची।
1: बहुत बहुत शुक्रिया फोन किया आपने। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम BV No. 1।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं जयदीप अस्थाना इंदौर से बोल रहा हूँ
0: जी बताइए जयदीप जी, क्या हाल है आपका और इंदौर का क्या हाल है?
1: इंदौर का बहुत बढ़िया, अच्छा प्लेजेंट मौसम हो रहा है अभी तो, हिल स्टेशन जैसा।
0: अरे वाह, बारिश हो रही है मतलब?
1: हाँ हल्की हल्की हो रही है बारिश, लेकिन मौसम अच्छा है।
0: इंदौर के पास ये जो एक पहाड़ी पर मंदिर है बाज बहादुर, और क्या है वहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थल है ना?
1: एक तो इंदौर के अंदर ही एक देवगराड़िया है, और पहाड़ी पर तो उधर मांडव पे है।
0: मांडो, ये पहाड़ी पर जो मांडो है उसके बारे में हमें बताइए, हमारे श्रोताओं को कैसे जाया जाता है और क्या है वहाँ पर?
1: मांडव इंदौर से 100 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से इंदौर से आराम से कोई भी टैक्सी वगैरह मिल जाती है। वहाँ पे एमपी टूरिज्म के अच्छे होटल्स भी हैं और प्राइवेट होटल्स भी हैं, एक दिन के लिए बहुत अच्छा स्टे है। इंदौर के आसपास ऐसे महेश्वर भी है, उज्जैन भी है, ओमकारेश्वर भी है,
0: जी जी देवास भी है ना?
1: देवास भी है, तो ये सभी जगह
0: जी,
1: मंदिर हैं।
0: देवास में पंडित कुमार गंधर्व का निवास है, जो शास्त्रीय
1: हाँ
0: संगीत
1: जी,
0: के
1: हाँ जी।
0: चाहने वाले हैं वो तो बाकायदा उसे मंदिर की तरह पूजते हैं और वहाँ जाते हैं दर्शन के लिए। बहरहाल हम ये जानना चाह
1: बिल्कुल
0: रहे थे
1: बिल्कुल।
0: कि मांडो किस लिए प्रसिद्ध है?
1: मांडो पिकनिक स्पॉट के लिए, और वहाँ पे बहुत पुरातत्व महल टाइप का।
0: जी, तो आप अपने बारे में जरा जानकारी दीजिए, क्या करते हैं आप?
1: मैं बिजनेस करता था, अभी तो मैंने वाइंड अप कर दिया टोटल। मेरे पास सारेगामा इंडिया लिमिटेड, आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री से ही रिलेटेड, उसकी C&F थी पूरे MP और छत्तीसगढ़ की।
0: अरे वाह, तब तो फिर आपके पास अगर कोई संगीत प्रेमी है तो रिकॉर्ड वगैरह सब मिल जाएगा,
1: हाँ, मेरे
0: रिकॉर्ड
1: पास
0: सीडी?
1: बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी हैं, और मैंने MP और छत्तीसगढ़ के विविध भारती स्टेशन CD वैसे ही खरीदते थे।
0: अरे वाह, क्या बात है, तो बंद क्यों कर दिया भाई बिजनेस?
1: ये तो मैडम पेन ड्राइव और ये डिजिटल वगैरह आया तो कंपनी ने ही वाइंड अप कर दिया। अभी
0: जी
1: पूरा डिजिटल फॉर्मेट में बिकने या CD कैसेट बिकना ही बंद हो गई, तो कंपनी ने ही वो करा था। मैंने दूसरे बिजनेस भी करे इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल वगैरह के। अब मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए, यानी मास्टर्स कर रहे हैं, तो फिर मैंने वाइंड अप कर दिया।
0: चलिए, मतलब बहुत मेहनत कर ली और उसके
1: हाँ
0: बाद
1: जी,
0: अब
1: अब
0: आराम
1: आराम
0: का
1: कर रहे
0: समय
1: हैं।
0: बिता रहे
1: आपका
0: हैं।
1: विविध भारती सुनते हैं, अपने रिकॉर्ड सुनते हैं।
0: तो म्यूजिक सुनते हुए फिर गाना भी सीख लिया होगा, क्योंकि म्यूजिक का बिजनेस था तो निश्चित रूप से गाना भी गाते होंगे, तो इस समय
1: हाँ, गाने तो मैं मेरे फेसबुक अकाउंट पे मैं गाता रहता हूँ, डालता भी रहता हूँ, अपलोड भी करता रहता
0: तो
1: हूँ।
0: भाई हमें कैसे पता चलेगा, हमारे श्रोताओं को कैसे पता चलेगा आप जब तक गुनगुना के नहीं सुनाएंगे?
1: सुना देते हैं मैडम, जो गाना मेरी फरमाइश है वही वाला सुना देते हैं।
0: जी,
1: तुमसे मिल

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं अनुप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है श्री भूमि, असम से। मैं
0: अच्छा
1: ऐसे में मैं बंगाली हूँ, बांग्लाय कथा बोली
0: जी
1: और बांग्ला रसगुल्ला भालोबासी। दो लाइन बोलू मैम।
0: जी जी बोलिए।
1: दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी, दिखाए के शरीफ बनने की आदत
0: नहीं
1: नहीं
0: है
1: है
0: हमारी
1: हमारी,
0: जी, क्या
1: सब
0: बात,
1: चाहे जैसी भी हो, खुलेआम बोलते हैं, है ना
0: बहुत बढ़िया। तो ये पंक्तियां आपने
1: जी।
0: खुद रची हैं कि कहीं से किसी की?
1: नहीं, मैं इमिटेट किया है। जब
0: जी
1: शब्द अच्छा लगता है शायरी तो
0: जी
1: छोड़ देता हूँ इस प्लेटफॉर्म में।
0: हमें तो बताइए, आपकी असम की बात आपने कही, तो असम में रहते हैं या इस समय जो गांव का नाम
1: जी,
0: लिया वहां?
1: असम में सुनिए ममता जी, हमारे असम में डाइवर्स टू पार्ट है। एक पार्ट का नाम है ब्रह्मपुत्र वैली और दूसरी पार्ट का नाम है बराक वैली। बराक वैली में हम इनहेबिटेंट्स है, हमारे ज्यादातर हमारे यहाँ पे बंगाली कम्युनिटी का, बंगाली संस्कृति का धरोहर है। और दूसरी जो ब्रह्मपुत्र वैली है वो तो लार्ज नंबर ऑफ एसामीज कल्चर है। एसामीज बिहू, एसामीज गाने जो है वो तो अवेलेबल होते हैं। वो बात करते हैं, हम तो बोलते हैं आमी तुम्हाके भालोबासी, वो
0: जी
1: बोलते हैं मैं तुमको,
0: हाँ
1: ऐसे करके क्या बोले उसका जो लैंग्वेज।
0: हाँ और बच्चे को
1: जी
0: शुवाली
1: शिवाली, जी, आपने सही
0: है?
1: पकड़े हैं। और हमारे यहाँ पे तो लार्ज स्केल से आसाम में टी गार्डन, कड़कदार चा, जायकेदार चा, क्या बात है। और वो एक्सपोर्ट होते हैं और बहुत लाजवाब वो ड्रिंक है। तो
0: जी, कहाँ
1: ममता जी, आज
0: कोई
1: इस प्लेटफॉर्म में एक गाने का लुत्फ उठाना चाहता
0: जी,
1: हूँ।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: फिल्म का नाम है सिर्फ तुम और गाने का बोल ऐसे पंसी।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, प्रदीप कुमार तिवारी।
0: जी प्रदीप जी, बताइए अपने बारे में।
1: मैं रेलवे में कंडक्टर था, एसी में चलता था, भुसावल, नागपुर, झांसी, दिल्ली। अब जो है 8 साल हो गए मैडम, रिटायर हो गया मैं।
0: अच्छा, रिटायरमेंट के बाद भी आपको सुविधाएं दी जाती होंगी ना सरकार की ओर
1: हाँ
0: से?
1: हाँ हाँ सरकार से पेंशन मिल रही है और
0: हाँ
1: सब चीजें मिल रही है। सबसे अच्छा ये रहा कि मैं अपने बच्चों को, क्योंकि ट्रेवलिंग वाला जॉब था तो बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाया
0: अच्छा,
1: मैं। अब
0: ओ
1: उनके बच्चों को
0: हाँ
1: बढ़ता
0: हाँ
1: हुआ देख रहा हूँ तो पुरानी चीजें याद आ रही कि यार मैंने अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखा
0: ओ, देखिए
1: होता।
0: ना, जब हम टीसी
1: जी
0: को देखते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल नहीं आता कि आप अपने परिवार को
1: जी
0: छोड़कर इतनी भीड़, इतनी तकलीफ दे यात्रा भी करते
1: जी
0: हैं, तो इसका
1: जी
0: भी ख्याल रखना चाहिए। और बाकी सबके लिए
1: जी
0: बर्थ
1: जी
0: होती है सोने के लिए, आप लोगों के लिए बर्थ नहीं होती है, आप बैठ के यात्रा करते हैं,
1: जी
0: एक छोटी सी
1: जी
0: सीट होती है, देखा है। तो अब
1: जी
0: यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि 28 तारीख को रक्षाबंधन है और
1: जी
0: रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार होता है,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल। हाँ
0: आप कुछ कहेंगे रक्षाबंधन के अवसर पर?
1: हाँ
0: आपकी बहन की राखी
1: मेरी
0: आई?
1: तीन बहनें हैं, तीनों बहनें जो हैं भोपाल में आ जाती राखी बंधवाने के लिए घर पे, और दिन भर बड़ा अच्छा लगता है मैडम। मिठाई वगैरह जो है बच्चों के लिए ले आते हैं, अब हम लोग तो खा नहीं पाते मिठाई। राखी जो है बच्चों में झगड़ा होता है कि ये राखी अच्छी है, ये मैं बांधूंगी, ये वो, तो बड़ा अच्छा उस दिन लगता है, 28 तारीख को बड़ा अच्छा लगता है।
0: जी, फिर तोहफे का आदान प्रदान भी होता है ना कि भाई
1: हाँ
0: कुछ?
1: वो तो अब मैडम सिस्टर बड़ी है, संपन्न है, तो वो तो एक साड़ी अच्छी दे दो उनको, उसमें मान जाती है।
0: अच्छा जी, रक्षाबंधन पर भाई जो प्रेम से दे वही स्वीकार्य होता है बहन
1: जी
0: को,
1: जी जी
0: और
1: जी
0: अपनी दुआओं की तावीज भी बांधती है राखी के साथ बहन। तो
1: जी जी जी
0: चलिए बताइए अब कौन सा गाना आपको सुनवाए?
1: राखी धागों का त्योहार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, फोन किया आपने, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: बंधा

0: हेलो फरमाइश.
1: नमस्कार मैम, मैं
0: नमस्कार
1: भोपाल मध्य प्रदेश से श्रवण सिंह गिन्नारे बोल रहा था
0: जी. बोलिए श्रवण जी, क्या हाल है आपका
1: जी। बहुत अच्छा, मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा फोन लग गया, कई साल
0: जी.
1: के बाद लगा
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल, एक बार क्या
1: जी
0: इसके
1: हाँ
0: पहले बात हुई थी, पर
1: जी जी
0: भी
1: जी
0: कई महीने पहले. तो बताइए क्या हाल है अब, भोपाल का क्या हाल है, भोपाल में क्या गतिविधियां चल रही हैं आजकल?
1: कल बहुत बारिश हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई कल वहाँ पे भोपाल
0: ओहो
1: में। बाकी तो आसपास के क्षेत्रों में सब दूर बारिश हो रही है, सभी पोखर तालाब जितने हैं भरते जा रहे हैं, डैम पानी की कमी ऐसा लग रहा था कि हो जाएगी, लेकिन बड़ा तालाब जो हमारा यहाँ बड़ी झील है भोपाल की बहुत फेमस है, बिल्कुल लबालब है, बिल्कुल इस समय बहुत लहरें उठ रही समुद्र जैसी, वहाँ पे देर से आई लेकिन बरसात आ गई, समय से आ गई।
0: जी. तो मुंबई की बारिश ऐसे लगता है कि बाकी शहरों में चली गई है. मुंबई में बारिश नहीं हो रही इस समय, हल्की फुल्की झीसी पड़ती है बस बंद हो जाती है. हमने सुना है
1: जी जी
0: प्रयागराज में भी खूब बारिश हुई, बाढ़ आई है, और शहर के आज तो हेलो फरमाइश में बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि उनके यहाँ बारिश हो रही है.
1: हाँ जी,
0: तो
1: पूरे भारतवर्ष में एक तरह से बारिश हो रही है,
0: जी.
1: और मेरी बहनें, तीन बहनें गई हैं तीर्थ यात्रा पे,
0: अच्छा, तो राखी कैसे
1: और
0: बांधेंगी 28 तारीख को,
1: नहीं आज
0: रक्षाबंधन है?
1: आज सभी ओंकारेश्वर में हैं, ओंकारेश्वर जो प्रसिद्ध स्थल है खंडवा जिले में,
0: जी.
1: और वहां से कल सभी बहनें हमारे गांव पे आ जाएंगी, हरदा के पास हमारा गांव है, खेती वगैरह है, तो वहां सब बहनें आ जाएंगी, और मैं 26 तारीख को चला जाऊंगा, फिर हम
0: अच्छा,
1: 3-4 दिन धूमधाम से रहेंगे बहनों के, उनका स्वागत करना रहते हैं।
0: क्या बात
1: जब
0: है भाई,
1: कोई हमारे यहाँ
0: बहुत
1: तीर्थ जाते हैं तो उनके आने में पूरा परिवार मिलता है, हम मंदिर में उन सब स्वागत करते हैं।
0: अरे वाह.
1: कहा यह जाता है कि पहले जब तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो लोगों को उम्मीद नहीं होती थी कि वो लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उस हिसाब से बड़ा वो परंपरा चली आ रही है अभी तक, तो नए वस्त्रों से हम उनका स्वागत करते हैं, मंदिरों में वहाँ भोजन करते हैं, और
0: अच्छा,
1: फिर उनको
0: वाह
1: घर लेके जाते हैं जी,
0: वाह वाह. तो
1: गाजे
0: फिर
1: बाजे
0: तो
1: के
0: ये
1: साथ
0: बड़ा
1: घर
0: अच्छा
1: लेके
0: हो गया,
1: जाते
0: आप जाएंगे और उसके बाद
1: हैं।
0: फिर
1: जी
0: रक्षाबंधन का पर्व भी आ रहा है, तो राखी भी बन जाएगी फिर तो.
1: जी जी जी जी
0: तो बहनों को इस
1: बिल्कुल।
0: बार रक्षाबंधन पर क्या तोहफा देने वाले हैं, कुछ सोच रखा है आपने?
1: देखिए बहनों को तो अब उनकी पसंद की बात करें तो आजकल इतनी ज्यादा मार्केट में वैरायटीज हो गई है, मैं तो नकद राशि और एक लिफाफा देना ही पसंद करता हूँ बहनों को,
0: जी
1: पसंद से जो चाहे ले लीजिए।
0: जी बहुत बढ़िया.
1: जी
0: और
1: जी जी
0: बताइए आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: बढ़िया चल रहा है कामकाज में।

0: मैं टूर पे हूँ सिवनी जिले में।
1: अच्छा,
0: महाराष्ट्र की बॉर्डर पे सिवनी जिले में, यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑडिट करने के लिए आया हूँ।
1: अच्छा अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: और यहाँ से मैं कल शाम को रवाना हो जाऊंगा, परसों ईद मिलन करके और गाँव
1: जी
0: चला जाऊंगा बहनों से मिलने के लिए।
1: जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आए हैं तो मतलब एक तरह से जंगल की सैर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तो बड़े घने जंगल हैं और हरियाली बहुत है। हमने देखा है कि महाराष्ट्र के गांव एकदम हरे भरे समृद्ध हैं। तो आपने
0: जी
1: क्या
0: जी
1: देखा
0: जी
1: बताइए आप।
0: ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, वहां पे मैं देखने के लिए गया था।
1: हाँ,
0: और
1: श्रवण सिंह के नारे से बात चल ही रही थी और बहुत दिलचस्प बात चल रही थी तब तक फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सतपुड़ा की बात की, सतपुड़ा की पहाड़ियां की। तो श्रवण जी, आपको पता है सतपुड़ा के घने जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता बड़ी मशहूर है और बहुत ही सुंदर कविता है। तो जब भी जंगल में जाएं या जंगल की ओर या जंगल के बारे में पढ़ें तो भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता जरूर पढ़ें। और यहीं पर बातचीत के दौरान श्रवण सिंह किनारे जी का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन बात उन्होंने रक्षाबंधन की है तो हम उनको सुनवा रहे हैं रक्षाबंधन का ये गाना। फिल्म का नाम है अनजाना, सुनते हैं ये गाना।

0: आयुष,
1: हम इंदौर से बात कर रहे हैं ममता जी।
0: आपका शुभ नाम?
1: विशाल यादव
0: जी। विशाल जी बताइए, कौन सी फिल्में देखना पसंद करते हैं, किस तरह की, पुरानी नई?
1: मैं पुरानी फिल्में देखना पसंद करता हूँ, जो क्लासिक रहती है और वही मुझे अच्छी लगती है अधिकतर।
0: मनोज कुमार की और कौन सी फिल्में आपने देखी है?
1: देशभक्ति की तो मैंने सारी देख रखी उनकी, और उनके गाने भी अच्छे लगते हैं मुझे।
0: भाई देशभक्ति की फिल्में बनाई उन्होंने इतनी ज्यादा कि उनका नाम ही भारत कुमार पड़ गया ना।
1: और मैडम जी काफी दिनों से ट्राई कर रहे थे, आज हमारा कॉल हमने बहुत मुश्किल से लगाया है
0: जी। तो लग गया है फोन?
1: जैसे संडे के दिन हम जो सुनते हैं ना सुबह देशभक्ति का जो रहता है,
0: वंदन वार में देशगान आता है, रामचरितमानस होता है, फिर संगीत सरिता, संगीत सरिता के बाद भूले बिसरे गीत, हमें राय प्यार के, चित्रलोक,
1: तो वो भी हमें काफी पसंद आता है वो।
0: अच्छा अच्छा, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: मैं यादगार मूवी का गाना सुनना चाहता हूँ, मनोज कुमार जी की।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, ममता सिंह जी को और विविध भारती की पूरी टीम को दिनेश सोडा का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी पूरी विविध भारती की टीम की ओर से दिनेश जी आपको भी हमारा नमस्कार।
1: सर धन्यवाद, आपको रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं। विविध भारती के जितने भी श्रोता टीम है, पूरे रेडियो प्रेमी श्रोता प्रेमियों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहाँ से बोल रहे हैं आप सोडा जी?
1: ममता सिंह जी, मैं जोधपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ, विविध भारती का नियमित श्रोता।
0: जी जोधपुर में राखी भाई बहनों के अलावा अन्य रिश्तों में भी बांधी जाती है, हमने सुना है, बताइए।
1: बिल्कुल आपने सही फरमाया, बिल्कुल ये एक धागा नहीं है, प्रेम का धागा, प्रेम का रिश्ता टूट बंधन है ये भाई बहन का।
0: जी जी, किन किन लोगों को बांधी जाती है राखी?
1: भाई को भी बांधी जाती है, बहन को भी बांधी जाती है, मतलब धर्म का भाई भी करते हैं, जैसे किसी का भाई नहीं होता ना, तो मैंने धर्म का भाई भी बनाती है और धर्म का भाई भी है ना, प्रीत निभाते हैं।
0: भाभी को भी राखी बांधी जाती है ऐसा मैंने सुना है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो लटकन वाली राखी होती है, लटकन वाली राखी, लूंगा राखी, यहाँ पे बहुत सारी राखी, अलग अलग वेरायटी की राखी मिलेगी आपको।
0: जी
1: हमारे राजस्थान तो मतलब बहुत ही त्योहारों का देश है, त्योहारों का प्रदेश है और अनेकता में एकता वाला प्रदेश है राजस्थान। यहाँ पत्रों का शहर बनी है, यहाँ का पत्र मशहूर है, पत्रों का शहर बनी है, लेकिन यहाँ के लोग पत्र दिल्ली है। यहाँ आज भी मेहमानों के आगमन होता है तो आज भी मेहमानों के राह में फूल बिछाए जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, मेहमानबाजी के लिए मशहूर है और बहुत अच्छा।
1: नंबर वन
0: रक्षाबंधन का त्योहार आप कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं सुबह से?
1: सेवाया बनाते हैं और बहने आती है, राखी बांधते हैं और बहन को वचन देते हैं उनकी रक्षा करेंगे। रक्षाबंधन एक रक्षा का सूत्र होता है, बंधन होता है। जब भी बहन पर कोई विपदा आती है, संकट आता है, तब भाई उसके साथ खड़ा रहता है। और ऐसी परंपरा है कि हुमायूं मुल्क जो कर्मा थी ना, सिपाही जो हुमायूं को राखी भेजी थी, तो उन्होंने वचन दिया था कि मैं तेरी रक्षा करूंगा और उन्हें सिर काट के दे दिया था।
0: जी जी,
1: और जब भी उन पर लड़ी हुई थी तो वो गए थे उनकी लड़ी में, कर्मावती ने राखी भेजी थी।
0: जी जी, और रक्षाबंधन के दिन एक रक्षा सूत्र आता है, वो तो सभी को पूरे परिवार में एक दूसरे को बांधा जाता है।
1: आपको पता होगा मैडम, राजस्थान में तो जब खेती करने के लिए हल चलाते ना, उस हल पर भी राखी बांधते हैं, ऐसी भी परंपरा में।
0: बिल्कुल सही बात है, दरवाजे पर भी राखी बांधी जाती है उस दिन। तो
1: ममता जी, हर कोई प्यारा नहीं होता, हर किसी से प्यार नहीं होता, हर कोई प्यारा नहीं होता, हर किसी से प्यार नहीं होता। ममता जी, ये तो दिल मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
0: जी क्या बात है भाई, और दिल मिलाने के लिए बहुत जरूरी होता है एक दूसरे की संवेदनाओं का ख्याल रखना, एक दूसरे की बात को गौर से सुनना और उस पर अमल करना। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं मेरी बहन को डेडिकेट करूंगा, कि मेरी बहन का गाना फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहन है, हरे राम हरे कृष्णा मूवी का है, किशोर दा की आवाज में, देवानंद फिल्मा का गाना है।
0: जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद फोन किया आपने। अब आपके जोधपुर शहर में हम भेज रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम हरे राम हरे कृष्णा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गांव बिटोड़ा भोयर जिला वाशिम महाराष्ट्र से योगीराज मस्के बात कर रहे हैं।
0: योगीराज मस्के जी, आपकी मनचाहे गीत में भी चिट्ठियां आपके नाम की आती हैं,
1: जी
0: तो पत्र भी
1: निरंतर रूप
0: लिखते
1: से।
0: हैं?
1: जी अभी तो पत्र कम हो गए मैडम जी, मिलते कम हैं।
0: आपको बता दें, विविध भारती में पत्रों की संख्या फिर वैसी ही हो गई है।
1: लोगों ने लगभग बहुत हद तक श्रोताओं द्वारा बहुत ही प्यार दिया गया है जी भारती को।
0: जी बिल्कुल सही बात है, और उस प्यार को फिर आंखों पर लिया है विविध भारती ने। तो मस्के
1: जी
0: जी, जरा बात पत्र की चली थी, तो बताइए, पत्र लिखने की परंपरा अब जैसे कम हो रही है, तो क्या
1: जी
0: आप किसी को पत्र लिखते रहे, पहले लिखते रहे अपनी बहन को,
1: जी
0: भाई को?
1: लगभग श्रोताओं से जुड़ा पत्रों से ही शुरू हुआ था, तो वो सिलसिला आज कम हो गया है। जैसे श्रोताओं के लिए फोन वगैरह का, जैसे व्हाट्सएप वगैरह, इसी कारण से कम हो गया। नहीं तो रेडियो केंद्र हुए और विभिन्न विधाओं में आज भी खत लिखे जाते हैं। मैं तो
0: जी
1: लिखता हूँ
0: जी बिल्कुल, और खास मौके पर तो पत्र लिखना ही चाहिए, जैसे रक्षाबंधन है।
1: खास मौके पर तो निरंतर लिखे जा रहे हैं, लिख भी रहा हूँ। खतों का मिलना दूभर हो रहा है, बस बड़ी दिक्कत से मंगवाने पड़ते हैं दोस्तों से।
0: जी जी ग्रीटिंग की परंपरा थी, ग्रीटिंग अपने हाथ से बना के भेजे जाते थे, कुछ अलग ही
1: ग्रीटिंग भी
0: समय।
1: थी बाद में। शुरुआती समय में तो मुझे याद है 75 पैसे का अंतर्देशीय आया करता था।
0: और वो ग्रीटिंग जब आते थे तो ग्रीटिंग को बहुत समय तक अपने टेबल पर और स्टडी में सजाया जाता
1: मैंने
0: था
1: तो
0: ना?
1: लगभग संजोए रखा हुआ है। वो तो ये बात है कि खत एक अलग चीज है, उसमें सब कुछ भाव तो छोड़िए, पर वो उस आदमी का फिल्मों में दिखाया जाने वाली बात नहीं है, पर सच में आदमी दिखता था। अगला जो भी व्यक्तित्व है, हम जिस व्यक्तित्व से बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्तित्व हमें सीधे हमसे रूबरू होता था खत के द्वारा।
0: जी जी जी
1: जी तो आज फिल्म का नाम है हिना और गीत के बोल है देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए।
0: बहुत बढ़िया गाना चुना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मस्के जी। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं अम्बेडकर चौक खोराई जिला सागर से आपका नियमित श्रोता राम सखी परमानंद बोल रहा हूँ मैम।
0: जी परमानंद जी, बताइए क्या हाल है आपका?
1: बड़ी काम का बरका
0: जी। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: पिक्चर का नाम है हिमालय की गोद में, और उसके गाने के बोले चांद सी महबूबा हो।
0: जी, मुकेश की आवाज में ये गाना है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: तो दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक कृपया वे हमें कॉल ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिले। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का एसटीडी कोड 022। अब चलने से पहले आपको ये भी बता दें आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

आइए सुनते हैं छाया गीत। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन,

कहाँ होता है बंजारों का कोई घर या अपना शहर। मुसाफिर होते हैं, पीठ पर बिछौना साथ लिए घूमते हैं इधर उधर। जंगल संस्कृति के लोग नदी सभ्यता से जैसे कोई नाता नहीं। बस ऐसे ही मैं और मेरा बंजारा मन। जिंदगी में जिंदगी ज्यादा चाहता है, सजावट कम। धूप और हवा चाहता है, पर्दे कम। सार्थकता चाहता है, फर्नीचर कम। जीवन भर खुद को ढोया, खुद से कभी ना हारी हूं मैं। हाँ, एक बंजारा ही हूं मैं। हाँ, एक बंजारा ही हूं मैं।

जावेद अख्तर साहब अपनी एक नज्म में लिखते हैं, मैं बंजारा वक्त के कितने शहरों से गुजरा हूँ, लेकिन वक्त के इस एक शहर से जाते जाते मुड़ के देख रहा हूँ। सोच रहा हूँ तुमसे मेरा ये नाता भी टूट रहा है। तुमने मुझको छोड़ा था जिस शहर में आकर, वक्त का अब वो शहर भी मुझसे छूट रहा है। वो सारे दिन जिनके कंधे पर सोती हैं अब भी तुम्हारी जुल्फ की खुशबू, सारे लम्हे जिनके माथे पर रोशन अब भी तुम्हारे लम्स का टीका, नम आँखों से गुमसुम मुझको देख रहे हैं, मुझको

थोड़ी भी जिंदगी को छोड़कर अक्सर तन मन और जीवन बंजारा बन जाता है। देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं बंजारे ही तो हैं, कोई काम की तलाश में, कोई घर की तलाश में, और कोई खुद की तलाश में भटक ही तो रहा है। जीवन की इस कठोर यात्रा में भूखा प्यासा दर दर भटकता हुआ प्यार और सुकून का सहारा ढूंढ रहा होता है ये बंजारा मन।

आवारापन बंजारापन न जाने कहां कहां भटक आता है निरंकुश होकर। रात्रि की निस्तब्धता में घर के कोने से लेकर मन के आकाश तक बेधड़क और निडर होकर किसी ने क्या खूब लिखा है, आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में, हर दम हर पल बेचैनी है, कौन बला है सीने में। जाने ये कैसी आग लगी है, इसमें धुआं न चिंगारी, हो न हो इस बार कोई खाब जला है सीने में, आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में, एक खला है सीने में।

एफएम बैंड 102 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए आनंद लेते हैं फिल्मी तरानों का और सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
3: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।
6: GST काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर

जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।

0: पांच महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
1: mmsky.mp.gov.in पर। MMSKY, सीखो भी कमाओ भी।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। ₹1,000 से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0% GST है, जबकि ₹1,000 से ₹2,499 तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। ₹2,500 से लेकर ₹7,499 तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है, लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ दो ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।
6: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
7: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
6: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
7: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
6: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
3: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें

फिल्मी गानों के तरानों का आनंद अभी आप ले रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत में। ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। शाम के 6 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं श्रोताओं आज का सुविचार। इसे भेजने वाले हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला जी। लिखते हैं,
2: सत्य की राह भले कठिन हो लेकिन मंजिल हमेशा उजाले तक पहुंचाती है। झूठ कुछ पल चमक सकता है पर सत्य सदा सम्मान और विश्वास दिलाता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके द्वारा भेजे गए संदेश। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत और गुरकीरत राहुल के साथ गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: तहसील ठियोग जिला शिमला से सूरज चौहान जी।
1: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने लिखा है, आज उमंग कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जीवन संघर्ष और राष्ट्रभक्ति से जुड़ी अत्यंत रोचक प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने का अवसर मिला।
2: ये भी जानिए मैं ये जानकर गर्व हुआ कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे ओजस्वी पुकार और जय हिंद जैसे अमर राष्ट्रनाद को जन जन तक पहुंचाने में नेताजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
1: उनका अदम्य साहस, अटूट देश प्रेम और बलिदान आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए अजीत जी और विमलेश जी और कार्यक्रम की पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। लिखा है, आपकी संपूर्ण टीम को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने वाले कार्यक्रम के निर्माण हेतु हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश सेवा सर्वोपरि के सिद्धांत को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से श्रेष्ठ साबित करने वाला प्रेरक प्रसंग सुनकर मन गदगद होकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। आपको हार्दिक आभार और धन्यवाद।
2: आपको भी हार्दिक आभार संदेश भेजने के लिए। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला।

0: मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो।
1: क्या बात है, जहां मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो। अच्छा, ऐसा भी कोई गांव है? कोई मजाक कर रही हैं आप?
0: नहीं नहीं अजीत जी, बिल्कुल सच। ये वो जगह है जहां के छाते भी कहते हैं वर्षा रानी कभी तो रुको।
1: वाह, क्या बात है, वर्षा रानी कभी तो रुको।
0: जी चलिए, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछते हूँ, बताइए ये कौन सी जगह है।
1: अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर कि वर्षा भी रुकना भूल जाती है तो मुझे याद आ गया, वो जगह है मौसिन राम, ये मेघालय राज्य में है।
0: बिल्कुल सही जवाब। अच्छा तो जरा श्रोताओं को ये तो बता दें कि कितनी बारिश होती है वहाँ।
1: विमलेश जी, यदि यूं ही बता दूं ना कि वहाँ की औसत सालाना बारिश कितनी होती है तो जानकारी में वो मजा नहीं आएगा।
0: जी
1: तो पहले मैं बताता हूँ कि भारत के कुछ और शहरों में बारिश कितनी होती है।
0: जी
1: जैसे दिल्ली की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 650 मिलीलीटर,
0: चेन्नई की लगभग 1400 मिलीमीटर और मुंबई की लगभग 2200 मिलीमीटर।
1: और यदि कोलकाता की बात करें तो ये लगभग 1600 मिलीमीटर है। तो अब सुनिए कि मौसिन राम मेघालय की औसत सालाना वर्षा कितनी है।
0: जी
1: तो यहाँ की सालाना औसत वर्षा है 11900 से लेकर 12000 मिलीमीटर तक,
0: जी
1: यानी यदि इसे मीटर में मापें तो औसत सालाना बारिश लगभग 12 मीटर के आसपास है।
0: 12 मीटर, यानी अगर इतना बारिश का पानी जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा।
1: जी जी तो बिमलेश जी, अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि चेन्नई, मुंबई और अन्य शहरों की अपेक्षा यहाँ बारिश कितनी होती है,
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि यहाँ पर 1200 मिलीमीटर की बात हम कर रहे हैं। तो आपने ठीक कहा, 12 मीटर यानी इतना पानी यदि जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा। हालांकि इतना पानी वहाँ जमीन पर लगातार जमा नहीं रहता,
0: जी
1: लेकिन जरा सोचिए बिमलेश जी, आसमान से हर साल करीब 12 मीटर यानी 39 कह लीजिए या तो 40 फीट पानी बरसता है।
0: आपने बड़ी अच्छी तरह से इसकी तुलना की है, अब समझ में आया कि कितना पानी वहां बरसता है। तो अब एक और मजेदार सवाल, वहां के लोग सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते होंगे, चाय या मौसम का हाल?
1: शायद दोनों ही, लेकिन उनके लिए बारिश कोई खास घटना नहीं है, ये तो उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है।
0: जी अब कुछ और मजेदार बातें जानते हैं अजीत जी, वहां अनाज का भंडारण और कपड़ों को सुखाना तो बहुत बड़ी समस्या होगी, वहां ये काम कैसे होते हैं?
1: विमलेश जी, बड़ा अच्छा और उपयोगी प्रश्न आपने पूछा। वहाँ कपड़ों को सुखाने के लिए पारंपरिक रूप से टिन या लोहे की पेटियां होती
0: जी
1: जिन्हें आग जलाकर गर्म रखा जाता है। भीगे कपड़े उन्हीं गर्म पेटियों में सूखते रहते हैं।
0: और अनाज का भंडारण वे धान के पुरालों या पुआलों में रखकर करते होंगे, ये उनके पारंपरिक तरीके हैं।
1: जी
0: तो जी जी अब बात करते हैं उनके घरों की। घरों को भी भारी बारिश को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। उस इलाके में बहुत से ऐसे घर मिल जाएंगे जो बांस के खम्भों पर टिके हुए हैं। वहां रास्तों पर पानी, फिसलन और कभी कभी भूस्खलन भी बहुत बड़ी चुनौती है। बता दें कि खासी जनजाति का मुख्य भोजन चावल है और जादू यहाँ का पारंपरिक व्यंजन है।
1: इंग्लिश जी, मन में एक सवाल और आता है कि वहाँ बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे?
0: अजीत जी ऐसा नहीं है कि वहाँ बारिश के कारण स्कूल बंद रहते हैं, भूस्खलन और तेज तूफानों के समय विशेष सावधानी बरती जाती है, लेकिन वहाँ बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं। दिल्ली और NCER शहरों में स्कूल जाते समय बच्चे सोचते हैं आज बारिश होगी तो क्या होगा, जबकि
1: मौसिन राम में बच्चे सोचते होंगे आज कितनी बारिश होगी। विमलेश, इतनी बारिश के बाद वहाँ की प्रकृति कैसी होगी?
0: अद्भुत, चारों तरफ हरियाली, पहाड़, झरने, धुंध और गुफाएं, मानो प्रकृति ने खुद को हरे रंग में रंग दिया हो। एक बात और, वहां लगातार होने वाली बारिश के कारण सामान्य पुल बहुत अधिक नहीं टिकते, इसलिए उस क्षेत्र और मेघालय राज्य में पेड़ों की जड़ों से भी पुल बनाए जाते हैं।
1: जी हाँ, इन्हें लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। यहाँ पेड़ों की जीवित जड़ों को वर्षों तक दिशा देकर मजबूत पुल का रूप दिया जाता है। ये पुल कभी नहीं टूटते।
0: जी
1: यानी विमलेश जी, सब कुछ सुनकर ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग प्रकृति को हराने की कोशिश नहीं करते।
0: जी बिल्कुल सही कहा अजीत जी, वे प्रकृति के साथ जीना सीखते हैं। तो अजीत जी, मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स का ये गांव मौसिन राम हमें क्या सिखाता है?
1: विमलेश जी, ये गांव हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मनुष्य उनके साथ तालमेल बनाकर जीवन को सुंदर बना सकता है।
0: जी अजीत जी, मेरे मन में एक खूबसूरत वाक्य आ रहा है।
1: भला वो क्या?
0: बारिश कितनी भी हो, जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
1: वाह क्या बात है, बारिश कितनी भी हो,
0: जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
1: जी जी ये बात है। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी भारत के एक और गांव मौसिन राम के बारे में। ये गांव तो है ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, हमारा प्रश्न है, मौसिन राम और मेघालय खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मौसिन राम और

0: मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
1: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
1: जी, पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT Books PDF टाइप करें।
0: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो YouTube पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएंगे।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सबसे पहला हमारा आज का कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में विस्तार से बताया गया है और विशेषकर इसके बनने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है।
1: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी।
4: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ, कैसी रही चौपाल?
3: ठीक रही नाना जी। आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है। नाना जी, इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
5: हाँ हाँ बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
4: बेटा, मैं भूगोल पढ़ाता था।
3: ये लो, नानी जी भी आ गई।
6: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
4: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
6: हाँ वो तो है।
5: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
6: अच्छा तो ये बात है, तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
4: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
5: कहाँ से आया है
4: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
5: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
4: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
5: पूरी दुनिया में नहीं होता तो फिर?
4: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
5: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
4: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है। ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
5: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
4: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
5: अच्छा नाना जी।
4: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
5: अच्छा।
4: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे

0: भारी वर्षा होती है।
1: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
2: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
3: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
2: हाँ,
3: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है।
1: ओ।
3: हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
2: बिल्कुल।
3: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
1: अच्छा।
3: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
1: अच्छी अर्थव्यवस्था।
3: हाँ।
2: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है, वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
1: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है।
1: ओ।
3: अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
2: भाई, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए?
1: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
4: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया।
6: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण जनजातीय कार्यकर्त्री तुलसी गौड़ा के जीवन और पर्यावरण संरक्षण में उनकी अहम भूमिका के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
7: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
8: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका,
9: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती।
10: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा।
7: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
11: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है।
0: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
12: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
0: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
13: आज नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियाँ जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता के मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है। क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर

0: उख जाते हैं।
1: अच्छा,
0: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ,
1: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
0: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
2: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
0: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
2: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
3: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
2: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
0: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
0: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
4: अच्छा।
0: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
4: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है। ठीक है ना?
4: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधे

0: भाषाओं के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
1: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
2: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया। हमें आशा है कि हमारे आज के कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आए होंगे और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
3: चेतना
2: जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम के 6:30 हुए हैं। अब वक्त है लोक संगीत के कार्यक्रम का आनंद लेने का। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम लोक संगीत में।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
2: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए अपने गोल्स तक पहुंचिए मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड मेक लाइफ इजी टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। शाम के 6:45 हुए हैं और अब समय हुआ है भक्ति संगीत के कार्यक्रम संध्या वंदन की ओर चलने का। तो चलते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम संध्या वंदन।

0: कि आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं, कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को

0: हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संध्या वंदन। शाम के 7 बजने वाले हैं और अब सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार अभी तक 30 से अधिक देशों के 1300 से अधिक नागरिक लापता हैं। इनमें 288 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। प्रवक्ता ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है। चीन में फंसे भारतीय नागरिकों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि पेचिंग में भारतीय दूतावास उनकी सुरक्षित निकासी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के साथ देश का संबंध सदैव राष्ट्रहित के अनुरूप होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में आज भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में राष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने राजनयिकों से विदेश निवेश, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर नजर रखने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी श्रृंखला के युद्धक

0: इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
1: सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मुकाबला ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन पर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शहडोल का प्रसारण। शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
6: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब जीएसटी भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

शाम के 7:10 होने वाले हैं। संदेशों के बाद अब वक्त है प्रादेशिक समाचारों का। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी भोपाल से।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से संवाद, खेलों को विकसित भारत की ताकत बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में T-72 और T-90 टैंकों के ओवरहॉल की नई सुविधा का भूमि पूजन किया। ओंकारेश्वर में पंचायतन मंदिर का शिलान्यास, एकात्म धाम बनेगा आध्यात्मिक केंद्र। और भारत ने श्रीलंका से टेस्ट सीरीज 1-0 से जीती, दूसरा टेस्ट हुआ ड्रॉ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के जरिए देश भर के युवाओं से वर्चुअली संवाद किया। उन्होंने महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं बल्कि विकसित भारत की ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को ओलंपिक के ज्यादा से ज्यादा खेलों में भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है और जिलों से नई खेल प्रतिभाएं तलाशनी होंगी।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: वहीं इस मौके पर प्रदेश के 110 से ज्यादा महाविद्यालयों में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भोपाल में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेलों को सिर्फ पदक जीतने तक सीमित नहीं रखा जा रहा है बल्कि इसे युवा सशक्तिकरण और विकसित भारत 2047 से भी जोड़ा जा रहा है। वहीं इस अवसर पर मंडला, रायसेन, छतरपुर, बालाघाट, मुरैना, दतिया, छिंदवाड़ा, अशोकनगर, बड़वानी और देवास सहित प्रदेश के सभी जिलों में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय स्तर पर युवा खिलाड़ियों ने आकाशवाणी के साथ देश और प्रदेश के बदलते खेल परिदृश्य पर अपने अनुभव साझा किए। जबलपुर में आज T-72 और T-90 टैंकों के ओवरहॉल की नई सुविधा का भूमि पूजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में करीब 472 करोड़ रुपए की इस परियोजना की शुरुआत की। यहां हर साल 80 टैंकों की जांच, बड़ी मरम्मत और तकनीकी अपग्रेड किया जा सकेगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से देश के रक्षा उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में करीब 46,000 करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन अब बढ़कर 1,80,000 करोड़

0: और रक्षा निर्यात 1000 करोड़ से बढ़कर करीब 39000 करोड़ का हो गया है। उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी भारत की बढ़ती तकनीकी और औद्योगिक क्षमता को दिखाती है।
1: डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की मजबूत नींव रख रहा है। इन सब अचीवमेंट्स के लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। यह प्रोजेक्ट हमारे उन सैनिकों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी जो इन टैंक के सहारे दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर देते। और सबसे बड़ी बात यह यह प्रोजेक्ट जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय लोग, हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे नौजवान, हमारे छोटे उद्यमी के जीवन में
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 29 अगस्त को बालाघाट में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान में शामिल होंगे। रक्षाबंधन के अवकाश के कारण इस बार शनिवार को पूरे प्रदेश में जनविश्वास अभियान आयोजित किया जाएगा। बालाघाट में मुख्यमंत्री जिला स्तरीय समाधान ऑनलाइन में चिन्हित शिकायतकर्ताओं से सीधे उनकी समस्याएं सुनेंगे। इसके साथ ही बैठक और समीक्षा के अलावा मीडिया संवाद तथा उद्योग संवाद भी होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ओंकारेश्वर के एकात्म धाम में भव्य पंचायतन मंदिर का शिलान्यास किया। उन्होंने संतों के साथ 45 पवित्र शिलाओं का पूजन कर मंदिर निर्माण की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि एकात्म धाम सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान, आध्यात्मिकता और संस्कृति का बड़ा केंद्र बनेगा।
3: एकात्म धाम में आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा जो पंचायतन पूजा पद्धति जिसके कारण से हमारे समाज की विविधता की व्यवस्था थी, उसमें एक ऐसे कठिन काल में, ये वाकई वो कठिन काल की उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम पूरे समुचे भारत की विविधता के बीच एकता का संदेश पंचायत पूजा पद्धति के माध्यम से जो हमने दिया है, हम सबका सौभाग्य है आज इस मानधाता पर्वत के ऊपर जब ये दिव्य धाम का आनंद आएगा।
0: रीवा जिले में भारी बारिश और नदियों के उफान के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल लगातार बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर हालात का जायजा ले रहे हैं। कल उन्होंने लक्ष्मणपुर, मैरहा टोला, लोही भटलो और कोठी सहित आसपास के गांवों में लोगों से मुलाकात कर नुकसान की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में सरकार लोगों के साथ खड़ी हुई है। उज्जैन में रक्षाबंधन का पर्व श्री महाकालेश्वर मंदिर में विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जाएगा। श्रावण पूर्णिमा पर सबसे पहले भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी अर्पित की जाएगी। पुजारी परिवार की महिलाएं करीब 1 सप्ताह से रेशमी कपड़े, रुद्राक्ष, मोरपंख और आभूषणों से यह राखी तैयार कर रही हैं। कल तड़के भस्म आरती के दौरान राखी चढ़ाई जाएगी। इसके बाद महिलाएं अपना व्रत खोलकर भाइयों को राखी बांधेंगी। वहीं रक्षाबंधन के पर्व पर अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने महिलाओं के लिए 48 घंटे मुफ्त इंटरसिटी बस यात्रा की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा आज सुबह 6 बजे से 29 अगस्त सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। इसके तहत इंदौर से भोपाल, सागर, रतलाम, नीमच, अशोकनगर, झाबुआ और खरगोन जाने वाली बसों में महिलाएं मुफ्त सफर कर सकेंगी। इसके अलावा भोपाल से उज्जैन और गुना के बीच चलने वाली AICTSL बसों में भी यह सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी ने वर्ष 2026-27 के लिए उर्दू पांडुलिपियों के प्रकाशन और आर्थिक सहायता के लिए आवेदन पत्र मांगे हैं। प्रदेश के साहित्यकार और शायर अपनी उर्दू पांडुलिपियां 25 सितंबर तक भोपाल स्थित उर्दू अकादमी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके लिए पांडुलिपि के साथ प्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र देना भी जरूरी है। वहीं नशे पर प्रहार करते हुए प्रदेश पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पिछले 1 सप्ताह में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग अलग जिलों में MD ड्रग्स, डोडा चूरा, गांजा, स्मैक और चरस समेत करीब 5,31,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त की है। रतलाम में करीब 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति और बड़ी मात्रा में MD ड्रग्स, वहीं छिंदवाड़ा में 320 किलो से ज्यादा गांजा, पिस्टल और कारतूस समेत करीब 1,10,00,000 की संपत्ति जब्त की गई है। वहीं नीमच, उज्जैन, जबलपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर और ग्वालियर समेत कई जिलों में भी नशे के खिलाफ कई कार्रवाइयां की गई हैं। अब बात करते हैं क्रिकेट की। श्रीलंका ने फॉलो ऑन खेलने के बाद भी भारत के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ करा लिया है। इसके साथ ही भारत ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से जीत ली। भारत ने गोल में पहला टेस्ट 165 रनों से जीता था। कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका के सोनल दिनुषा ने दोनों पारियों में शतक लगाकर शानदार प्रदर्शन किया और टेस्ट को ड्रॉ करा लिया। उनके शतक की बदौलत श्रीलंका ने दूसरी पारी में 9 विकेट पर 400

29 रन बनाए। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी हिस्से के 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है, जबकि 29 और 30 अगस्त को राहत मिलने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में दुर्घटनाओं और यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए 25 अगस्त से 25 सितंबर तक भारी और भारवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर जिला स्तरीय एक राखी एक संकल्प एक राखी एक रिश्ता कार्यक्रम का आयोजन गुना में किया गया। वहीं रतलाम में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप को रक्षा सूत्र बांधा। टीकमगढ़ में लगातार बारिश के कारण कलेक्टर ने हीरानगर बावरी पुल सहित जल भराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा के निर्देश दिए और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में आयोजित संस्कृत सप्ताह का आज समापन हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शहडोल केंद्र का प्रसारण। अब सुनते हैं कुछ संदेश।
1: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
2: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर

0: 1800-420-2233.
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों

0: के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
2: सखी सहेली
1: बॉम्बे टॉकीज और
3: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें आपको, याद सब है जरा जरा।
4: मुझे याद सब है जरा जरा।
5: और आपके ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। कार्यक्रम किसानवाणी के लिए श्रोताओं आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी भोपाल से।
6: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। किसान साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसानवाणी।
7: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसानवाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुने वाले सभी किसान भैया बहनों को सभी श्रोताओं को मनोज भैया की दो ही हाथ जोड़े की राम राम पहुंच जाए और भैया का कैसे हाल चाल है सावन को महीना चल रहा है कहीं तेज तो कहीं झमाझम बरसात हो रही है मनो खेती को काम कहाँ रुकत है मौसम कैसो ही होए हालात कैसे ही होए किसानी के काम कहाँ रुके हैं यही मारे तो कहते हैं बड़ी बज्जुर है छाती किसान की खबर नहीं रहे जान की भैया हरो मनो आजकल सरकार ने इतनी अच्छी सुविधाएं इतनी अच्छी योजनाएं दे दी हैं कि किसानी अब आसान हो गई है और फायदे की भी हो गई है भैया हरो अगर साचो कहें तो किसानी केवल अनाज उत्पादन तक नहीं है आज बदलते टाइम के साथ साथ खेती के नए नए आयाम सामने आ गए हैं सब्जी फल फूल मसाले औषधि और सुगंधित पौधा उद्यानिकी की जिस सबरी फसलें कम क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पैदावार और आय दे सकत हैं और हाँ इतो ही नहीं इन फसलों से जुड़ी और भी गतिविधियां हैं जो खेती से आगे बढ़ के हमें प्रसंस्करण पैकेजिंग भंडारण वितरण और मूल्य संवर्धन तक रोजगार और स्वरोजगार के कई रास्ता खोल देते हैं तो चलो आज हम आपको एक ऐसी बातचीत सुनवा रहे हैं जिसको सुन के आप जान पे हो कि उद्यानिकी फसलों से किसानों और शिक्षित बेरोजगारों के लाने स्वरोजगार के अवसर कैसे मिल सकते हैं जो बतकाव करो है उद्यानिकी विभाग भोपाल के अधिकारियों और लाभार्थियों से अंशु तिलेठे बहन ने सुना थे
3: नमस्कार किसान भाइयों आज हम उद्यानिकी विषय पर और सरकार द्वारा संचालित कौन कौन सी योजनाएं हैं इस विषय में विस्तृत बातचीत करने के लिए आए हैं उद्यानिकी विभाग भोपाल जिसमें हमने बात करी है सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग श्री राजकुमार सगर जी से हम जानना चाहेंगे सर सबसे पहले आपसे कि शिक्षित बेरोजगार और किसानों के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं
4: नमस्कार किसान भाइयों विभाग द्वारा शिक्षित बेरोजगार एवं किसानों के लिए

0: योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें मुख्यतः किसानों के लिए जो योजनाएं हैं वो क्षेत्र विस्तार की रहती हैं, जिसमें किसानों को फल बगीचा लगाना, सब्जियों की खेती करना, फूलों की खेती है, मसाले की खेती है, सुगंधित फूलों की खेती है, इस तरह की स्कीमों पर विभाग खेती करने पर अनुदान प्रदान करते हैं, साथ ही बीज, खाद, दवाई एवं तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद बात आती है संरक्षित खेती की, तो संरक्षित खेती जिसमें पॉली हाउस, सैडनेट हाउस, ड्रिप मल्चिंग आती हैं, इसमें कम जगह में वर्टिकली खेती करके ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। और शिक्षित बेरोजगार किसान के व्यक्ति हो सकता है जिसको जमीन की जरूरत नहीं है, उसमें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना है, जिसमें ऐसे पढ़े लिखे बेरोजगार हैं जो अपना स्वयं का कोई बिजनेस करना चाहते हैं
1: जी।
0: उसमें लिमिट है 30 लाख रुपए तक का मशीन उसमें लगा सकते हैं और 35% अनुदान, अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। इसमें आवश्यकता यह है कि फूड प्रोसेसिंग का ही काम करना होगा, अनाज से संबंधित हो, मसाले से संबंधित हो, फूलों से संबंधित हो या सब्जियों का हो, सब्जियों का है आपका, फलों का है, जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, उसमें शासन इसमें अनुदान, साथ ही बैंक लोन में 3% तक का सब्सिडी भी उपलब्ध करवाती है। और एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है, हर साल जिस उसमें आप लॉगिन करके आप देख सकते हैं कि आप किस योजना में पात्र हैं, उस योजना में केवल आपको योजना ही जोड़नी होगी, आपको दोबारा पंजीयन इसमें नहीं करना होगा और आपको ऑनलाइन ही आपको आशय पत्र, ऑनलाइन ही सब्सिडी इसमें उपलब्ध हो जाएगी।
1: इसके लिए सर जैसा आपने बताया कि क्या हमारे किसान भाई या शिक्षित बेरोजगार स्वयं का अपना व्यवसाय दुकानों के रूप में या किस तरह से संचालित कर सकते हैं?
0: जो मैंने पीएमएफएमई योजना के बारे में बताया, ये स्कीम बहुत अच्छी है भारत सरकार की, जो पिछले 5 सालों से संचालित है। पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए एक अच्छी सुविधा है कि आपको किसी सीए से इसकी रिपोर्ट नहीं बनवानी है, विभाग ने डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन की व्यवस्था करी है जो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेगा, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपके फोटो हो गए, आपकी डिटेल, जमीन जहाँ पे आप दुकान करना चाहते हैं, आपके सारे कोटेशन वगैरह लेगा और उसकी एक डीपीआर तैयार करके ऑनलाइन ही प्रोसेस करेगा और बैंक के लिए भी आपसे बात करेगा, बैंक में भी आपको सहयोग करेगा और साथ ही मशीन लगाने में भी सहयोग करेगा। और बाद में जो आपको अन्य पंजीयन की जरूरत होती है, जिस तरह से FSSAI का रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपको फूड लाइसेंस लेना है, साथ में आपको जो भी इनकम टैक्स वगैरह के लिए जो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने होते हैं वो भी करवाएंगे। और इसके एवज में संबंधित आवेदनकर्ता को इसमें कोई राशि नहीं देनी है, शासन उनको उसमें मदद करेगा, पैसा देगा।
1: संरक्षित खेती के विषय में आपने जिक्र किया, तो इसके अंतर्गत मल्चिंग, नेट हाउस और पॉली हाउस
0: जी,
1: इसका थोड़ा विस्तार से हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए।
0: संरक्षित खेती आज के समय की मांग है, क्योंकि कम जगह में अधिक उत्पादन और बेमौसम समय अधिक अच्छा उत्पादन के लिए संरक्षित खेती बहुत अच्छा है। एक सबसे पहले होता है संरक्षित खेती में ड्रिप और मल्चिंग
1: जी।
0: मल्चिंग में 20,000 रुपए तक का अनुदान देते हैं इसमें। तो नेट हाउस क्या होता है कि नेट का एक स्ट्रक्चर होता है जो आयरन के जो पाइप होते हैं उनसे बना होता है, जो इसमें क्या होता है प्रति वर्ग मीटर 710 रुपए की इसमें लागत है, जिसका 50% 355 रुपए पर प्रति वर्ग मीटर का अनुदान होता है। इसके बाद आता है पॉली हाउस। पॉली हाउस पूर्णतः कंट्रोल कंडीशन में किया जाता है, खेती करने के लिए लगाया जाता है। इसमें जो हमारा छोटे किसानों के लिए है वो 1,000 रुपये वर्ग मीटर लागत का 50% है, और जो बड़े हैं जो मतलब 4,000 वर्ग मीटर का लगा रहे हैं वो 950 रुपये यानी 475 रुपये पर वर्ग मीटर के हिसाब से इनमें अनुदान रहता है। जो पॉली हाउस है उसमें मुख्यतः ऐसी फसलें लगाई जाती हैं जो एक लब्बा लगाने पर 4 से 5 साल तक चलती हैं, जैसे जरबेरा हो गया, गुलाब हो गया, इस तरह की खेती इसमें करते हैं। इसमें स्ट्रक्चर के बाद हम सब्जियां लगाने के लिए और फूल लगाने के लिए भी इसमें अनुदान देते हैं, उसमें 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसमें 50% अनुदान है, और जो फूलों की खेती करते हैं उसको 450 रुपये प्रति वर्ग मीटर और उसका 50% तक का अनुदान होता है। ये अनुदान मिलाकर

0: लगभग अगर पॉली हाउस में जोड़े तो 4000 पे 20 लाख तक का अनुदान है, और आपका सब फूलों में जोड़े तो इसमें 10 से 12 लाख रुपए तक अनुदान है।
1: जी सर, अभी हम देखते हैं कि बेमौसम हमें सारी सब्जियां उपलब्ध होती है बाजार में, तो निश्चित ही हमें इसका स्टोरेज करना पड़ता है, तो इस दिशा में आप हमारे किसान भाइयों को और हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: दो तरीके हैं, एक तो इसमें शासन दो तरीके करता है, एक तो आप जो फसल आप तोड़े
1: जी,
0: तोड़ने के बाद उसको उसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा बढ़े इसके लिए हम पैक हाउस का निर्माण के लिए शासन अनुदान देता है। इसमें पैक हाउस का उद्देश्य ये है कि ये आप जो फसल किसान तोड़ेगा उसको तत्काल नॉर्मल टेम्परेचर पर लाके उसको रखेगा तो उसको जो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी वो ज्यादा देर तक रह पाएगा आपका फ्रेश। और उसके बाद उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमारे पास रेफ्रिजरेटर वैन है, तो उसमें भी 35% तक का अनुदान है, और उसके बाद कोल्ड स्टोरेज है उसमें 35% तक का अनुदान है। इसके बाद जो आप प्राकृतिक तरीके से उसको पकाने की बात कर रहे थे, तो उसमें एक राइपनिंग चैम्बर करके जिसमें क्या होता है कि इथिलीन गैस का उपयोग करके जो प्राकृतिक रूप से फसलों को फलों को पकाने का काम करते हैं उसमें अनुदान का इसमें दिया जाता है। तो जो व्यापारी भाई हैं जो मंडियों के पास इनके पास जमीनें हैं या बाजार में जमीन है तो वो कोल्ड स्टोरेज और राइपनिंग चैम्बर का काम इसमें कर सकते हैं और अच्छी आय कमा सकते हैं।
2: अभी हमने सुना सहायक संचालक श्री राजकुमार सगर जी को।
1: उद्यानिकी फसलों से किसानों एवं शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार के अवसर, इस विषय पर हमने उद्यान विकास अधिकारी LC भकोरिया जी से बातचीत की, जिसके अंश हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो हमारा आपसे यही है कि हमारे किसान भाई जो पारंपरिक खेती करते हैं उनको उद्यानिकी विभाग क्या सहयोग करता है?
3: पारंपरिक खेती के साथ साथ यदि आप उद्यान की फसलें लगाते हैं तो अपनी आय को दोगुना नहीं चार गुना कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये मौसम बरसात का है, आप हमारे विभाग से ऑनलाइन पंजीयन के माध्यम से आपको सबसे पहले उद्यान विभाग की योजना का लाभ लेना है तो आपको पहले पंजीयन करना होगा MPF STS पर। आप पंजीयन करने के पश्चात उद्यान विभाग से जो फल क्षेत्र विस्तार योजना है उस योजना से पंजीयन को जोड़ना पड़ेगा। जब आप उसको जोड़ देंगे तो हमारे विभाग से एक आपको आश्रय पत्र जारी होगा। उस आश्रय पत्र जारी होने के पश्चात यदि किसान भाई अमरूद का बगीचा लगाता है और स्वयं के वे पर लगाता है तो किसान भाई एक हेक्टर में 555 अमरूद के पौधे लगाएंगे, और लगाने के पश्चात विभाग से उनको जो सहायता राशि मिलेगी उसके लिए किसान को 95% पौधे जिंदा रखना होगा। तो विभाग 1,80,000 रुपए 2 वर्षों में हम किसान भाई को उसकी सहायता राशि देंगे। इस प्रकार का बगीचा लगा के अपनी उद्यान की फसलों के अंतर्गत जो जगह खाली होती है उस खाली जगह में अंतर्वर्षीय फसल जैसे सब्जी
1: जी,
3: फूलों की खेती
1: जी,
3: इस प्रकार की खेती लगाकर हमारा किसान डेली पैसा कमाकर आत्मनिर्भर बनेगा।
1: सर, जैसे आपने कहा कि बगीचा लगाए हमारे किसान भाई, तो सर एक समस्या किसान भाइयों को देखने को मिलती है कि अपन ने फल का बगीचा लगाया मान लीजिए तो फिर उसका उपज फल हमको 1-2 साल बाद प्राप्त होगा, है ना, जो जिसकी सीमा होगी
3: जी,
1: तो उस बीच हमारा किसान भाई क्या करे?
3: बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैडम आपने कि हमारा किसान भाई यदि बगीचा लगा लेता है जो बीच की जो जगह बचती है, तो मैंने आपको बताया है कि विभाग की तरफ से योजना है हमारे यहाँ सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना भी है और पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना है। हमारे किसान भाई यदि बगीचा लगाता है खाली जगह में उसको हम बोलते हैं अंतर्वर्षीय फसल। सब्जी क्षेत्र विस्तार में सब्जी लगा सकते हैं, फूलों पे आए तो हमारा किसान भाई गेंदा लगा सकता है। इस प्रकार की फसल लगा के हमारा किसान भाई डेली पैसा कमा के आत्मनिर्भर बनेगा और अपनी आय को दोगुना नहीं चार गुना करेगा। इसके पश्चात 2 साल बाद हमारे किसान भाई की जो फसल आएगी उससे वो अच्छी आय प्राप्त कर सकता है। हमारे किसान भाई यदि अमरूद का बगीचा लगा के फसल जो आती है जब उसको अच्छा पैसा मिले तो मार्केट में हम उसको बेच सकते हैं, और जब अमरूद का रेट कम होगा तो हमारा किसान भाई खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाकर उस पर भी हमारे किसान भाइयों को सहायता राशि है। इस खाद्य प्रसंस्करण यूनिट पर उनको जैसे लोन वगैरह लेता है बैंक से तो हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन विभाग से नियुक्त किए गए हैं, वह उनकी DPR बनाएंगे।

0: कौन कौन सी मशीन उसमें लेंगी वो भी हम उसको प्रोवाइड कराएंगे और उनका एक खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाएंगे। उस पर 35% अनुदान है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से उनको 3% ब्याज दर में छूट भी है। इस प्रकार किसान भाई को इसमें 10% अपनी मार्जिन मनी लगाना होगी और पीएमएफई योजना पर किसान भाइयों को 3% ब्याज दर में छूट भी है। हमारा किसान भाई यदि इस प्रकार का खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाकर, जैसे अमरूद के बारे में बात बताई है मैंने, तो जब अमरूद हमारा सस्ता होता है तो मार्केट से अमरूद को खरीद लेंगे, जो 1-2 रुपए किलो बिकता है, 3 रुपए किलो बिकता है, उससे हम क्या करें किसान भाई, जैम है, जूस है, जेली है, इस प्रकार के प्रोडक्ट बना के हम उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं और एक समय है उसको रख के मार्केट में उसको बेच के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस प्रकार से हमारा किसान भाई उद्यमी बनेगा, इस प्रकार की योजना का लाभ हमारा किसान भाई लेके आत्मनिर्भर हो सके।
1: उद्यान की विभाग द्वारा बरसात के मौसम में पेड़ पौधों को क्या सहायता राशि दी जाती है?
0: हमारे किसान भाई ने जो बगीचा लगाया, बगीचा लगाने के पश्चात यदि विभाग से हमारा किसान भाई पौधे लेगा तो किसान भाई उस पौधे की अनुरक्षण राशि जो होती है, अनुरक्षण राशि हमारे किसान भाई को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में दी जाएगी। और यदि किसान भाई विभाग से पौधे लेंगे कि अपने खेत में लगाते हैं, यदि हमारा किसान भाई 95% पौधे जीवित रखते हैं तो उनके लिए जो सहायता राशि है 2 किस्तों में 2 ईयर में उनको दी जाती है 1,80,000 रुपए। तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरा 1 एकड़ में आप पॉली हाउस लगाइए, आप 1/2 एकड़ में पॉली हाउस लगाइए, इसकी जो इकाई लागत है वो है 1,000 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर। इसका 50% अनुदान हम किसान भाइयों को देते हैं और साथ में प्लांटिंग मटेरियल का भी अनुदान किसान भाइयों को देते हैं। तो किसान भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है खेती का परिवर्तन का, तो हमारे किसान भाइयों को अब हाईटेक संरक्षित खेती पे जाना होगा, अपनी आय को 2 गुना नहीं 4 गुना करें, आत्मनिर्भर बने और अपने सपनों को पूरा करें। धन्यवाद।
1: अभी हमने विकास खंड अधिकारी भकोरिया जी को सुना।
2: क्या बात है भैया, इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हमने आज जब बातचीत में सुनी है और हम सोच रहे हैं कि जो हितग्राही जनों से हमारी अंशु बहन ने बात करी है वह हम आपको थोड़ी देर बाद सुने हैं। पहले एक गीत सुन लेते हैं, थोड़ा मनोरंजन भी तो हो जाए। भैया बुंदेलखंड में सावन के महीना में ढेर सारे गीत गाए जाते हैं, जैसे कजरी, सेहरा, झूला, इतने सब गीतों के बीच में एक गीत और बुंदेलखंड में गाओ जात है, वो खास सावन के महीना में गाओ जात है, बुंदेलखंड की वीर भूमि के वीरों की गाथा आल्हा, है ना। आज हम आपके लाने एक आल्हा सुनवा रहे हैं, गाओ है हरचरण सिंह नरवरिया और साथियों ने, आनंद लेते हैं।

0: भैया अब आपने हरचरण सिंह नरवरिया और साथियों के सुरों में आपने जो आला गीत सुनो, अब हम आपके लाने फिर ले चलत हैं भाई। जहां हम बात कर रहे थे उद्यानिकी फसलों से किसानों एवं शिक्षित बेरोजगारों के लाने स्वरोजगार के अवसर कैसे मिल सकत हैं, उद्यानिकी विभाग की योजनाओं को लाभ लेवे वाले कछु हितग्राहियों से अंशु बहन ने बात करी है, थी बाबी सुनत हैं।
1: और हम अब चलते हैं योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की तरफ। और सबसे पहले हमने बात की पॉली हाउस में पालक का उत्पादन कर रहे श्याम सिंह कुशवाहा जी से। आइए सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी।
2: सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं 2015 से उद्यानिकी के साथ मिलकर अपने खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 2.5 एकड़ में अमरूद का बगीचा लगाया, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ मैंने 2016 में 4000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस बनाया, जिसमें लागत 33,76,000 रुपए आई। अनुदान राशि उद्यानिकी विभाग के द्वारा 16,88,000 रुपए हमें प्राप्त हुए। मैंने सबसे पहले शिमला मिर्च लगाई, उसमें भी अच्छा मुनाफा हुआ। लेकिन मैंने बाजार की मांग को देखते हुए हमने पालक जो अच्छा मुनाफा प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ मैंने 2016 में 4000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस बनाया, जिसमें लागत 33,76,000 रुपए आई। अनुदान राशि उद्यानिकी विभाग के द्वारा 16,88,000 रुपए हमें प्राप्त हुए। मैंने सबसे पहले शिमला मिर्च लगाई, उसमें भी अच्छा मुनाफा हुआ। लेकिन मैंने बाजार की मांग को देखते हुए हमने पालक लगाना शुरू किया, जो कि बहुत लाभदायक फसल एवं बिना मौसम में अच्छे रेट में कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने वाली फसल है पालक। मैं करीबन 8 से 9 साल से पालक की खेती कर रहा हूँ पॉली हाउस के अंदर, जिसमें कि बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है। और मैं इसी के साथ सभी किसान भाइयों से, युवा किसानों से खास तौर से कहना चाहता हूँ कि अपनी खेती का तरीका, तकनीक चेंज करें, परिवर्तन करें और खेती को लाभ का धंधा बनाएं। उद्यानिकी के साथ जुड़कर कम जगह में 1 एकड़ में 10 एकड़ के लगभग 10 एकड़ से मुनाफा मिलेगा आपको। और 1 एकड़ पॉली हाउस से या उद्यानिकी से आपको ड्रिप मल्चिंग में काम करके, जिसमें की लागत कम हो जाती है, मजदूरी कम लगती है और मुनाफा बढ़ जाता है। और इसके साथ हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए हम इसमें प्राकृतिक खेती के अंतर्गत हम जीवामृत, नीम का 10 पत्ती काढ़ा और वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर उसका उपयोग हम खेती में करते हैं, जिससे कि लागत कम हो जाती है और आमदनी बढ़ जाती है। जो हमारे युवा किसान गांव छोड़कर शहरों में रोजगार के लिए जाते हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं अपने खेती को एक बिजनेस मॉडल की तरह काम करें, प्लानिंग के साथ काम करें और खेती से अच्छा मुनाफा प्राप्त करें। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय श्री राम।
1: अभी हमने श्याम सिंह कुशवाहा जी को सुना और उनकी सफलता की कहानी जानी। हम एक और हितग्राही किसान भाई से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का लाभ लेकर खुद को स्थापित किया। हमारे साथ हैं हेमंत कुशवाहा जी।
3: नमस्कार, मैं उद्यानिकी विभाग की योजना के तहत सब्सिडी का लाभ लेकर हमने जे नर्सरी प्लांट की शुरुआत की। हमारा उद्देश्य किसानों को अच्छी गुणवत्ता के सब्जी

0: के पौधे उपलब्ध कराने के साथ साथ पॉलीहाउस की खेती के लिए मार्गदर्शन करते हैं। हमने 20 बाई 20 के एरिया में 5000 पौधों की शुरुआत की। इसके बाद हमने 30 बाई 90 का स्ट्रक्चर तैयार किया जिसमें लगभग 1,00,000 पौधे तैयार किए। किसानों की मांग लगातार बढ़ती गई तो हमने पॉलीहाउस की ओर कदम बढ़ाया। उद्यानिकी विभाग की योजना के माध्यम से हमें सब्सिडी का लाभ मिला और धीरे धीरे हमने अपनी नर्सरी का विस्तार लगभग 2 एकड़ तक कर लिया। धन्यवाद
1: किसान भाइयों, ये थी हमारी आज की स्थल रिकॉर्डिंग जिसका विषय था उद्यानिकी फसलों से किसानों एवं शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार के अवसर। धन्यवाद।
2: क्या बात है भैया, मजा आ गयो। जिस सब किसान भैया जो है ना, इन सब ने उद्यानिकी विभाग की योजनाओं को अपनाओ और आज लाभान्वित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम को उद्देश्य भी जो ही है कि हम आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाएं जिन्हें अपना के आप बन सकते हैं एक सफल कृषक। भैया कार्यक्रम में हम अब आपके लाने जानकारी लेके आए हैं मंडी के भाव की। ये भाव हम आपका बता रहे हैं 25 अगस्त 2026 के, माने कल छुट्टी है थी, उससे पहले जब मंडी बंद भई तो वे भाव हम आपको लेके आए हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख मंडी इंदौर में गेहूं को अधिकतम भाव तो 3,140 रुपया प्रति क्विंटल, देसी चना को भाव तो 6,195 रुपया प्रति क्विंटल, डाला चना को भाव तो अधिकतम 9,000 रुपया प्रति क्विंटल, मक्का को अधिकतम भाव दर्ज भाव 2,572 रुपया प्रति क्विंटल, पीलो सोयाबीन को इंदौर मंडी में 6,130 रुपया प्रति क्विंटल अधिकतम भाव। वहीं उड़द की बात करें तो इंदौर मंडी में उड़द को अधिकतम भाव रहो 9,000 रुपया प्रति क्विंटल, मूंग बिकी 6,800 रुपया प्रति क्विंटल अधिकतम भाव से और मसूर को अधिकतम भाव 6,050 रुपया प्रति क्विंटल दर्ज करोगे। भैया मक्का उत्पादक किसानों के लाने एक अच्छी खबर है, एक अच्छा संकेत है कि मक्का को मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिनों में जो औसत भाव रहो है वो सर्वाधिक 2,132 रुपया प्रति क्विंटल मध्य प्रदेश को राज्य स्तर को भाव है, जिसमें न्यूनतम भाव 1,240 रुपया, अधिकतम 2,572 रुपया प्रति क्विंटल दर्ज भाव। जहां में खासियत बात जा है कि पिछले 7 दिनों में 11.11% यानी 213 रुपया ऊपर बढ़ के जो भाव दर्ज भाव है, यानी आवे वाले दिनों में मक्का के भाव में बढ़ोतरी की संभावना है। भैया अब बात मौसम की कर लेवे। विभिन्न क्षेत्रों में मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी करो गए है कि कहीं तेज तो कहीं मध्यम वर्षा हो सकत है। ऐसे में सबरे किसान भैया ध्यान दें, खेतों में जल भराव की स्थिति को रोकें, मतलब खेतों में जल निकास की नालियां जरूर बना दें। हां सोयाबीन उत्पादक किसान भाइयों को हम बता दें, सोयाबीन में पीला मोजेक की समस्या बहुत ज्यादा होत है, जा बीमारी फैलत है सफेद मक्खी से। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर के अनुसार सलाह दी गई है कि सोयाबीन में पीला मोजेक अगर दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में पीले रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ के खेत से बाहर कहीं मिट्टी में गड़ा देवे के फिर जला देवे और रासायनिक नियंत्रण के लाने थायोमेथोक्सिम 25WG दवा प्रति 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पे छिड़काव करें तो आप येलो मोजेक से अपनी फसल को बचा सकते हैं। भैया खेती किसानी काम ही ऐसा है कि जामे आपके लाने पूरी जुगत तो लगानी पड़ते, सही टाइम पे सही काम भी करने पड़ते। अगर सही टाइम पे हम खेती को काम करें तो हमें मुनाफा निश्चित मिलने हैं और बम्पर पैदावार भी मिलने हैं। यही लाजे तो कहते हैं खेती उत्तम काज है, ईसम और ना होए, खाबे खा सबको मिले, खेती की जो सोए। जय उम्मीद के साथ आपसे ले रहे हैं विदा, स्वीकार करो मनोज भैया की दो ही हाथ जोड़े की राम राम।
3: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: उतला बोल रहे
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए?
4: मतलब
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहा,
4: पर हम तो सब ही डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहा है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की

0: परंपरा है, परंपरागत खेती।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: किसान साथियों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए खेलो इंडिया संवाद, भारत की खेल क्षमता के प्रोत्साहन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं खेल विश्लेषक मलय नीरव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अर्जुन जे चौधरी।
3: मलय नीरव जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
4: धन्यवाद
3: मलय जी। हमारे जो आकाशवाणी में जो चर्चा सुनते हैं वो जानना चाहते हैं कि खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है, ये इनिशिएटिव क्या है और आज के युवा के साथ इसका क्या लिंकेज है।
4: देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया कार्यक्रम की घोषणा की, तब से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट थी कि उनका जो विजन था, उन्होंने देश के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, देश में खेलों के विकास के लिए जो सपना देखा और दिखाया, वो उसकी एक रचनात्मक भूमिका थी इस देश के निर्माण में, एक विकसित भारत के निर्माण में। क्योंकि इस देश में खेल संस्कृति का अभाव था। खेल संस्कृति के अभाव में ये देश खेलों में उस तरह का विकास नहीं कर पा रहा था जिस तरह का विकास हमने अन्य देशों में देखा जो कुछ दिनों पहले तक विकासशील देश थे और कुछ आज भी हैं, मगर खेलों में वो विकसित देशों के बराबरी पे आ गए हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जाए जिसमें हर गांव, हर कस्बे, हर शहर, हर जिले, हर राज्य के बच्चों का हम उनकी प्रतिभाओं को पहचान कर, उनकी प्रतिभाओं को तराश कर और फिर ये देखें कि उनमें से पदक प्राप्त करने वाला और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पहुंचने वाला बच्चा कौन सा हो सकता है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने की बात ही उन्होंने नहीं सोची, उन्होंने ये भी सोचा कि जो बच्चा खेलों में अपना ध्यान लगाता है, जो युवा खेलों को अपने जीवन यापन के लिए अपनाना चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दिनों बाद उसे भूखमरी की डर खेलों के मैदान से दूर ले जाए। तो इस तरह से उन्होंने खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया और आपको जानकर, हमारे पूरे देश को जानकर ये प्रसन्नता होती रही है कि खेलो इंडिया से निकले खिलाड़ी, मनु भाकर जैसे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतते रहे। और खेलो इंडिया का जो और भी उसके जो विभिन्न अंश और कह लीजिए कि एक नए आयाम के साथ खेलो इंडिया के विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए, जो समुद्र के किनारे होने वाले खेल थे या जो बर्फीली पहाड़ियों पर होने वाले खेल थे, जो विंटर खेलो इंडिया था उनको, बीच खेलो इंडिया, उन खेलों को जिस तरह का प्रोत्साहन मिला प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से, तो ऐसी जगहों पे जहां खेलों में रुचि लेने वालों को कोई पहचानता भी नहीं था, वहां से युवा शक्ति जो निकली, जो उदीयमान सितारे जगमगाए, उन जगमगाते सितारों को देखकर प्रधानमंत्री को ये लगा कि ये जुगनुओं की चमक नहीं है, ये तो चांदनी है और इस चांदनी को जैसे जैसे तराशा जाएगा ये और निखरेगी, जुगनुओं की तरह बिल्कुल झिलमिलाकर बुझ जाने वाली चीज नहीं है। उन्होंने इस बात को समझा, देखा, जाना और फिर ये भी जानने की कोशिश की कि किनको किस तरह से यहाँ खेलों के मैदान में लाकर बनाए रखा जाए। ऐसा ना हो कि आज खेलें, कल खेलें और परसों उसके बाद वो अपने दाल रोटी की चिंता और फिक्र में, अपने परिवार को पालने की फिक्र में खेल के मैदान को

छोड़कर चले जाएं, तो उन्हें एक तरह का आश्वासन मिला कि अगर आप खेल रहे हैं तो जो पुरानी कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, वो कहावत चरितार्थ अब नहीं हो सकती। अब वो गलत साबित हो चुकी है, क्योंकि आप अगर खेलोगे कूदोगे तो आपको

0: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: पैरा एथलीट्स ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है एशियन गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में, और जो एबल्ड एथलीट्स हैं उन्होंने भी अभी अपना जो है प्रदर्शन दिखाया, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर हम वेट लिफ्टर्स की बात करें। ये जो स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स हैं, एक्सेलेंस है एथलीट्स की, इसके साथ अर्थशास्त्र भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि खेलो इंडिया को लॉन्च करने के लिए, उसको होस्ट करने के लिए भी कई जो राज्य हैं वो चाहते हैं कि उनके यहाँ पे वेन्यू चुना जाए, उनको फंडिंग मिले सेंटर से, और एक तरीके से स्पोर्ट्स का विकास उनके राज्य तक पहुंचे।
2: जब एक खेल का आयोजन होता है तो अर्थव्यवस्था को एक नया बूस्ट मिलता है, उसको एक नई गति मिलती है, पर्यटन का विकास होता है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, सड़कों का विकास होता है, हवाई अड्डों का विकास होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, रोजगार के नए अवसर आते हैं। तो खेलों के साथ साथ इन सब के विकास से जो भारत की युवा शक्ति है, जो अभी आप देखें जनसंख्या के आधार पर तो भारत में युवाओं का जो बाहुल है, उसको रोजगार के अवसर दिलाने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इस भूमिका की बात आज डायलॉग में भी प्रधानमंत्री ने की है। उन्होंने कहा है कि भारत की युवा शक्ति को विकसित भारत का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए 2027 तक खेलों के माध्यम से उनको वहां पहुंचाया जाए जहां भारत विकास के चरम पर पहुंचे, विकास की पराकाष्ठा पर पहुंचे। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है, और जो उनका राष्ट्र के साथ आज संवाद हुआ है, डायलॉग जो हुआ है, जिसमें 1500 करीब शिक्षण संस्थानों ने और उनके छात्रों ने हिस्सा लिया, हर जिले के कम 2 संस्थान ऐसे थे जिन्होंने हिस्सा लिया, तो उसमें भी उन्होंने यही संवाद दिया है। उन्होंने संवाद दिया है कि प्रतियोगिता पदक जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्वस्थ प्रतियोगिता, हेल्दी कॉम्पिटिशन, क्योंकि इससे आपको तरह तरह प्रेरणाएं मिलती हैं, शिक्षा मिलती है। जब आप गिरते हैं तो आप उठना सीखते हैं, जब आप उठते हैं तो गिरने का भय आपके मन से निकलता है। इसी धरती पर बहुत, मैं कहता हूं दावे के साथ, कि 6-7 वर्ष पहले तक कोई नहीं कह सकता था कि एथलेटिक्स में, वो भी भाला फेंक में, जैवलिन थ्रो में, भारत को स्वर्ण पदक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ओलंपिक्स और विश्व स्तर पर मिलेगा, ये कोई नहीं कह सकता था। इसी तरह से मीराबाई चानू का एक ऐसा केस है जिसको प्रधानमंत्री ने पहचाना, जाना, उनके टैलेंट को देखा, और उनको स्वास्थ्य लाभ की जरूरत थी तो उन्होंने उनको सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान की, और प्रदान करने के साथ साथ अच्छे प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की। तो खिलाड़ियों के न्यूट्रिशन, उनके मनस्थिति जो उनकी होती है, उनको मनोवैज्ञानिक रूप से प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना, बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना, ये जो काम होते हैं, और भी हर तरह की चीजें, हर तरह की सुविधाएं जो उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो खेल में पदक लाकर कहें कि हम पदक विजेता हूं, वो इसलिए कि युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत वो बने, और युवाओं के लिए, उनके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त हो, उनको लगे कि ये भी एक चीज है जो करके हम अपने पोटेंशियल को, जो हमारी अभिप्सा है, जो हमारी चाहत है, उसको हम और विकसित कर सकते हैं, उसको हम एक अंजाम दे सकते हैं।
1: पले जी, युवा की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले ही की थी खेलो इंडिया के माध्यम से। आपके जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, एक तरीके से युवा को ही टारगेट किया जा रहा है, और आज उससे जुड़ा हुआ यूथ लीडरशिप की बात की जा रही है, और नशा मुक्त युवा मूवमेंट जैसी बातें भी की जा रही है, ताकि उनके साथ जो भी समस्याएं हो उसका एक हल निकाल सके। तो युवा हमेशा एक सेंट्रिक थीम रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी कार्यक्रम में।
2: युवाओं के सशक्तिकरण में खेलों की भूमिका, और खेलों से जुड़े जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, उन नैतिक मूल्यों की भूमिका को आज उन्होंने रेखांकित किया अपने संवाद में। वो इस तरह से कि जो आपने नशा मुक्ति की बात की, जब युवा को कोई ऐसा प्रयोजन उसके सामने रहेगा जिसमें उसका ध्यान लगातार लगा रहेगा और उसको अपने आगे के भविष्य की चिंता कम होगी, तो वो नशे जैसी चीजों से दूर रहेगा, क्योंकि उसको एक रचनात्मक भूमिका दी।

0: जा रही है देश के विकास में। तो इस रचनात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं के लिए एक संदेश भी उन्होंने दिया कि अगर आपको विफलता मिलती है, असफलता मिलती है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके लिए जो आगे का मार्ग है वो बंद हो गया हो। इसका अर्थ ये है कि अगर आप गिरे हैं तो आप उठेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और प्रतियोगिता की जो क्षमता है और प्रतियोगिता की जो आवश्यकता है देश के विकास में, युवाओं के विकास में, उस पर भी उन्होंने बल दिया। तो इस तरह से आज का संवाद सिर्फ खेलों या खेलो इंडिया से जुड़ा नहीं था। आज का संवाद देश में युवाओं के सशक्तिकरण, युवाओं की रचनात्मक भूमिका, युवाओं की जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में लगाने के लिए सही कदम कैसे उठाए जाएं, इन सब को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज का संबोधन किया है। और उन्होंने अपने साथ साथ ऐसे खिलाड़ियों को वहां रखा, मैरी कॉम जैसे खिलाड़ियों को, जिन्होंने छोटी जगह से निकलकर और स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विश्व चैंपियन बनकर दुनिया के सामने ये दिखाया कि आप चाहे कहीं से भी हों, छोटी से छोटी जगह से भी हों, अगर आप में प्रतिभा है और आपकी प्रतिभा को ठीक तरह से तराशा जाता है तो कोई भी पदक का मंच आपसे दूर नहीं रह सकता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने और उनकी प्रतिभा को निखारने की बात कही। आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा।
2: जब हम 2036 ओलंपिक्स की तैयारी की बात करते हैं तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें आज से ही वो खिलाड़ी तैयार करने हैं जो 2036 में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई और कम्पीट करेंगे। और इसलिए लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया। और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
1: खेलो इंडिया के संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी मेजर ध्यानचंद को सम्मान देके, और उन्होंने उदाहरण ये भी दिया कि अभी नेशनल स्पोर्ट्स डे आने वाला है 29 अगस्त में, एक भेंट दिया। नेशनल स्पोर्ट्स डे का महत्व क्या है?
0: हमारे यहाँ खेलों की जो परंपरा रही है, जिस परंपरा में जीत हॉकी जैसे खेलों में हमें बहुत आसानी से मिलती रही है, उस परंपरा में जो बीच में एक थोड़े दिनों के लिए एक कमी आ गई थी, वो परंपरा फल फूल नहीं पा रही थी, उसको पुनर्जीवित करने के लिए, और हॉकी के साथ साथ अन्य खेलों की भी बात प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि आज 13 खेलों में हमने हिस्सा लिया राष्ट्रमंडल खेलों में, और ऐसे कई खेल हैं जिसमें हमारे खिलाड़ी न खेलते हैं न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। तो वैसे में हम परंपरागत खेलों के अलावा जो आधुनिक खेल हैं उनमें भी अगर हम हिस्सा लें तो मेजर ध्यानचंद जैसा हॉकी का खिलाड़ी हमने जब दिया, नीरज चोपड़ा जैसा एथलीट जब हमने दिया, तो अभी हमारे पास और भी ऐसे टैलेंट हैं जिनको हम उन खेलों में नेटबॉल, हैंडबॉल, रोइंग और स्कीइंग, इन जैसे खेलों में भी हम अच्छा कर सकते हैं। तो मेजर ध्यानचंद का एक प्रतीकात्मक महत्व है कि एक छोटी जगह से निकला हुआ एक आदमी जिसके पास ढंग के जूते, ढंग के कपड़े भी ना हो, हॉकी खेलने के लिए जो जरूरत की चीजें हैं वो भी ना हो, और वो आज भी आप देखेंगे छोटा नागपुर चले जाइए जहां से बच्चे निकलते हैं हॉकी खेलने वाले, और एक पेड़ की छोटी सी डाली को तोड़कर हॉकी स्टिक बनाकर जो ड्रिबलिंग करते हैं, तो देखकर ऐसा लगता है कि कितनी प्रतिभाएं हमारे यहाँ छिपी हुई हैं, और उन्हीं प्रतिभाओं को 5 वर्ष से 15 वर्ष की उम्र वाले प्रतिभाओं को पहचान कर सामने लाने की बात प्रधानमंत्री ने की है। तो मेजर ध्यानचंद जैसे लोग प्रेरणा के स्रोत ही नहीं है, एक प्रतीकात्मक उनका अपना मूल्य है, एक उनकी अपनी जगह है लोगों के दिमाग में उसको बिठाने के लिए, जो लोग भूल चुके हैं आखिर क्यों उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, आखिर क्या कहा था हिटलर ने उनसे। इन सब बातों की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि भारतीय खेल इतिहास के जो स्वर्णिम पन्ने थे उन पन्नों में कुछ और नए पन्ने जोड़ने की जरूरत है, और बीच में जो खाली रह गए अध्याय उन अध्यायों को भूल कर अब आगे के अध्याय में जितने स्वर्णिम पन्ने हम और जोड़ पाएंगे भारत में खेलों का विकास उतना ही होगा, और यही प्रधानमंत्री का संदेश है जो हर युवा को

0: एक नई शक्ति प्रदान करता है।
1: मलय नीरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खेल और खेल के विकास को लेकर विस्तार में चर्चा की, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे खेलो इंडिया संवाद, भारत की खेल क्षमता के प्रोत्साहन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे खेल विश्लेषक मलय नीरव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अर्जुन जे चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में। ये
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती चित्रलोक कार्यक्रम। आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

चांदनी, इस फिल्म में आपने सुना आशा भोसले और विनोद राठौड़ की आवाजें, आनंद बख्शी के बोलों को सुर में ढाला शिव हरी ने, शंकर महादेवन की आवाज गुलजार के बोल शंकर एहसान लॉय का संगीत, फिल्म झूम बराबर झूम।

यह आवाज थी अरिजीत सिंह की, संजय लीला भंसाली का संगीत था, एम तुरस का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे, फिल्म थी पद्मावत। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: विजू शाह का संगीत था, आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना, उदित नारायण अलखयानी की आवाजों में फिल्म मोहरा से।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं चित्रलोक।

धुरंधर द रिवेंज। इस फिल्म का गीत आपने सुना जैस्मिन सैंडलर्स और सतेंद्र सरताज की आवाज़ें थी। सतेंद्र सरताज और जैस्मिन सैंडलर्स का लिखा यह गीत था। शाश्वत सचदेव का संगीत था।

राज फिल्म का ये दुगाना आप सुन रहे हैं अलका याग्निक और अभिजीत की आवाजों में समीर के बोल हैं नदीम श्रवण की तर्ज। चित्रलोक कार्यक्रम की यही है आखिरी पेशकश।

0: नमस्कार नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ, भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशोली एक जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से 9111-2308-8718 और 9111-2308-8719 पर संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सएप कॉल और संदेश के लिए 9199-6829-1988 नंबर जारी किया गया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए 9775-131-6807, 9770-910-9100-7500 और 9779810-3211-7 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों की 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल में छोछेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार झील में अगले 3 दिन में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की।
2: बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक बैराज पर जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि नेपाल के देवघाट क्षेत्र में बारिश के कारण नदी के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि
3: नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है, सबको चिंता।

0: करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है।
1: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि अतिरिक्त बचाव दल की 4 टीमें तैयार रखी गई हैं। इधर पड़ोसी देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट जारी किया है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेफ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
4: Discussions are expected.
5: दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। इसमें व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल है। ये बातचीत भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करेगी।
4: स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल रिलेशनशिप।
2: ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन की 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक वृद्धि से भारत कनाडा के बीच अधिक मजबूत और निवेश आधारित आर्थिक साझेदारी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार का वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य है।
6: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
2: रक्षा मंत्री ने टैंक मरम्मत परियोजना को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और मानव कल्याण की प्रेरणा देते हैं। अहमदाबाद में आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और कौशल आधारित विकास को प्राथमिकता दी गई है, जो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप है।
7: पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं हैं तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं। और मन में स्वराज की ये परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया।
2: श्री शाह ने वर्ष 2047 तक सभी

0: क्षेत्रों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया। अहमदाबाद में फार्मा इनोवा अवार्ड्स 2026 में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
1: रजनी भाई ने शुरुआत की और आज ये परंपरा ढेर सारे लोगों में रिसर्च के फील्ड में काम करने के लिए न केवल अनुकूलता बनी, आर्थिक मदद भी हुई। एक प्रकार से ये अवार्ड उनको एक्नोलेज करता है सोसाइटी में और इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने में। ये बहुत बड़ी बात है जो रजनी भाई ने उस जमाने में सोची।
0: गृह मंत्री ने अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है।
3: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलों को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। खेल दिवस के अवसर पर आज IFLU विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की पहल से देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीत रहा है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज ₹35 प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि सरकार हर वर्ष ये सुनिश्चित करती है कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध हो।
4: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है।
0: मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत के लिए इश्का ने 1 और नवनीत कौर ने 2 गोल किए। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लेन क्रिंक्स ने किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय। मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

आज के फनकार कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको एक दिलचस्प घटना बताते हैं। एक लड़का था जिसकी बहन की शादी हो रही थी और अभिनेता मोतीलाल चूंकि उसके रिश्तेदार थे इसलिए वो इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। चूंकि माहौल शादी के जश्न का था तो उस लड़के से कहा गया कि तुम गाना गाओ क्योंकि परिवार में सब जानते थे कि इसे गाने का शौक है। उस लड़के ने गाना गाया और सब लोग मुग्ध होकर सुनते रहे। मोतीलाल जी को लगा कि इस लड़के में प्रतिभा है। उन्होंने उसे मुंबई बुला लिया और बस यहां से फिल्म संगीत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया क्योंकि ये नौजवान था मुकेश चंद्र।

0: सितारे रहेंगे।
1: हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास को खंगालें तो जो सबसे रोशन सितारे हमें नजर आते हैं पुरुष गायकों में, वो हैं मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार। जाहिर है कि इन तीन मुख्य सितारों को अलग कर दें तो फिल्म संगीत के न जाने कितने अनमोल गाने फिल्म संगीत के इतिहास से हट जाएंगे। मुकेश चंद्र माथुर के अपने फैन रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मुकेश की गायकी में ऐसी सादगी, ऐसी सरलता है कि यूं लगता है जैसे वो हमारे लिए गा रहे हैं और हम उनके साथ गा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आपके परिवार में अंत्याक्षरी हो रही हो, कोई पिकनिक हो, कोई अन्य उत्सव हो, गाने का माहौल हो, तो कोई ना कोई मुकेश का फैन आपको जरूर मिल जाएगा। यूं लगेगा जैसे मुकेश उसकी आवाज में गा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुकेश जी की जीवन यात्रा।
2: मैंने

मुकेश चंद्र माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। पिता लाला जोरावर चंद इंजीनियर थे और मां थी चांद रानी। दरअसल पुरानी दिल्ली में पैदा हुए इस लड़के के जहन में संगीत की महक बहुत पहले से थी। बहुत बचपन से इस लड़के ने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब सबसे बड़े गायक थे कुंदन लाल सहगल और सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। जाहिर है कि यंग मुकेश भी कुंदन लाल सहगल के फैन थे। दसवीं पास की उस जमाने में इतनी पढ़ाई बहुत मानी जाती थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग में काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन यही दिन थे जब उनकी बहन की शादी हुई और वही घटना हुई जो हमने आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाई थी, और इस तरह से मुकेश का मुंबई जाने का रास्ता खुल गया। हुआ यूं कि रंजीत मूवी टोन की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि एक नए गायक की तलाश जारी है। और फिर क्या हुआ कि चंदूलाल शाह के जारी किए गए इस विज्ञापन को देखकर मुकेश मोतीलाल जी के पास मुंबई आ गए। यहां आने के बाद उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की तालीम लेनी भी शुरू कर दी और उन्होंने बड़ी शिद्दत से ये सपना देखा कि वो गायक अभिनेता बनेंगे, और ऐसा हुआ भी। सन 1941 आया, मुकेश ने अपनी पहली फिल्म साइन की निर्दोष। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया और गाया भी। यानी ये वो पहला गाना है जो मुकेश जी ने गाया, पर इस गाने में मुकेश जी ने प्लेबैक नहीं किया, यानी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए गाया। ये गाना था दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या।

मुकेश जी का पहला प्लेबैक गाना कौन सा था ये भी आपको बता देते हैं। सन 1945 में फिल्म पहली नजर बन रही थी। संगीतकार अनिल बिस्वास से मोतीलाल ने ये कहा कि आप मेरे लिए एक युवा गायक से प्लेबैक करवाएं। मुकेश की आवाज जब अनिल बिस्वास ने सुनी तो उन्हें ये आवाज जम गई और फिर मुकेश ने गाया अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग पहली नजर फिल्म में।

0: मैंने।
1: जब कुंदन लाल सहगल तक इस गाने की ख्याति पहुंची और उन्होंने इस गाने का रिकॉर्ड सुना तो वह चकित रह गए। उन्होंने तपाक से ये सवाल पूछा, ये गाना मैंने कब गाया? इसके बाद उन्होंने मुकेश को अपने घर बुलवाया और कहा कि तुम गाने गाते जाओ। मुकेश एक के बाद एक कई गाने गाते चले गए और कुंदन लाल सहगल उस जमाने के सुपरस्टार, उस जमाने के लाजवाब

गायक और अभिनेता मुकेश को मुग्ध भाव से सुनते चले गए। उन्हें लगा कि यही है मेरा उत्तराधिकारी और उन्होंने अपना रियाज वाला हारमोनियम मुकेश को भेंट कर दिया। ये कुंदनलाल सहगल का मुकेश के लिए आशीर्वाद था। सन 1941 में निर्दोष में अभिनय करने के बाद सन 1943 में मुकेश ने एक और फिल्म में अभिनय किया जिसका नाम था आदाब अर्ज। सन 1953 में उन्होंने फिल्म माशूका में अभिनय किया जहां उनकी हीरोइन थी सुरैया और सन 1951 में मल्हार फिल्म में अभिनय किया। संगीतकार रोशन की ये पहली

ये वो दौर था जब मुकेश कुंदन लाल सहगल की छाया में थे, उनके प्रभाव में थे और उनके जैसा गाया करते थे। सन 1948 में नौशाद ने दिलीप कुमार की फिल्म मेला के लिए मुकेश को गाने का मौका दिया और नौशाद के जरिए कुंदन लाल सहगल की छाया से बाहर आया उस जमाने का युवा पार्श्व गायक मुकेश। और फिर बस मुकेश की अपनी शैली तैयार हो गई। सन 1949 तक मुकेश का स्वर कुछ ऐसा हो चुका था।

सन 1948-49 का दौर भारत में फिल्म संगीत के बदल जाने का दौर था। कैसे, आपको बताते हैं। लगातार नई प्रतिभाएं आती चली जा रही थीं और इन नई प्रतिभाओं में शामिल थे युवा संगीतकार शंकर जयकिशन। शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन पांचाल किस तरह से मिले, ये तो एक इतिहास है। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बरसात में संगीत देने का मौका दिया और इस युवा संगीतकार जोड़ी ने कई युवा कलाकारों से गाने गवाए, जिनमें से एक मुकेश भी थे। फिल्म बरसात में मुकेश ने दो गाने गाए थे। एक गाना था ये।

0: प्यार है।
1: और इसके बाद राज कपूर, शंकर जयकिशन और मुकेश की इस तरह से टोली बनी कि एक के बाद एक इनकी फिल्में आती चली गईं और इन तमाम फिल्मों में मुकेश के गाने आते चले गए। यहां तक कि मुकेश का आखिरी गीत भी राज कपूर की ही फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। ये कहानी बाद में, पहले आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। जरा सोचिए कि मुकेश ने किस संगीतकार के लिए सबसे ज्यादा गाया होगा। आपने सही सोचा है, शंकर जयकिशन के लिए मुकेश ने कुल 133 फिल्मों में पार्श्व गायन किया, जबकि कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 फिल्मों में। जाहिर है कि कल्याण जी आनंद जी भी मुकेश के कम फैन नहीं थे।

चलिए फिर से पीछे चलते हैं, समय के चक्र को घुमाते हैं और पहुंच जाते हैं सन 1948 में। आप सोच रहे होंगे कि यहां हम क्यों आए हैं। दरअसल यहां हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि बरसात वो पहली फिल्म नहीं थी जिसमें मुकेश ने राज कपूर के प्रोडक्शन के लिए गाया था। राम गांगुली के निर्देशन में आग में वो ये गाना गा चुके थे।

अब राज कपूर के साथ मुकेश ने किन किन फिल्मों के लिए गाया, एक के बाद एक लड़ी में फिल्में और गाने पिरोते हुए आज के फनकार कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए जरा अपने पैंट को थोड़ा सा ऊपर मोड़ लीजिए, सिर पर एक टोपी पहन लीजिए और सन 1951 में चलकर उछलते हुए मेरे साथ गाइए।

सन 1964 में राज कपूर ने अपनी बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई, जो राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी, फिल्म संगम। इस फिल्म में मुकेश ने ये मार्मिक गाना गाया था।

सन 1966 तक हम आ पहुंचे हैं और यहां हमारे हाथों में है फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम। हमें याद शैलेंद्र की आ रही है जिन्होंने इस पुस्तक पर तीसरी कसम फिल्म बनाई और इस फिल्म में मुकेश ने बड़े मन से गाया।

और फिर सन 1978 मुकेश को अमेरिका की यात्रा पर जाना था और जाने से पहले जो आखिरी गीत उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए रिकॉर्ड करवाया वो सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए था।

इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद मुकेश ने एक लंबी उड़ान ली अमेरिका के लिए और वहां से इससे भी लंबी उड़ान वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। ये बातें हुई राज कपूर और मुकेश के साथ वाले गानों की, लेकिन ऐसा नहीं था कि राज कपूर के लिए सिर्फ उनके प्रोडक्शन में मुकेश ने गाया हो। जरा 1950 में केदार शर्मा की बनाई फिल्म बावरे नैन का ये गाना सुनिए और याद कीजिए नीली आंखों वाले राज कपूर को।

अब आप सोच रहे होंगे ये भी कोई बात हुई कि पूरे आज के फनकार कार्यक्रम में केवल राज कपूर की बातें। अरे नहीं नहीं, ये नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। दिलीप कुमार के लिए जो प्लेबैक मुकेश ने किया वो तो लाजवाब था। फिल्म यहूदी का ये गाना सुनिए, शैलेंद्र के बोल हैं।

सन 1962 में चलते हैं जब मनोज कुमार मुकेश की आवाज के जरिए पर्दे पर होंठ हिलाते हुए कह रहे हैं।

जाहिर है कि फिल्मी दुनिया के न जाने कितने नायकों ने पर्दे पर होंठ हिलाए, लेकिन आवाज तो मुकेश की थी, यानी उन्होंने मुकेश के गीत गुनगुनाए। मुकेश को भले ही एक दर्द भरी आवाज कहा जाता हो और रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड के बुक स्टॉल्स पर जो गानों की किताबें मिलती हैं उनके शीर्षक हों मुकेश के दर्द भरे नगमे, लेकिन मुकेश केवल दर्द भरे नगमों के गायक नहीं थे। जब भीगा भीगा मौसम आता है तो भला कौन सा ऐसा मनमौजी व्यक्ति हो जो ये गाना ना गुनगुनाए।

0: याद।
1: यानी हम ये कहना चाहते हैं कि मुकेश ने तरह तरह के गाने गाए। वो केवल एक दर्द भरी आवाज नहीं थे, वो एक जिंदा दिल आवाज थे। मुकेश एक बेमिसाल शख्सियत जिन्होंने हर समय लोगों का भला किया। 27 अगस्त 1976, डेट्रॉइट मिशिगन, एक कॉन्सर्ट चल रहा है और मुकेश गाना गा रहे हैं। पर्दे के पीछे जाते हैं, दिल का दौरा पड़ता है और वो इस अनजान दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। कॉन्सर्ट जारी रहता है, उनकी आवाज को आगे बढ़ाते हैं उनके बेटे नितिन मुकेश। उसके कुछ दिन बाद मुंबई के एयरपोर्ट पर एक ताबूत उतरता है। एयरपोर्ट पर बेसब्री से इंतजार में हैं अभिनेता राज कपूर और अभिनेता मनोज कुमार। इसके अलावा फिल्मी दुनिया की कई जानी मानी शख्सियतें। मुकेश के ताबूत को देखकर राज कपूर रो पड़ते हैं और कहते हैं, मेरी तो आवाज ही चली गई। मुकेश के जाने से एक खला आ गई और ये खला कभी मिट नहीं सकती। मुकेश हम सब की आवाज है, हम सब थोड़े थोड़े मुकेश हैं।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक मुकेश पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: चीज।
1: रात्रि के 10 बजे हैं। अब वक्त है फिल्मी नगमों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आइए आनंद उठाते हैं इस कार्यक्रम का। ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र।

जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, अब वक्त है समाचारों का। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पर हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला

0: से 10 टन करगन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू में पहुंचा था, जिसमें की कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां
1: और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
2: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111230888718 और +9111230888719 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851316807 और +9779816317 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।